आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:35 और 48 सेकेंड। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में। और भोर सुहानी में हम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों से किस तरीके से हम आगे निकले, उससे कैसे बाहर निकले, हम उस पर बातें करते हैं। और ये भोर सुहानी में हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज का यह दिन हमारे लिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होगा। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न दौलत है न शोहरत, बल्कि वो है मोहब्बत। एक सच्चा दिल, एक मीठी मुस्कान और अपनेपन से भरा एक लफ्ज़ किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जिंदगी का असली सफ़र तभी खूबसूरत बनता है जब हम अपने दिल में प्यार, अपनापन और इंसानियत के लिए जगह बनाए रखते हैं। मोहब्बत सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि हर उस भावना का नाम है जो दिलों को जोड़ती है जब हम सम्मान, अपनापन और मुस्कान बांटते हैं, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत होती चली जाती है। एक छोटी सी मुस्कान, एक सच्ची दुआ और किसी का हाथ थाम लेने का जज्बा, शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ऐसा ही प्यार से भरा एक बहुत ही प्यारा नगमा है फिल्म संगम से। आवाजें हैं लता जी और मुकेश की, दोनों की दिलकश गायकी इस गीत को आज भी हर चाहने वाले के दिल में बसी हुई है। तो आइए इसी खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस महफिल में

हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म संगम से। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो सोचते हैं, उसका असर हमारे दिल और रिश्तों पर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके शब्दों में मिठास हो और आपके दिल में दूसरों के लिए सम्मान हो। कभी कभी एक अच्छा लफ्ज किसी के चेहरे पर मुस्कान ही सिर्फ नहीं ला सकता, बल्कि उसकी जिंदगी बदल सकता है। इसी प्यार भरे संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं भोर सुहानी के इस सफर पर। कहते हैं दूसरों की कमियों को सुनने ढूंढने से बेहतर है उनकी अच्छाइयों को पहचाने। दिल में नफरत नहीं बल्कि प्यार और समझदारी के लिए जगह बनाए रखिए, क्योंकि अच्छी सोच ही एक खूबसूरत जिंदगी की बुनियाद होती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है, ऐसे ही संदेश के साथ आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की। इस गीत में वो ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों को अपनाकर हम अपने आसपास का माहौल भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं फिल्म आया सावन झूम के से, जो कहता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो, और सिर्फ अच्छाई की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाओ।

बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। फिल्माया सावन झूम के क्या, ये नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया है इस नगमे में कि अगर हम में बुराई है या किसी और में बुराई है तो हम उसकी बुराई को सिर्फ ना देखें बल्कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। कहते हैं कि हर इंसान में कुछ अच्छी खूबियाँ होती है, कुछ खामियाँ भी होती हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी खूबियों को बयान करें दूसरों के सामने, बुराइयों को नहीं। क्योंकि अगर आप उसकी खूबी को बयान करते हैं किसी और के सामने तो ये होगा कि जब वो शख्स उसके बारे में बताएगा उसको तो हमेशा उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें निकल करके उसके जहन में आएंगी और वो ये कोशिश करेगा कि हम में जो खामियाँ हैं उसको दूर करें। और इसीलिए हमेशा किसी न किसी की बुराई नहीं बल्कि उसके खूबियों को बयान करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और आज के इस सफ़र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के इस भोर सुहानी को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फिरोज़ को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज की इस सभा में हमारे साथ आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आप। छह बजकर 10 मिनट का समय होगा डिवोशनल म्यूजिक का कार्यक्रम, भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण का, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगे सुरती जिंदल।

0: 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान और साथ ही साथ सुनेंगे बालकांड भाग 116। छह बजकर 55 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचारों के साथ हम आपके बीच रहेंगे और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट का समय होगा गोल्ड सुप्रभात का। और 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। आठ बजे का समय होगा हिंदी में समाचारों का समाचार प्रभात आप सुनेंगे। और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब सुनेंगे समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
2: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi is also scheduled to participate in the India-Australia CEOs Forum and address business leaders from both the countries. He will also interact with the Indian diaspora at a community event in Melbourne. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The 2-day 23rd national-level meeting between India and Myanmar concluded in New Delhi yesterday. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cyber crime, and other forms of organized crime.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और अर्पण में आज आपके साथ हूँ मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत भक्तिमय अंदाज में करें, बहुत ही प्यारे से भजनों के साथ।

कि आप पहुँचें या आप हो तो वहाँ सब आपको प्यार करें, अगर आप वहाँ से चले जाएं तो सब आपको याद करें, और जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। इसलिए खुद को ऐसा बनाने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए।

किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, जानते हैं, तब आपको एहसास होगा कि आखिरकार आपके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको निश्चय ही त्यागने से लाभ होगा। इसलिए हमेशा अपनी तुलना ऐसे ही इंसान से करनी चाहिए जो हमसे संस्कार

जो शख्स आप पर गुस्सा भी करे और ताल्लुक भी समाप्त ना करे, जानते हैं वो बुरे वक्त में आपका सबसे अच्छा साथी होगा। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें दूर नहीं रहना चाहिए जो हम पर गुस्सा करते हैं और हमसे रिश्ता समाप्त नहीं करते, बल्कि हमें उनके और करीब रहना चाहिए, क्योंकि उनका गुस्सा दरअसल हमारी परवाह होती है।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण में आप सभी का साथ दे रही हूँ आज मैं सुरति। अपने आप को जितना हो सके साधारण रखिए, क्योंकि जिन धागों की गांठ आसानी से खुल जाती है उन पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

0: चढ़ती।
1: और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे से भजन की ओर। आहिस्ता आहिस्ता वक्त आगे की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ वक्त हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। कहते हैं कि इंसान जो है साधनों से नहीं साधना से महान बनता है, भवनों से नहीं बल्कि भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।

और अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है अब श्री रामचरितमानस गान का, तो आइए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर श्री रामचरितमानस का अगला भाग।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस और इसी के साथ वक्त हो गया है समाचारों का। सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और इसके बाद ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं समाचार एफएम गोल्ड पर। सुनते हैं अब समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तंभेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अंतर्गते प्रगतिं च

0: समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रियस्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनाञ्च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णं एकीकृतं IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की

0: ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi participated in the India-Australia CEOs Forum in Melbourne this morning and addressed business leaders from both the countries.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his 3-nation tour. Centre has approved the procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Ministry of Agriculture and Farmers

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है आप सभी के अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग, खासकर उन लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग जो अभी इस टाइम पर सोकर उठे हैं। लेकिन आपको बता दूं भाई, हम तो सुबह से ही जागे हैं और बरसात का आनंद ले रहे हैं। यूँ तो बारिश रात भर से ही हो रही है, लेकिन अभी अभी जो काम पर निकले हैं या जो सुबह सुबह काम पर गए हैं या सुबह सुबह जिन्हें वॉक करने की आदत है, उन्होंने भी बारिश का आनंद लिया होगा। ऐसे में इस बारिश को महसूस करते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब भी बरसात होती है मोर नाचने लगता है और हमारा मन भी कुछ इस तरह से।

क्या बात है, दिल झूमने लगा ना भाई, ऐसे प्यारे प्यारे से गाने सुनते रहेंगे और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। हालांकि बारिश की बात हो रही है तो ऐसे में अगर हम देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल ये ना जाने तो कुछ अधूरापन सा रहेगा। तो आपको बता दूं कि देश भर में मानसून अब और ज़्यादा सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और साथ ही साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है और चेतावनी दी है। ऐसे में कई इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव का खतरा भी बना हुआ है। तो ऐसे इलाकों में जाने से बचें और कोशिश करें कि बारिश का आनंद जो है आप घर बैठे बैठे ही लें। जैसे इस वक्त मैं स्टूडियो में बैठकर बारिश का आनंद ले रही हूँ, ऐसे ही आप जहाँ पर हैं वहीं से प्यारे प्यारे से गानों के साथ बारिश का लुत्फ उठाते रहें।

बारिश के मौसम में पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इस दौरान हमेशा ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला गर्म खाना ही खाना चाहिए। इसके अलावा संक्रमण से बचने और सेहतमंद रहने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में सूप और काढ़ा ले सकते हैं। जी हाँ, अदरक, तुलसी और शहद वाली हर्बल चाय या फिर गर्म सूप जो है पाचन शक्ति में बढ़ावा करते हैं, पाचन में सुधार करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा हल्का और सुपाच्य भोजन की अगर हम बात करें तो मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, दलिया, उबले हुए चावल और ऐसे हल्के पके हुए खाद्य पदार्थ का सेवन आप कर सकते हैं। मौसमी फल तो आप जानते ही हैं, जामुन, नाशपाती, अनार, पपीता जैसे फलों का सेवन अगर हम करेंगे तो हमें वाइटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर मिलेंगे जो कि बीमारियों से हमें बचाएंगे। और मौसमी सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरई, परवल, करेला जैसी सब्जियों को भी प्राथमिकता दीजिए। मसालों की बात करें तो भोजन में हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया ये ऐसे मसाले हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो संक्रमण को दूर करते हैं। और हाँ, उबला हुआ पानी, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर वाला पानी ही पीजिए, ऐसे मौसम में खासकर पीने के पानी का ध्यान दे। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या खाने से बचना है, तो जैसे कि मम्मी कहती हैं बाहर का खाना नहीं खाना, स्ट्रीट फूड, समोसे, चाट पकौड़ी वगैरह या पहले से ही कटे हुए फल, इन्हें खाने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा ज़्यादा होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां अवॉइड कीजिए, पालक हो गई, पत्ता गोभी, मेथी जैसी हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं इनको भी खाने से बचिए क्योंकि इनमें भी नमी की वजह से कीड़े और फंगस जल्दी हो जाते हैं पैदा। और हाँ, कच्चा सलाद खाने की बजाय कोशिश कीजिए कि आप सब्जियों को भाप में पकाकर यानी कि स्टीम करके उन्हें खाएंगे तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो भाई, मानसून के दौरान, बदलते मौसम के दौरान और बरसात के टाइम पे अगर हमने अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखा तो मामला गड़बड़ हो सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन आपको तो मैंने बता दिया क्या करना है, इसलिए आपने अब मिस्टेक नहीं करनी है। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना।

यूँ तो बारिश के मौसम में ज्यादा एसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एसी चाहिए। तो ऐसे में बारिश के मौसम में यदि आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ड्राई मोड पर चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ड्राई मोड पर चलाना सबसे अच्छा होता है। इससे कमरे की चिपचिपाहट और उमस समाप्त होती है और इस मोड में जो एसी का कंप्रेशर है वो धीरे चलता है, जिससे कि ठंडक भी बनी रहती है और बिजली की भी बचत होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है बनाए रखिए। मानसून के समय में एसी का तापमान जो है अगर हम 24 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं तो ये शरीर के लिए सबसे आरामदायक होता है और बिजली का बिल भी इससे कम आता है। एसी की देखभाल करना ना भूलें, फिल्टर साफ रखें, क्योंकि ऐसे में नमी की वजह से एसी के अंदर धूल और फंगस जमा हो सकती है, जिससे कि हवा में बदबू आने लगती है। इसके लिए समय समय पर एसी के एयर फिल्टर को आप साफ करते रहें और इसी के साथ एक प्यारे से गाने का आनंद भी लें।

0: गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल के लिए बस इतना ही और अब वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का ठीक 8:45 पर सुनना ना भूलिएगा म्यूजिकल दिल्लगी मेरे यानी सुरति के साथ। लेकिन अब सुनते हैं कार्यक्रम आज सवेरे एफएम गोल्ड पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाएं, खुश रखें और आपको महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आज सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू ऑल अ लवली लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड मुकेश, एज यू सो राइटली सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड आवर टाइम विद द पीपल हु वैल्यू अस, हु होल्ड अस एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन देयर लाइफ, सो सच इज आवर रिलेशनशिप विद आवर लिसनर्स टू। आवर लिसनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डियर टू अस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी ट्राई टू मेक all our programs very informative and of course entertaining too.
0: जी.
1: So as is the promise and commitment with the anchors today and always, today's Art Survey is packed with news, metro city updates and of course historical information. So let's begin with the news program, Mukesh, without much ado.
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा हितों को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विकास से ही विस्तार होगा। श्री मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि आपकी उपस्थिति साझा विकास का प्रतीक है। इस दौरान हमारी आर्थिक साझेदारी और

0: और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले सरबजीत आप बताएं चेन्नई से क्या समाचार है आपके पास।
1: जी, द मद्रास हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड ऑल प्राइवेट स्कूल्स इन द स्टेट टू डिस्प्ले द फी स्ट्रक्चर फिक्स्ड बाय द फी डिटर्मिनेशन कमिटी एज वेल एज अदर फीस व्हिच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in the notice board and the website of the respective private schools 1 month before commencement of every academic year. Justice M. Dandapani passed the order yesterday while disposing of a plea moved by the All India Private Educational Institutions Association challenging an order passed by the Tamil Nadu Information Commission. And Mukesh, what's the news from Mumbai?
0: जी हाँ, मुंबई के समाचारों में अपने श्रोताओं को बताएं कि इस वर्ष मुंबई में केवल 6 दिन में पूरे जुलाई महीने में होने वाली वर्षा के बराबर वर्षा हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 दिन में 882 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि सांता क्रूज में भी 988 मिलीमीटर वर्षा हुई। कुल मिलाकर मुंबई की औसत वर्षा लगभग 42% हो चुकी है। इससे सामान्य जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में नाली सफाई अनुबंधों में अनियमितताएं रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने की प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली ने अधिकारियों को ठेकेदारों के झूठे दावों, गलत बिलिंग और धोखाधड़ी वाली सूचनाओं की पहचान करने में सहायता की है। इसके फलस्वरूप 2025 में 12 करोड़ 50 लाख रुपए और 2026 में 9 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सरकार ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था ने मॉनसून से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी में सुधार किया है। इसके अलावा महानगर गैस लिमिटेड ने डाक विभाग के साथ साझेदारी कर घर घर जाकर पीएनजी मीटर रीडिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का परीक्षण शुरू में दक्षिण मुंबई में किया जाएगा। इस प्रायोगिक परियोजना के सफल होने पर पूरे मुंबई में इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बिलिंग दक्षता बढ़ाना, ग्राहक सेवा में सुधार करना और डाक विभाग के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत सृजित करना है।
1: और चलिए देखते हैं व्हाट्स द न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार येस्टरडे चेयर्ड कैटलिस्ट कनेक्ट, अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन विद मोर देन 150 लीडर्स ऑफ ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स GCCs इन बेंगलुरु टू डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ease of doing business and the next phase of the state's innovation-led growth. Ahead of the consultation, the Chief Minister visited the Bengaluru campus of Target in India and interacted with the company's leadership on its technology, AI and digital capabilities. Addressing the gathering, he reaffirmed the government's commitment to strengthening Karnataka's position as India's leading GCC destination by attracting 500 new GCCs, creating more than 3 lakh high-quality jobs and generating $50 billion economic output by 2029. Karnataka Deputy Chief Minister and Revenue Minister Dr. G. Parameshwara has directed officials to dispose of more than 2 lakh pending e-poti cases in the Kalaburagi Revenue Division within a fixed time frame. Chairing a review meeting in Kalaburagi, he instructed officials to prioritize pending cases in Vijayagada, Bidar and Koppal districts and clear them within 2 months. He also directed deputy commissioners to expedite darkhast cases, creation of new revenue villages and khata registration for temple priorities, besides ensuring the removal of encroachments from temple lands.
0: और अब कोलकाता महानगर की खबरें अपने श्रोताओं को बता दें। जापान की मित्सुबिशी कंपनी की पश्चिम बंगाल में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना है। कोलकाता में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए दुर्गापुर और पानगढ़ में भूमि प्रस्तावित की है। उद्योग मंत्री तापस रॉय ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद परियोजना पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत में सबसे आकर्षक निवेश स्थल बनाना है। उन्होंने कहा कि जूट और चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के साथ साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और वैश्विक क्षमता केंद्रों जैसे उच्च तकनीकी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी।
1: Telangana Eagle Force Inspector P. Srinivas Rao said yesterday that eliminating the menace of drug abuse requires a coordinated approach involving law enforcement, educational institutions and public participation. Speaking at an integrated communication and outreach program on the Nasha Mukt Bharat Abhiyan at Dr. B. R. Ambedkar College in Hyderabad, Rao emphasized that the fight against substance abuse can only succeed through collective action. He highlighted that sustained enforcement and actionable public inputs via the toll-free helpline 1908 have significantly strengthened the state's efforts to dismantle drug trafficking networks, which deliberately target the nation's youth and students. According to Rao, the anti-drug campaign relies on three major pillars, that is, strict enforcement, widespread public awareness, and effective rehabilitation. Shruti Patil, Additional Director General of PIB and CBC, reiterated the Central Bureau of Communications commitment to spreading awareness about the initiative. And what's the buzz from Delhi today, Mukesh?
0: जी हाँ, दिल्ली की खबरों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्ष में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले चार वर्ष में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या मौजूदा लगभग 9000 से बढ़कर 32000 हो जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और तीनों लैंडफिल साइटों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट सौंपी। महापौर ने बताया कि ओखला लैंडफिल पर अब तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जबकि लगभग 15 लाख मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण का कार्य तीव्र गति से जारी है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। यह समारोह सराय रोहिला मेट्रो स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। 12 किलोमीटर से अधिक लंबा 10 स्टेशन का यह कॉरिडोर पश्चिम, मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और सरबजीत कौर के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सरबजीत, सबसे पहले दिल्ली का मौसम बताएं अपने श्रोताओं को।
1: जी बिल्कुल,
0: दिल्ली का मौसम जो है पूरी तरह से भीगा हुआ है। रात भर कल वर्षा हुई और दिन में भी पूरे दिन वर्षा जारी रही और अभी भी हम आए हैं, अभी भी वर्षा जारी है। और इस वर्षा के कारण जो दिल्ली का तापमान है उसमें भारी गिरावट आई है
1: जी।
0: और आज का अधिकतम तापमान वो है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
1: Well, Chennai too is likely to witness a partly cloudy sky. The temperatures are expected to range between a minimum of 29 degrees, maximum of 38 degrees Celsius.
0: और कोलकाता की बात करें तो आसमान में बादल आमतौर पर छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्रीज, मैक्सिमम मे गो अप टू 29 डिग्री सेल्सियस।
0: और मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: सो ऑलमोस्ट रेन्स एवरीवेयर मुकेश, एंड हैदराबाद टू इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज फ्रॉम 24 डिग्रीज टू 34 डिग्री सेल्सियस।
0: और कार्यक्रम में वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 9 जुलाई है और आज ही के दिन सबसे पहले आप बताएं।
1: 1789, 9 जुलाई, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द नेशनल असेंबली रीनेम्ड इटसेल्फ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1810, on this day, the Kingdom of Holland was annexed by the Napoleon as a part of the First French Empire.
0: और वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान सीमा पर दो चौकियां स्थापित करने की घोषणा की थी।
1: 1868, on this day, Francis L. Cardozo becomes the first African-American

0: cabinet member in South Carolina as Secretary of State, and in the year 1875, on this day, the Bombay Stock Exchange was established.
1: वर्ष 2002 में आज ही के दिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन किया गया था।
0: 1877 on this day, the first ever Wimbledon tennis championship began, and on this day in the year 1910, Walter Brookins flied a Wright biplane over Atlantic City. He became first to fly an airplane to an altitude of 1 mile or 6,175 feet.
1: और 2004 की बात करें तो आज ही के दिन एशियाई विकास बैंक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक विशेष कोष बनाया था। 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल के अमरीकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में कार्य के लिए ऑटो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया। और 2008 की बात करें तो आज ही के दिन ईरान ने लंबी और मध्यम दूरी तक मारक क्षमता वाले 9 प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया। और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भोपाल के सुप्रसिद्ध शायर शेरी भोपाली को, आज उनकी पुण्यतिथि है। शेरी भोपाली का असली नाम मोहम्मद असगर था। उनका जन्म आगरा में 1914 में हुआ था, लेकिन वो असल में भोपाल से ही ताल्लुक रखते थे। शेरी भोपाली ने शायरी में शेरी तखल्लुस का उपयोग शुरू किया था। वे मेल संदेलवी के शिष्य रहे और उन्होंने जकी वारसी का भी अपनी शायरी में अनुसरण किया। उन्होंने शायरी के हुनर को दिल्ली की आबो हवा की देन कहा था। उनकी एक शायरी की जो शायरी है उसके कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनाए। गजल है जुस्तजुए दिल का ये अंजाम हो जाए कि मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए। वही नाला वही नगमा बस एक तफरीके लफ्जी है, कफस को मुंतशिर कर दो नशे मन नाम हो जाए। और तसद्दुक इस्मते कौनैन उस मजूबे उल्फत पर जो उनका गम छुपाए और खुद बदनाम हो जाए।
0: वेरी वेल सेड मुकेश, एंड सिंस यू नो यू हैव सेट द स्टेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, द ग्रेट गुरुदत्त। टुडे इज गुरुदत्त बर्थ एनिवर्सरी, द लेजेंडरी फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, राइटर, यू नो सो मेनी जॉनरस, एंड ही वॉज सच अ वर्सटाइल क्रिएटिव आर्टिस्ट। सो बिफोर वी टॉक एनी फर्दर अबाउट द ग्रेट गुरुदत्त, लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल नंबर।

0: भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ने बहुत अच्छे ऐसे काम किए हैं, बहुत कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जो आज भी यादगार हैं। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में ही संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे, तो क्यों ना उनका एक डायलॉग पहले सुन लिया जाए।
1: जी,
2: मैं वो विजय नहीं, वो तो कब का मत दोस्त। ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मूर्तों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है।
1: And Mukesh, Gurudutt gave highly celebrated and classic productions like Pyasa, Kagaz Ke Phool, Chaudhvi Ka Chand and Sahi Bibi aur Gulam. You know, these are just few films which I have in my list.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको पता होना चाहिए कि गुरुदत्त एक अच्छे नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था फिल्म प्रभात फिल्म्स में एक कोरियोग्राफर की हैसियत से। अभिनय कभी उनकी पहली पसंद नहीं रहा था, लेकिन उनके सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते हैं। तो उनकी एक और फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: और भारत के प्रख्यात शायर और लेखक सरदार अंजुम की आज पुण्यतिथि है। उन्हें भारत सरकार ने 2005 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सरदार अंजुम हरियाणा के पंचकुला से हैं। उन्हें 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनको भारत और विदेश दोनों में कई साहित्य समाजों, सांस्कृतिक मंचों और रचनात्मक नींव द्वारा सम्मानित किया गया।
1: And Mukesh, today is a day when we are remembering many personalities with versatile skills. So another name in this list is the great Sanjeev Kumar. Today is Sanjeev Kumar's birth anniversary. A great man who acted in a variety of genres ranging from romantic drama to thriller. And before we go any further in this deliberation, we'll first hear this dialogue rendered by Sanjeev Kumar.
0: Ji.
2: 20 saal mein apne bade bhai ki yaad कभी नहीं आई, कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। देखो उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं।
1: And listeners,
0: संजीव कुमार का असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। उनका जन्म सूरत गुजरात में एक पारंपरिक गुजराती परिवार में हुआ था और बचपन में उनका परिवार मुंबई चला गया जहां सिनेमा के प्रति उनका जुनून पनपा।
1: There was so much of melancholy and poignance in the dialogue which Sanjeev Kumar just rendered. Yes, what next are you are telling us about Sanjeev Kumar?
0: और उन्होंने एक प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान में दाखिला लिया मुंबई पहुंचने पर और जिसने भारतीय सिनेमा में उनकी यात्रा की शुरुआत की थी। अपार प्रतिभा के धनी वे उद्योग की सबसे बहुमुखी और सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन गए। तो उनकी एक फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

0: and some of the well-acclaimed movies of Sanjeev Shole, Arjun Pandit, Trishul, Khilona, Naya Din, Nayi Raat, Yeh Yeh Zindagi, Ram Tere Kitne Naam. Beautiful movies.
1: बिल्कुल, संजीव ने इंडियन नेशनल थिएटर के साथ मंच पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 22 साल की उम्र में भी उन्होंने ए के हंगल द्वारा निर्देशित ऑल माई सन्स एंड डमरू जैसे बुजुर्ग पात्रों को चित्रित करके दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने हम हिंदुस्तानी जो कि 1960 में प्रदर्शित हुई थी उसमें एक छोटी सी भूमिका के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की और 1965 की फिल्म निशान में अपनी पहली लीड हासिल की थी। तो क्यों ना उनका एक और गाना सुना जाए।

और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंदर को। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2010 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार फलस्वरूप उन्हें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। दक्षिण भारत के इस फिल्मकार ने हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए से उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो क्यों ना इस फिल्म का गाना सुना जाए।

और बालचंद्र में नवीन प्रतिभाओं को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। बालचंद्र को रजनीकांत, कमल हासन, प्रकाश राज और विवेक जैसे वर्तमान दौर के कई सितारों को फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय भी रहा। और अभी आपने जो गाना सुना था वो फिल्म रोजा का था, और अब सुनते हैं एक और गाना।

0: और घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड।
1: Yes listeners, do stay tuned for Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा

0: गी जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार।

0: समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities.

0: turned bodies of 56 martyrs, informs the Asian Age, adding the grim situation and civil rights violations in POK raised international condemnation and protests across the world. Center intensifies preparedness as El Nino threat looms large, mentions the statesman. ED freezes Trinamool's 400 crore rupees bank deposits under Prevention of Money Laundering Act, PMLA, informs the Tribune. And finally, a Times of India article titled Summer Push, Durables Eye Double-Digit Growth, informs a scorching summer has spurred demand for seasonal appliances, putting India's consumer durables sector on track to post a robust double-digit growth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEO's forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातजा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरह तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमरीका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़े। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है।

0: इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाजे किया।
0: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
1: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: सीईओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तिसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामानिगार के पास चलते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसला कुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कद्र 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को

0: उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़ुज फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़ुज को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमा बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़ुज और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनाकिद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैन अल-अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप ششماہی रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ज़ेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिला। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वह अब नए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताजा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्णब परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے. وزیر اعظم کا یہ دورہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا. روزنامہ پرتاب نے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے

0: सुर्खी लगाई है। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने तीन रियासतों के वज़राए आला से फ़ोन पर बात करके मुतासर इलाकों का जायज़ा लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है। मशरक़ वस्ता में फिर जंग के खतरात, सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी मुआहदा ख़त्म किया। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह है। विजय दिवस से पहले फ़ौज ने कारगिल के जाबाजों को याद किया। नायब सदर जमहूरिया आज एक रोज़ा दौरे पर उड़ीसा जाएंगे।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बानीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के बयान के बाद किए गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी सुरति के साथ। वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का, तो बहुत सारी बातें करनी अभी बाकी हैं, लेकिन एक बहुत ही प्यारे से गाने के बाद मौसम इतना बेहतरीन इतना हसीन है, पहले हम मौसम के इस बेहतरीन जादू का आनंद तो ले लें कुछ इस अंदाज में। बाहर हो रही है बरसात और अंदर लिए जा रहे हैं चाय पकौड़े और ऐसे में प्यार भरे गाने, वाह क्या कहने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: म्यूजिकल दिल्लगी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ हूँ मैं सुरति। मौसम का आनंद ले रहे हैं, मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला कि दिल खुश हो गया। भाई भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है और ऐसे में तेज हवा के साथ जो बारिश हो रही है उससे मौसम सुहाना भी हो गया है। लेकिन जानते हैं ऐसे मौसम में ड्राइविंग करनी कितनी टफ होती है, जरा सोच कर देखिए। तो अगर आप भी ऐसे मौसम में कहीं जाने की सोच रहे हैं, पहली बात तो टाइम लेकर जाइएगा क्योंकि ट्रैफिक जाम मिलेगा, और दूसरी बात गाड़ी ड्राइविंग करते वक्त कुछ चीज़ें हैं या कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जिससे कि हम किसी भी बड़े हादसे से बच सकें। जैसे कि स्पीड, सबसे पहले गाड़ी चलाते समय आप उसकी स्पीड का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे में क्या होता है, टायर की पकड़ रोड पर ढीली पड़ जाती है और जिस वजह से अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी फिसल सकती है। इसके अलावा हेडलाइट और वाइपर का ध्यान रखें। जब घर से निकल रहे हैं चेक करें कि आपके वाइपर की रबड़ ठीक है।

या वाइपर ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ हेडलाइट ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है बारिश के समय विजिबिलिटी स्लो हो जाती है, दूर की गाड़ियां साफ नहीं नजर आती। गाड़ी चलाने से पहले अगर हम अगर हेडलाइट ऑन करके रखेंगे तो जो आसपास की गाड़ियां हैं उन्हें भी हेल्प मिलेगी। गड्ढों से बचकर चलिए, ऐसे में क्या होता है जल भराव की वजह से ये पता नहीं चल पाता कि गड्ढे कितने गहरे हैं और गाड़ी को उन गड्ढों पर से गुजरने पर नुकसान पहुंच सकता है। ओवरटेक करने से भी बचिएगा, क्योंकि तेज हवाओं और बारिश के बीच अगर हम ओवरटेक करते हैं तो कई बार क्या होता है गाड़ी तेज हवाओं की वजह से एक तरफ को खींचने लगती है, इसीलिए बड़े ट्रक बस या फिर पेड़ों के पास से निकलते समय आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखेंगे। टाइम पर अगर हमें कहीं पहुंचना है तो ज्यादा समय लेकर चलेंगे क्योंकि बारिश में अक्सर जाम मिलता है, तो बस इनका ख्याल रखिए और बेहतरीन बरसते मौसम का बेहतरीन गानों के साथ आनंद लीजिए।

क्या बात है, आप मौसम का आनंद लीजिए और मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। वक्त हो गया है समाचारों का, तो अब से थोड़ी देर में समाचार सुनेंगे एफएम गोल्ड पर। ठीक 9:10 पर म्यूजिकल दिल्लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा नीतू के साथ। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। एंजॉय कीजिए लवली वेदर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में और मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार

0: उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। इसके अंतर्गत राज्य में 87,226 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी अल्बनेज़ी पार्टिसिपेटेड इन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इन मेलबर्न दिस मॉर्निंग। Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions, and an energy crisis." He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Prime Minister further said, Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA, concluded in record time in 2022, has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors. Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Centre has approved the procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said this will ensure better price realization for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. The approval is based on the proposal submitted by Tamil Nadu. Under the approval, over 87,000 metric tons of khopra will be procured in the state. The entire procurement will be undertaken at the minimum supply Support Prize under the Prize Support Scheme. The total

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है और ये है म्यूजिकल दिल लगी। शुरुआत करते हैं आपके हमारे फेवरेट हरी भाई के गीत से। बेहतरीन अभिनेता संजीव कुमार, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे किरदार हमें दिए हैं, ऐसे यादगार किरदार दिए हैं जिन्हें भुलाना ही बहुत बहुत मुश्किल है। तो चलिए उन्हीं का एक गाना सुनते हैं, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन, तो आज के दिन तो कम से कम उन्हें याद करना बनता है।

नूर वाकई आ गया है। जैसे ही बारिश आई है ना, तो बहुत सारे लोगों की जो उलझन है वो गर्मी, पसीना, चिपचिप, सबसे थोड़ी राहत मिली है। वरना तो 2 दिन पहले तक हालत ऐसी थी कि कहाँ चले जाएं यहाँ से। ऐसा लगता था बस कहीं उड़ के पहुँच जाएं पहाड़ी जगह पर। लेकिन क्या करें, पहाड़ों में भी गर्मी थी। अभी एक मेरी फ्रेंड होकर आई है पहाड़ों से, कश्मीर होकर आई है। वहाँ पे वो सर्दी के कपड़े ले गई थी, लेकिन उसे पता चला वहाँ तो गर्मी गर्मी है। तो यहाँ अब मौसम अच्छा हो गया है। बस ये है कि अब बहुत सारी उलझने जो हैं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। थोड़ा सड़क पर पानी है, थोड़ा घर में जो कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं ऐसे मौसम में। और आपके पर्स में छतरी वो भी बढ़ जाएगी, तो उसका बोझ भी एक्स्ट्रा होगा पानी की बॉटल के साथ साथ। उसे मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बस छतरी अपने पास ज़रूर रखिएगा।

0: रह दो ना,
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

वैसे बारिश में भीगने का ना अपना ही एक मजा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा भी मत भीगे क्योंकि ज्यादा भीगने से तबीयत खराब हो सकती है। तो बेहतर है कि एक बारिश में तो जरूर भीगे, लेकिन बार बार भीगने का चस्का मत लगाइएगा। बारिश होती है ना तो हर तरफ बस पानी पानी दिखता है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो भूजल की कमी से पूरी दुनिया जूझ रही है, और ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं, सरकारें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर और लोगों को जागरूक करने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। ऐसी ही है अटल भूजल योजना, जो भूजल की कमी को रोकने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की भागीदारी पर बढ़ाने पर जोर देती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भूजल के स्तर को बनाए रखना और भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ताकि जल संरक्षण के माध्यम से भूजल की कमी को रोकने का प्रयास किया जा सके। अब आजकल आप देखिए ना, बहुत सारी इमारतें जो नई बन रही हैं, या आप मेट्रो में भी देखें तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ताकि जो बारिश का पानी है वो वेस्ट ना हो और उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। आप भी सोचिए कि आप अपने बारिश के पानी को कैसे बचा सकते हैं, और जो पानी आपके पास है उसका सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो बस ऐसी ही बातों के साथ हम अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं आज। म्यूजिकल दिल लगी है ये आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। Join Indian Navy।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। आपने अब तक कितने स्मार्टफोन्स बदले होंगे? बहुत सारे ना, तो 2-3 तो कम से कम बदले ही होंगे आपने। पर क्या अपने अपने पुराने फ़ोन को बेचा है? ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं ना कि एक्सचेंज ऑफर में स्मार्टफोन्स दे देते हैं, लेकिन एक सर्वे में ये देखा गया कि भारत के लोग पुराना स्मार्टफोन बेचने से बचते हैं, क्योंकि जो पुराना स्मार्टफोन है उसमें उनकी निजी जानकारी होती है। रीसेट करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो वो जानकारी है वो चोरी हो सकती है, ये डर उनको सताता है। आपको भी ऐसा लगता है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने इस डर को मन से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ये जो गाना है, इस गाने को सुन लीजिए और उसके बाद मैं आकर आपको बताती हूँ कि कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी निजी जानकारी चोरी होने से आप बचा सकते हैं और अपने पुराने फ़ोन को बेच सकते हैं, तो अपने मन से इस डर को निकाल सकते हैं।

बिल्कुल, जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो डर लगना लाजमी है। लेकिन अगर आप फ़ोन की बात करें, जैसे कि हम इस गाने से पहले कर रहे थे, तो वो डर लगना भी लाजमी है और वो डर होना भी चाहिए, वरना आपकी निजी जानकारी किसी दूसरे के हाथों में पहुंच सकती है। तो फ़ोन बेचने से पहले ना आप अपने सारे डेटा का बैकअप तो लेंगे ही लेंगे, और उसके बाद उससे अपनी सभी IDs को लॉग आउट आपको करना है। सिम और SD कार्ड आप निकाल दीजिए और उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। लेकिन इसके बाद फिर कुछ और रैंडम फोटोज़ या वीडियोस डाउनलोड किए कर लीजिए, और उसके बाद ना डाउनलोड करने के बाद उन्हें डिलीट करें, और ये जो प्रोसेस है इसको 2-3 बार करें और फिर से फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। ऐसा आपको 2-3 बार करना है। इससे ऐसा होगा कि अगर आपका कोई डेटा फ़ोन में कहीं रह भी गया होगा तो उस पर ये रैंडम पिक्स और वीडियोस जो हैं वो ओवरलैप हो जाएंगे और आपका डेटा किसी और के हाथों में नहीं जाएगा। अब आप निश्चिंत होकर अपना पुराना फ़ोन बेच पाएंगे।

100.1 एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूँ आपके साथ नीतू। हम दिमाग को तेज करने के लिए न जाने कितनी तरह की एक्टिविटीज जो है करते हैं, ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं, पजल्स होते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना है ना तो, और फिर भी आप चाहते हैं आपका दिमाग तेज हो जाए, तो फिर रोजाना पंछियों को निहारें और उनकी आवाज सुने। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसा करने से दिमाग की संरचना में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए आपको क्या

ये गाना आपने ध्यान से सुना, ये गाना अमर अकबर एंथनी फिल्म से था और इस गाने में ना चार महान सिंगर्स की आवाजें थी और इन चारों का शायद ये इकलौता गाना है जिसमें चारों ने एक साथ गाया है, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश जी और लता मंगेशकर, ये चारों के चारों जो हैं वो मुझे नहीं लगता किसी और गीत में इन चारों ने एक साथ गाना गाया हो। अब म्यूजिकल दिल

की सुन रहे हैं आप, तो आप कुछ और बातें भी कर ली जाएं। आपको पता ही है कि हिमालय क्षेत्र में जो जानवर रहते हैं वहाँ पर भी ना ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे पेड़ पौधे फल बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ना वो उन सब में बदलाव आ रहा है, उनमें कमी आ रही है। तो वहाँ जो हिमालय क्षेत्र में भालू रहते हैं उनका पारंपरिक भोजन है जंगलों में पाया जाने वाला कंदमूल, जैसे बांज, काफल, हिंसालू। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें कमी आ रही है और इसीलिए भालू जो है वो जंगल से निकलकर बागवानी वाले इलाकों और खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर उन्हें क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा कैलोरी वाले फल आसानी से मिलते हैं, तो वो इन्हें खा लेते हैं और इनसे उन्हें जरूरत से ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। इस वजह से हो क्या रहा है कि उनकी जो शीत निद्रा का क्रम है वो गड़बड़ा गया है और उनकी नींद में कमी इंसानी बस्तियों के लिए खतरा बन रही है। तो जलवायु परिवर्तन से ना सिर्फ हम इंसान परेशान नहीं है, हर कोई परेशान है।

इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है दिल का मेल बॉक्स में, जो कि आप सुनते हैं 10:30 बजे। तो फिर उसमें आप भेजिएगा अपनी मेल्स fmgoldairdelhi@gmail.com पर। फिलहाल समाचार सुनिए और उसके बाद हम दिल का मेल बॉक्स में आपसे मिलते हैं। तो नीतू को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की।
1: हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। मेलबर्न सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्वेडर ने आज मेलबर्न में इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में राज्य के शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर

0: किए गए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जल भराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्ष में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 4th मैच आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions, and an energy crisis." He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a larger gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides.
2: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
1: Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne last evening on a 3-day visit to Australia at the invitation of Australian Prime Minister. PM Modi arrived in Melbourne from Indonesia in the second leg of his three-nation tour. India welcomed the $500 million Australian dollar investment from Australian Super announced by their Chief Executive Officer Paul Schroeder this morning in Melbourne. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said that this is another glimpse of the global confidence in India's growth and reform trajectory. He added it also reflects the immense opportunities that India's dynamic economy offers to global investors. Centre has approved the procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will ensure better price realisation for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. Uttar Pradesh government has launched the cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. Chief Minister Yogi Adityanath launched the Chief Minister's Teachers Cashless Medical Scheme from Varanasi, which will offer medical coverage of up to 5 lakh rupees to more than 15 lakh teaching staff. US launched another round of airstrikes on Iran after President Donald Trump said Iran's latest attacks had effectively ended the ceasefire. President Donald Trump also accused Iran of attacking

0: The Delhi Chief Minister's Office, CMO, said that all concerned agencies are on alert following the directions of Chief Minister Rekha Gupta. It said the Chief Minister has reviewed the situation with officials. The CMO said that the teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground and prepared to deal with any situation. India's Arnav Paparkar created history by becoming the first Indian in 36 years to reach the boys' singles quarter-finals at the Wimbledon Juniors 2026. The 18-year-old Paparkar defeated Japan's Ryo in the pre-quarter-finals. He will next face either Jordan Lee of the United States in the quarter-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया वैश्विक अनिश्चितता आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन सरकार को मांगे मनवाने के लिए 48 घंटे का समय दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज मेलबर्न में उच्च स्तरीय भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ खड़े हैं उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है
1: उन्होंने भविष्य के लिए तैयार सीमाओं पर गहन वाणिज्यिक सहयोग का आह्वान किया प्रमुख उद्योगों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के अभूतपूर्व ढांचागत विस्तार के बारे में भी जानकारी दी
2: भारत में पोर्ट एयरपोर्ट रोड रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं आज भारत में नेशनल हाईवे लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं यह स्केल स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है
1: श्री मोदी ने कहा कि उच्च तकनीकी क्षेत्र में 10 अरब अमरीकी डॉलर के सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से सेमीकंडक्टर, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा सेंटर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में प्रगति संभव है
2: एआई मिशन

0: क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत गठबंधन के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री अल्बनीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग अब पारंपरिक कूटनीतिक ढांचे से आगे बढ़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजिटल अवसंरचना से जोड़ने के लिए राज्य के बीच प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश और औद्योगिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है। दोनों नेताओं ने नीतिगत सहयोग के साथ साथ उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों की भूमिका भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब के लक्ष्य तक पहुंचाने पर बल दिया। सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रमुख गुट संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC ने आज एक बड़े और आखिरी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। यह आह्वान उनकी मांगे मानने के लिए 48 घंटे की समय सीमा का पालन करने में पाकिस्तान के विफल रहने के बाद किया गया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी मुनीश, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना ही होगा। और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स टेनिस में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रयो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। इससे पहले उन्होंने पहले दौर में ब्रिटेन और अगले दौर में अमरीकी खिलाड़ी को हराया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गवाया है। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो कन्याकुमारी के 17 वर्षीय अश्वथ S पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अंतिम दौर में अश्वथ ने काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कन्नन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 9 राउंड में 7 अंक प्राप्त करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। जी मुनीश, तो ये थी

0: आज की खेल जगत से जुड़ी खबरें।
1: शुक्रिया मुकेश। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर प्रदर्शनकारियों का आज विशाल और अंतिम विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए। और भारत के अर्णव पापरकर 36 वर्षों में विंबलडन जूनियर्स 2026 में एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, pitches for stronger India-Australia ties amid global uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir call for grand and final protest today after Islamabad fails to meet 48-hour deadline. US launches new strikes on Iran as President Donald Trump declares ceasefire over. And India's Arnav Paparkar becomes first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinal at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and an energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a larger gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
2: Now we go over to our Melbourne correspondent who's sharing more details on the Prime Minister's visit.
4: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signalled a new era of decentralised economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
2: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese.

100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें बहुत सारी फरमाइशें अब तक पहुंच चुकी हैं और बहुत सारी अभी आने भी वाली हैं। और आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट या फिर कोई एक गीत जो कि आप अभी इस वक्त सुनना चाहते हैं। AIR FM गोल्ड की जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं। अभी ये जो पहला गीत आ रहा है वो गुरुदत्त साहब पर पिक्चराइज्ड है और माला सिन्हा साथ में है। ये पसंद किया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने।

आज जहां संजीव कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है, वहीं गुरुदत्त साहब की भी बर्थ एनिवर्सरी। और ये एक संयोग ही है ना कि दोनों का बर्थडे 9 जुलाई को होता है और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बाकमाल रहे। गुरुदत्त तो बेहतरीन निर्देशक, बेहतरीन प्रोड्यूसर, बेहतरीन एक्टर, और संजीव कुमार जैसा एक्टर मिलना तो मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब उनके जैसा एक्टर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने इतने खूबसूरत किरदार निभाए हैं कि बस। और जब गुरुदत्त की जो आखिरी फिल्म थी, जो कि बन नहीं पाई, पूरी नहीं हो पाई, अधूरी फिल्म लव एंड गॉड, जब गुरुदत्त के बाद किसी और को चुनना था उसके लिए, तो संजीव कुमार को चुना गया। कितना ये संयोग ही है ना सारी चीज़ें। आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से प्लान होता है और बस होता चला जाता है। अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, इन सब को छोड़ कर पीछे, क्योंकि ये तो यादें हैं। यादें तो बस रहती हैं हमारे जहन में, दिल में, लेकिन वक्त के साथ साथ आगे भी तो बढ़ना होता है। तो दिल का मेल बॉक्स में अब अगला गाना आ रहा है ममता मोदी, प्रियंका मोदी, तस्नीम कौशल, ठाकुर साहब और महेंद्र प्रसाद मोदी की फरमाइश पर। पारसमणि फिल्म का गाना सुनना चाहा है इन्होंने, तो चलिए जल्दी से सुना देते हैं हम आपको पारसमणि फिल्म का गाना।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स। और मौसम का असर सब पर ही हो रहा है, हर कोई बारिश के गानों की फरमाइश कर रहा है। मैं भी सुबह से आपको बारिश के गाने सुनवा रही हूँ, लेकिन ये जब मौसम आता है ना, तो बाहर का जो भी नज़ारा हो, अच्छा बुरा, जिस भी तरह की मुश्किल में हम फंसे हों, लेकिन गानों की बारी आती है तो हम वही गाने सुनना चाहते हैं। और एक गाना है अनजाना फिल्म का, जिसे कि बहुत सारे लोगों ने, यानी बहुत बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है। तो चलिए अब नाम बता देती हूँ मैं, नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब ये गाना सुनना चाहते हैं। और इनके अलावा महेश अग्रवाल ने भी इसी गाने की फरमाइश की है, तो आप तक पहुंच रहा है ये गाना।

सावन के गीत। अभी सावन आया नहीं है, लेकिन हाँ आषाढ़ वाली बारिश इस बार ना बिल्कुल सही वक्त पर हुई है, वरना आषाढ़ सूखा ही जा रहा था पिछले कुछ सालों से। इस बार बिल्कुल सही समय पर बारिश हो गई है। इस बारिश का आप इंजॉय करते रहिए, लेकिन दूसरे ओवरडोज भी ना कभी कभी ख़राब हो जाती है। ओवरडोज होने से फिर लगता है कि यार क्या हर वक्त हम सेम सेम गाने सुन रहे हैं। तो अभी दूसरे गानों की बारी आ जाती है। राजेश कृष्णा, प्रथम सोनी, प्राची कुमारी सुनना चाहते हैं पड़ोसन फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गाना, तो चलिए इंजॉय करते हैं।

आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा, आप अपनी पसंद का गाना सुनिए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे तस्वीर में 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की समानताएं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार

कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से 2 हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रामबागर निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से 1 दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और तस्वीर शुरू हो गया है जिसमें आज हम बात करेंगे अरावली की पहाड़ियों से घिरे राजस्थान के उस शहर की जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है यानी उदयपुर की, जिसकी स्थापना 1553 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में की थी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। उदयपुर की बातें होंगी आज, जो कि बेहद साफ सुथरा शहर है, तो बने रहिएगा तस्वीर में नीतू के साथ।

उदयपुर अपनी नीली झीलों और शानदार महलों, जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। शानदार बड़ी बड़ी हवेलियां और महलों की वास्तुकला में राजपूत युग की भव्यता आज भी आप वहां देख सकते हैं। उनमें से कुछ को होटल में तब्दील कर दिया गया है, जहां जाकर लोग शाही जिंदगी का जो एक जायजा है वो ले सकते हैं। वैसे उदयपुर में जब आप सड़कों पर घूमने निकलते हैं तो भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत साफ सुथरी हैं। उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में राजपूत शैली के महल और किले सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। इसके अलावा वहाँ घरों और दूसरे मॉन्यूमेंट्स को भी सफ़ेद रंग से सजाया गया है। इसी रंग में रंगी हुई है सहेलियों की बाड़ी, जहाँ झरने के आसपास बैठकर आप गपशप कर सकते हैं या फिर पूरी बाड़ी को घूम सकते हैं। तो उदयपुर में कहीं भी जाइए, आपको अच्छा ही लगेगा।

उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं जिनमें पांच मुख्य झीलें हैं, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर, रंग सागर, दूध तलाई झील और पिछोला झील। पिछोला झील में तो बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। फतेह सागर झील में एक सौर वेधशाला है जो भारत की एकमात्र ऐसी वेधशाला है जो एक द्वीप पर स्थित है। इन मुख्य झीलों के अलावा राजसमंद झील, उदय सागर झील, बड़ी झील और जयसमंद झील, जिसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील माना जाता है। वैसे झीलों में नाव की सवारी करना भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर झील साफ सुथरे पानी से लबरेज है और दूर दूर तक बस पानी ही पानी नजर आता है। ये नज़ारा ना सिर्फ झीलों में ही अच्छा लगता है, अगर घरों में या आसपास हो जाए ना तो वाकई बहुत डर लगने लगता है। पिछोला झील के पूरब की तरफ है बेहद सुंदर सिटी पैलेस, उत्तर पूर्व कोने में मोहन मंदिर और झील के बीचों बीच है मशहूर लेक पैलेस, जो उदयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव, एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नीतू के साथ, ये है तस्वीर जिसमें बातें हो रही हैं उदयपुर की। और उदयपुर का सिटी पैलेस सबसे ज्यादा मशहूर है, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है और वाकई अपने आप में एक पूरे शहर को समेटे है। इतना भव्य और विशाल है ये महल कि कई मंजिला तो है ही है, एक म्यूजियम भी है इसमें। पूरा महल देखते देखते ना आप थक जाएंगे और ध्यान नहीं रखा तो भूल भुलैया की तरह गुम भी हो जाएंगे। तो इसे देखने के लिए ना आपको पूरा एक दिन चाहिए होगा। यहाँ हर शाम एक शानदार हाईटेक साउंड एंड लाइट शो भी आयोजित किया जाता है, जो मेवाड़ के समृद्ध इतिहास को जीवंत करता है। इसके अलावा आहर पुरातात्विक संग्रहालय में 3,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मिट्टी की वस्तुएँ हैं। बागोर की हवेली संग्रहालय में पेन बॉक्स, पंखे और शाही महिलाओं के तांबे के बर्तन जैसी रोजमर्रा की जो घरेलू वस्तुएं हैं उन्हें संरक्षित किया गया है। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान शाही राजपूत रानियों और राजाओं की पेंटिंग आप देखना चाहते हैं तो मोती मगरी संग्रहालय जा सकते हैं। और महाराणा प्रताप मेमोरियल पूरी तरह महाराणा प्रताप को समर्पित है। संग्रहालय ना एक ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ जाकर आप कुछ समय के लिए वापस उसी वक्त में चले जाते हैं और दिमाग भी ना उन सब कल्पनाओं को जैसे जिंदा कर देता है। अभी वर्तमान की बात करते हैं और वर्तमान में आ रहा है अगला गाना।

उदयपुर के मंदिरों की वास्तुकला में एक ना रहस्यमय अनुभूति है। ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। बहुत से मंदिर हैं वहाँ, जैसे बोहरा गणेश मंदिर, श्री जगदीश मंदिर, श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, नीमच माता मंदिर। इनमें सबसे मशहूर है एकलिंग जी और नीमच माता का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर अपनी वास्तुकला में बेमिसाल और भव्य है। नीमच माता के दर्शन करने के लिए आपको करीब 800 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, लेकिन ऊपर जाकर जब आप दर्शन करेंगे तो वहाँ की खूबसूरती को देखेंगे और सारी थकान उतर जाएगी। पर जो लोग उदयपुर की ट्रिप पर जाते हैं ना, वो उदयपुर के पास दो और मंदिरों को भी ज़रूर देखते हैं। एक तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, दूसरा माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। ये नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर के साथ साथ पिछवाई पेंटिंग्स के लिए भी प्रसिद्ध है और इसे पारंपरिक हस्तशिल्प कला और कलाकृतियों का केंद्र माना जाता है। और दिलवाड़ा मंदिरों के बारे में तो क्या ही कहा जाए, आप जितना देखें उतना कम लगता है। ऐसा लगता है कि बस देखते ही जाएं, चाहे नीचे देखें, ऊपर देखें, साइड में

तस्वीर में आज बात हो रही है राजस्थान के उदयपुर की, जो सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है और इसकी झलक युग तो आपको शहरों के बाजार में भी मिल जाएगी। मगर और नज़दीक से देखना हो तो शिल्प ग्राम महोत्सव और मेवाड़ महोत्सव सबसे बढ़िया अवसर है। मेवाड़ उत्सव हर साल मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है और 10 दिन तक चलने वाला शिल्प ग्राम महोत्सव दिसंबर में होता है। तो अगर आप कला और शिल्प में रुचि रखते हैं तो दिसंबर में उदयपुर जा सकते हैं। वैसे भी उदयपुर घूमने के लिए ना सही समय नवंबर से फरवरी तक का है। इस दौरान आप अच्छी तरह से घूम भी सकते हैं और अपने सफ़र को इंजॉय भी कर सकते हैं और वहाँ ना चिलचिलाती गर्मियाँ आम तौर पर नहीं पड़ती हैं, तो आप कभी भी प्लान कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए।

चलते चलते विंटेज कारों के शौकीनों को बता दूं कि उदयपुर में उनके लिए भी एक संग्रहालय है जिसे देखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे उदयपुर में संगमरमर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई भी किया जाता है। अगर आप उदयपुर में खरीदारी करने का मन बना रहे हों तो हाथी पोल बाजार, बापू बाजार, चेतक सर्कल

लेक पैलेस रोड, मालदास स्ट्रीट, घंटा घर और क्लॉक टावर जैसे बाजारों का चक्कर लगा सकते हैं। सरकारी एम्पोरियम्स के अलावा शिल्प ग्राम भी है। इन सभी जगहों से आपकी खरीदारी की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, चाहे वो हस्तशिल्प हो या राजस्थानी कपड़े या फिर ज्वेलरी, पेंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ा बाजार में बांधनी, बाटिक की साड़ियाँ और रंगीन जूतियाँ, चांदी और ऊँट की हड्डी के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। तो उदयपुर की इतनी ढेर सारी बातें हमने की हैं, तो किसी साथी को पकड़िए और चल पड़िए उदयपुर की तरफ।

कानों में जो विसल बजती है ना, कितनी अच्छी लगती है कानों में। कोई भी पुराने से पुराना गाना आप निकाल ले या फिर नए से नया, हर गाने में जब विसल बजती है तो एक अलग ही तरह का मोमेंटम क्रिएट हो जाता है कि वो मज़ा ही अलग हो जाता है गाने का, जैसे इस गाने में था। खैर, हम उदयपुर की बातें कर रहे हैं तो गानों की बातें तो एक बार शुरू होती है ना तो फिर ख़त्म ही नहीं होती है, लेकिन उदयपुर की बात अभी ख़त्म करनी है क्योंकि समय ख़त्म हो रहा है। तो फिर उदयपुर अगर आप जाना चाहते हैं तो, और अगर आपको आपका बजट अलाउ करता है, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता है, तो फिर हवाई यात्रा से बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, ट्रेन का सफ़र ज़्यादा सहूलियत भरा रहेगा क्योंकि सफ़र लंबा है, करीब 12 से 14 घंटे आप मान के चलिए आपको ट्रेन में लग जाएंगे, और इसमें आपका बजट भी कम है तो भी आपको ट्रेन जो है वो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं।

हैं, बस भी डायरेक्ट बनकर चलती हैं उदयपुर के लिए। तो आप जैसे चाहें, जैसे आपका बजट अलाउ करे, जैसे आप चाहें वैसे आप वहां जा सकते हैं। पहले उदयपुर में बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी, गर्मी कम पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे पूरी दुनिया बदल रही है वैसे वैसे उदयपुर पर भी उसका जो परछाई है पड़ रही है। तो कभी वहाँ पर भी ना अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जाने से पहले आप पूरा का पूरा ना फोकास्ट चेक करके जाइएगा, किस तरह का मौसम है, किस तरह की चीज़ें आपको लेके जानी है। ये सब प्लानिंग के साथ जाएंगे ना तो कोई भी जगह आपको, वहाँ कोई भी मौसम होगा आपको खलेगा नहीं। तो आप तैयारी कीजिए, मैं निकलती हूँ क्योंकि नीतू के जाने का समय हो गया है। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India and Australia are true, vibrant democracies, two multicultural societies and two significant ocean powers whose shared values and common worldview continue to strengthen mutual trust between the two nations. Speaking at a joint press statement, along with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, the Prime Minister said the comprehensive strategic partnership has made unprecedented progress over the past few years, and the summit has added new dimensions to bilateral cooperation.
1: Comprehensive Economic Cooperation Agreement, yani CECA par तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस और विन विन होगा हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है
2: The Prime Minister said Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but it also represents the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. He said India and Australia have reaffirmed that cooperation in defence and security is the cornerstone of the partnership in an increasingly complex strategic environment.
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी हम शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की
2: Prime Minister Modi said India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India. He said the agreement will give fresh momentum to India's clean energy goals. Mr. Modi said cooperation in critical minerals is vital for the strategic security and clean energy transition of both countries. He announced the launch of the Australia-India Partnership on Cyber Critical Technologies and Supply Chains, AI Pacts, and said India and Australia will also work together to establish a critical minerals corridor. Earlier this morning, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and an energy crisis. He said in such times it is essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Prime Minister Modi arrived in Melbourne last evening on a three-day visit to Australia. The US launched new airstrikes against Iran this morning. Tehran responded by targeting Bahrain, Kuwait and Qatar, escalating crossfire that again threatened an interim deal aimed at ending the war in the Persian Gulf. The strikes came hours after US President Donald Trump said recent Iranian attacks on ships in the Strait of Hormuz had signaled the end of the fragile ceasefire. Today's attacks appeared to be larger on both sides. Sirens sounded at least twice in Bahrain, home to the U.S. Navy's 5th Fleet headquarters. There was no immediate word on damage in Bahrain, Kuwait or Qatar. Kuwait's military said it was actively intercepting incoming drones and missiles. Iran's Revolutionary Guard claimed responsibility for attacks on Bahrain and Kuwait. The U.S. military central command said it struck about 90 targets across Iran. Back home, Delhiites woke up to heavy rainfall and thunderstorms this morning. The rain caused waterlogging in various places, due to which traffic movement was severely affected. The IMD had issued a red colour warning for moderate to heavy rain in the national capital, including Haryana. The Delhi government has said teams of the Delhi Jal Board, Public Works Department and the Municipal Corporation are on the ground to deal with the waterlogging situation. And with that, we end this news bulletin.

0: on Good. लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी कल्पना,
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों और कल्पना तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: मेरा भी नमस्कार। और हमने ये तो बताया ही नहीं कि भाई एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे दोस्त जो है वो हमें सुन सकते हैं, और मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी हमें सुने आप। और हम रोजाना अपने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज भी हम वो प्रश्न पूछेंगे, तो आपको बतानी है
1: जी। बड़ा रोचक सा प्रश्न है, और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और हम सब चाहते हैं हमारे पूरे देश भारत में संतुलित बारिश होती रहे, हमारा जो देश है, हमारा पूरा भारत देश अन्न धन से भरा रहे, है ना?
0: बिल्कुल भरा रहे। और जब बारिश होती है ना, तो हमें अपना बचपन बड़ा याद आता है। तो मैं वहीं से एक प्रश्न लेकर आई हूँ, वही मैं आज अपने दोस्तों से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें बताना है कि उनके बचपन की एक मासूम सी शरारत क्या है, और उन्हें
1: और अगर कल्पना वो शरारत थोड़ी मासूम ना हो तो
0: कोई बात नहीं,
1: वैसे शरारत बता दीजिए
0: बस शरारत बता दीजिए। अगर आपको अपनी याद आती है अपनी बता दीजिए, या फिर अपने बच्चों की याद आती है तो वो भी बता सकते हैं आप। बस शरारत आपको बतानी है कि बचपन में क्या क्या आपने शरारतें देखी हैं और की हैं। और हमें ईमेल करना है fmgoldg@gmail.com पर,
1: fmgoldg@gmail.com पर हम इंतजार कर रहे हैं आपकी मासूम शरारत सुनने का। और आइए इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं इस खूबसूरत विचार के साथ, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि समय पर समय देने वाले लोग सही समय पर मिल जाए तो समय बदलते भाई देर नहीं लगती। कल्पना
0: बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को हमें संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें ये बताते भी रहना चाहिए कि भाई उनके होने से ही हमारा जो जीवन है ना वो बहुत सुंदर है।

0: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और देखिए बरसात का मौसम है, ये मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडी फुहारें तो लाता ही है, लेकिन यदि पहनावे का सही चुनाव ना किया जाए तो ये मौसम असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी कारण बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि महिलाओं के लिए तो इस मौसम में ऐसे ही कपड़े चुनना बेहतर होता है जो हल्के हों और जल्दी सूख जाएं, यानी कि कॉटन ब्लेंड, रेयन या ड्राई फिट जैसे जो कपड़े हैं वो आरामदायक रहेंगे। बहुत लंबे घेर वाले जो सूट होते हैं ना कल्पना, जैसे प्लाजो हो या साड़ी का पल्लू, कई बार ऐसा होता है ना बरसात में पानी और कीचड़ में भीग जाता है, तो मुझे लगता है सुविधाजनक पहनावा अपनाना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब हम आगे बात करते हैं फुटवेयर की। जैसे हम कुछ भी पहन लेते हैं तो बारिश के मौसम में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि चमड़े या कपड़े के जो जूते हैं उनकी बजाय ग्रिप वाली रबर या फिर वाटरप्रूफ जो सैंडल और फ्लोटर्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। बहुत ऊंची हील्स या फिसलन वाले जो चप्पल होते हैं वो भी अगर पहनेंगे तो फिसलने का खतरा रहेगा और वो आरामदायक भी नहीं रहती।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कि अच्छी ग्रिप वाली सैंडल आप पहने, ताकि जो भाई बारिशों में ऐसा होता है ना, जो तेल और जो पानी होता है उसका जो मिश्रण बनता है वो वाकई, और अगर खासकर उम्र थोड़ा सा आपकी बड़ी हो महिलाओं की या पुरुषों की भी, तो अगर गिरे और वजन ज्यादा हो तो वो भयंकर कुछ
0: दिक्कत
1: हो सकती है। और इतना भी होना चाहिए, जैसे आप फुटवेयर तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन पैरों का भी ध्यान रखें। बारिश में जब आप बाहर से घर लौटें तो पैरों को साफ पानी से धो लें, अच्छी तरह सुखाएं, और इससे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो उससे आप बच सकते हैं, त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी कल्पना काफी कम हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मौसम कोई भी हो, सही पहनावा और सुरक्षित जो फुटवेयर है वो आपकी सुविधा भी बढ़ाते हैं और आपकी सेहत और सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। और ऐसे मौसम में अगर आप कपड़े पहनते हैं, दुपट्टा उपट्टा पहनते हैं, तो थोड़ा उसको ढंग से पहनिए, क्योंकि हवाएं जो चल रही होती है बड़ी ठंडी चल रही होती है
1: जी, थोड़ी ठंडक और आर्द्रता हवाओं में आ जाती है, तो ठंडी हवाओं से थोड़ा सा मजा भी लें और बने।

0: और कल्पना, जो प्रश्न हमने पूछा था, बचपन की मासूम शरारत, ये हमारे पास ईमेल्स आने लग गई हैं। भास्विता हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि भाई उन्होंने क्या किया कि बचपन की शरारत जो है वो आलू ज़मीन में खोद कर लगाया था और फिर उसे रोज़ खोद खोद कर देखती रही कि आलू आए कि नहीं, और साथ ही उन्होंने 50 पैसे भी ज़मीन पर दबा के रखे थे कि शायद उसका पेड़ आ जाएगा, पर पेड़ तो नहीं आया, पर वो पैसे भी चले गए, तो वो भूल गई, बाद में उन्हें बहुत दुख हुआ। वाकई ये तो बहुत ही मासूम शरारत है, छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल जी हमें लिखते हैं कि मेरी उम्र उस समय शायद 14 साल रही होगी, भांजा घर आया हुआ था, उसका जड़ूला नहीं उतरा हुआ था, उसके बाल इस कारण बड़े हुए थे, मैंने चाबी वाले हेलीकॉप्टर खिलौने में चाबी भरकर उसके सर पर रख दिया और उसके बाल उलझ गए, जैसे जैसे भैया ने सुलझाना चाहा बाल खींचने के कारण वो बहुत रोया। हाँ। मेरी बहुत पिटाई हुई होनी थी फिर
0: जी
1: तो।
0: बिल्कुल। और नवीन भाटिया जी कह रहे हैं कि 9th में था और घर से निकला था, दोस्त के घर जा रहा था और फिर बारिश में भीगते भीगते साइकिल में काम जिसे कहते हैं ना, 1 घंटा घूमता रहा, खूब भीगा खूब नहाया और मुझे लगता है उसके बाद तो शायद घर में पहुंचे होंगे, जुकाम वगैरह तो घर में डांट भी पड़ी होगी, भाई ये कहां से क्या कर रहे थे तुम बारिश में, है ना।
1: सही है, शरारतें चल रही। तो एक शरारत भूमिका शुक्ला ने लिख के भेजी है कि भाई मैं पढ़ने में थोड़ी वीक थी तो जब मेरे पेपर स्टार्ट होते थे तो हमारे चाचा जी जो हमें पढ़ाते थे वो मेरा पेपर चेक करते थे, तो मैं उनके आने पर सोने का नाटक करती थी ताकि वो मुझे कुछ डांट ना पाए और अच्छा। कुछ पूछ ना पाए मुझसे।
0: और देखिए एक और मेल आया है, राधा वासु रोहिणी से कह रहे हैं कि मैं तो बारिश होते ही कागज की नाव बनाकर सड़क पर भरे पानी में तैरने डाल देती थी और मेरी जब शादी पक्की हुई, अच्छा उसके बाद भी जब बारिश हुई तो मैंने कागज की नाव बनाई तो सब मुझ पर बहुत हंसे, आज ही मुझे कागज की नाव बनाने का बहुत शौक है। भाई ये शौक तो मुझे भी है कल्पना।
1: बिल्कुल सही है। और हमारे अन्य श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौधरी वास जिला हिसार हरियाणा से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष और विवेक प्रियांशी, वो सब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम हमारा अच्छा भी लग रहा है। और उनसे ये भी कहना चाहूँगी और हमारे जो अभी नए जो अन्य श्रोता जुड़े हैं उनको भी बताना चाहूँगी, हमारा जो प्रश्न है कि भाई आपको अपने बचपन की जो मासूम शरारत है वो हमें लिख भेजनी है, हमें ईमेल करनी है, हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
0: तो जल्दी से लिख भेजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी ईमेल्स का।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी।
1: और कल्पना, मेल्स लगातार हमारे पास आ रही हैं। आप हैं प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि प्रकाश गोगिया करकरडूमा दिल्ली से कह रहे हैं, हमारे समय में स्कूल में स्याही कलम और तख्ती का प्रयोग होता था और हम अपने आगे बैठे हुए छात्र मित्र पर की कमीज पर स्याही डाल देते थे और बड़े मासूम से बनकर चुपचाप वहां से 3-4 बच्चों के पीछे जाकर बैठ जाते थे। भाई प्रकाश जी, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत शरारती रहे होंगे।
0: बिल्कुल। और नवीन कुमार भी जी ऐसे कुछ लिखते हैं कि बचपन में हम दोस्तों के साथ खाने पीने की छोटी सी दुकान लगाते थे, टॉफी बिस्कुट और नमकीन बेचते थे। ग्राहक आते तो सामान देने में बहुत खुशी होती थी, कमाई से ज्यादा मजा दुकान चलाने और दोस्तों के साथ बिताए उन सुनहरे पलों में आता था, पर इसमें शैतानी तो कोई थी ही नहीं।
1: उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि बचपन में हम स्कूल से भागकर खेलने निकल जाते थे और जब स्कूल आते थे तो कुछ भी बहाना बना देते थे। भाई देखिए, ये तो शरारत सही नहीं है ना, स्कूल तो बच्चों जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये भी करते हैं शरारत बच्चे, कम से कम खेलने के लिए की अच्छी बात है।
0: और ये देखिए, चरण दास जी ने भी ईमेल किया है कि बचपन के दिन याद करने से आधी बीमारी कम होती है। हम स्कूल में कपड़े का बैग लेकर जाते थे, उन्हें पूरी क्लास के बैग के साथ बांध देते थे, किसी की कमीज के साथ बांध देते थे, ऐसे ही हम शरारते करते थे, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार पहुंच भी जाता था।
1: अच्छा, और मधु किरण दिल्ली से कह रही है कि बरसात के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ डेस्क पर बैठने वाली जगह पर कीचड़ लगा देती थी, अरे, और इस वजह से स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, परंतु एक बार किसी ने देख लिया और हम चारों सहेलियों की खूब पिटाई हुई, और वो दिन आज भी याद आता है तो मन रोमांच से भर जाता है। भाई वाह मधु जी, मतलब आप भी काफी शरारती थी बचपन में। और एक और मेल आया है हमारे पास, सुशील पठानिया नादौर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं अभिनंदन, और वो कहते हैं मैं बहुत शरारती था, एक बार मैंने मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद कर दिए और पत्थर को धीरे से तोड़कर बड़ा कर दिया और दादाजी से बहुत मार पड़ी, प्यार वाली मार पड़ी, क्योंकि छेद पड़े मिट्टी के घड़ों को किसी टूटे घड़े का छोटा टुकड़ा देकर सीमेंट के साथ जोड़कर ठीक हो जाते थे। भाई मार थोड़ी बहुत बच्चों को पड़ती रहती थी उस समय, तो

0: है ना, और वो बड़े प्यार से प्यार भरी मार होती थी, उसमें ममता भी होती थी उस मार में।
1: बचपन में तो शरारते करो तो मार तो पड़ती ही थी, लेकिन वही जो मार है, वही जो अनुशासन जो बनता था, उससे ही हम आगे बढ़ते थे।
0: और महेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं नमस्कार, मुझे अपनी शरारत जो है वो बस ये याद आता है कि मैं फुटबॉल खेलता था और अक्सर मुझे चोट लग जाती थी तो फुटबॉल खेलते हुए, तो फिर ऐसे में पिताजी जब डॉक्टर के पास ले जाते थे तो वहां कहते थे कि बहुत शरारत करते हो। मुझे याद आता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छा मुस्कुराते थे और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलते थे, तो यानी कि उस शरारत में भी आपको शाबाशी ही मिल जाती थी, है ना, जब वॉलीबॉल खेलते थे फुटबॉल खेलते थे।
1: बिल्कुल सही बात है। और आपने जब शाबाशी की बात की है तो एक जो शाबाशी की बात है वो हम भी करना चाहते हैं।
0: अच्छा,
1: आज बात करेंगे। कहते हैं कि सुई धागा जो है वो केवल कपड़ों को ही नहीं जोड़ते बल्कि संस्कृति और परंपराओं को भी पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी कला के बलबूते अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री 2026 तृप्ति मुखर्जी की।
0: भाई अभी इससे पहले तुमने बताया था कि पहनावा कैसे होना चाहिए और यहाँ पर पहनावे के सजावट की बात हो रही है, तो तृप्ति मुखर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई कलाकार हैं। उन्होंने 37 वर्षों से इस पारंपरिक लोक कला को संजोने और नई पहचान दिलाने का कार्य किया है, और हम तो कहेंगे उन्होंने जो देश विदेश तक इस कला को पहुंचाया है, तो हजारों ग्रामीण महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया है।
1: बिल्कुल, और उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने 2026 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। ये सम्मान केवल एक कलाकार का नहीं बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और महिला सशक्तिकरण का भी सम्मान है।
0: भाई कांथा की साड़ियां तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे पास भी है कांथा की साड़ियां, और इसकी जो कढ़ाई होती है ना कल्पना, वो बड़ी मनमोहक होती है, बहुत सुंदर लगती है। तो हम तो यही कहेंगे कि उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे।
0: क्या बात है, वाह।

0: थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोंसले जी की आवाज में।
1: और एक और ईमेल आ गई है मांगेराम पारिख नुइया वाली सिरसा से, कह रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं गीतों की। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारा जो विषय है आज का, बचपन की मासूम शरारत, उस पर कुछ दो लाइनें लिखकर जरूर हमें भेजें। और इसके साथ एक और मेल है अमीन खान, वो कह रहे हैं सोरोनी सेक्टर 5 से, कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में कागज की नाव बनाकर पानी में चलाना बहुत अच्छा लगता था, बरसते पानी में उछल उछल कर मैं नहाता था। तो भाई नावों का मौसम आ गया है ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एक ईमेल और आ गया हमारे पास गौरी शंकर वर्मा जी का, और वो लिखते हैं कि 1969 की बात है, हम चार दोस्त अमरूद के बाग में जाते थे, माली के लड़के को 10 पैसे दे दिया करते थे, माली बाग में आता जब वह सीटी बजा दिया करता था हम भाग जाते थे। अच्छा। एक दिन माली ने सोचा कि मैं जब आता हूं तो मेरा लड़का सीटी क्यों बजाता है। एक दिन माली ने एक दोस्त को पकड़ लिया और फिर सब इकट्ठे हो गए, और जब वह बाग हमारे पड़ोसी का ही था और फिर जब हम भागे तो हमें उस माली ने पकड़ा और पकड़ के हमारी धुनाई कर दी।
1: और यहां पर मैं एक और जरा जो सावधानी है वो बताने जा रही हूँ। डॉक्टर जो राजेश राव है वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज गुरु दत्तात्रेय जयंती है और हम आज के दिन ये मनाते हैं, और ये कहते हैं कि एक दूसरे की जो सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम चल रहे होते हैं, खाली जगहें होती हैं, खाली गलियां होती हैं, और ध्यान नहीं देते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें और बहुत ध्यान से चलें, फुटपाथ पर चलते हुए ध्यान दें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है तो उसमें भी ऐसा ना हो आपका कहीं पाँव पड़ जाए। तो बारिश में ये भी सावधानी की जरूरत है। तो ये सारी शरारतों के बीच हम कह रहे हैं ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कल्पना
0: शरारतें तो करें ही लेकिन सावधानियां भी रखें थोड़ी सी। और आपने एक ऐसी बात की, इसके बाद मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। एक ईमेल और आया है, धर्मेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं कि एक बार मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, मेरे घर फूफा जी आए हुए थे, कथा के बाद प्रसाद पाया पंजीरी वाला, फूफा के सामने फूफा बोलकर पंजीरी उड़ा दी फूफा के मुंह पर, फिर मम्मी ने दो बेलन चुका दिए।
1: भाई ये तो होना ही था, फूफा, ओहो मैं समझ गई। अच्छा, तो ऐसी ही एक मेल हमारे पास रोहिणी से सोनाली लिखती हैं कि जब मेरा बेटा 2 साल का था तो एक दिन बड़ी देर तक उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, तो चिंता की विषय हो गया और उन्हें तनाव हो गया क्योंकि वो बड़ा शरारती था। पूरे घर में उसे ढूंढने के बाद आखिर में वो मिला कहाँ पता है? रसोई घर में आलू प्याज के ढेर के बीच में बैठा हुआ था। सब तरफ आलू प्याज बिखरे हुए थे और वो उनके साथ खेलता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था, और फिर टोकरी उठाकर सब्जी वाले की नकल करने लगा। ऐसे में तो मैं उसे क्या ही डांटती, मैं लाड से हंस पड़ी। भाई वाह,
0: बिल्कुल सही बात है, मम्मियां तो बच्चों की शरारतों पे मुस्कुराती ही हैं।
1: जी, वारी वारी जाती हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे और श्रोता जैसे सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हमारे जो अन्य श्रोता है वो भी हमसे जुड़े रहे और हमें ईमेल करते रहे, अपनी शरारतें बताते रहे।

0: पर
1: जी।
0: और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। यदि आपको मंच
1: काफी देर से हम लोग बोल रहे हैं तो हम बताएं
0: बिल्कुल जानकारी भी तो देनी है अपने दोस्तों को, तो पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे। और हमारे बहुत से दोस्त हैं जो मंच पर जाते हैं लेकिन मंच पर जाने से पहले घबराहट होती है, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। लगभग हर अच्छे वक्ता ने कभी ना कभी स्टेज फियर का सामना किया है। आज हम बात करेंगे इसी को कम करने के कुछ असरदार उपायों
1: जी। बिल्कुल तनाव में ना रहें, पूरी तैयारी करें, अपने विषय को अच्छी तरह से समझ लें, शुरुआत और अंत की पंक्तियां याद रखें ताकि आत्मविश्वास बना रहे, बार बार उसका अभ्यास करें। पहले ऐसा करें कि आईने के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें और सुने। हम रेडियो वाले ये करते हैं ना, कितनी बार है ना कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर खुद ही सुनते हैं और खुद ही डायरेक्टर होते हैं और खुद ही एक्टर होते हैं, और उसके बाद परिवार और दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मंच पर जा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपको 4-5 बार गहरी सांस लेकर उसे धीरे धीरे छोड़ना है, इससे घबराहट कम होती है। और आपको धीरे धीरे बोलना है, स्पष्ट बोलना है, बहुत तेज यानी स्पीड में बोलने की कोशिश नहीं करनी है। यदि 1-2 सेकंड का विराम भी लेना पड़े तो बिल्कुल सामान्य है। श्रोताओं को अपना साथी समझें, ये ना सोचें कि लोग आपकी गलती ढूंढेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको सुनने आए हैं, आपकी परीक्षा लेने कोई नहीं आता
1: जी। और छोटी शुरुआत करें, पहले छोटे छोटे समूह में बोलने का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़े मंच पर जाने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और याद रखें, गलती से बिल्कुल डरना नहीं है। अगर कोई शब्द छूट जाए या थोड़ा रुक जाए तो मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाए। और अधिकांश श्रोता ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, पर एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कल्पना, कि आत्मविश्वास को लेकर कोई मंच पर नहीं जाता, बल्कि मंच पर बार बार जाने से आत्मविश्वास आता है।
0: क्या बात
1: है? जी। और जब आप आत्मविश्वास से कुछ बोलेंगे ना तो देखना पूरी दुनिया को आपकी बातें अच्छी लगने लगेंगी, है ना।
0: और आपने अच्छी बातों की बात की है तो अब हम दोस्तों को एक अच्छा सा गीत भी सुना देते हैं
1: जी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के, फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की।
1: और कल्पना, एक और मेल मेरे पास आई है, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं मयूर विहार से। वो कह रही हैं कि एक बार घर में मेहमान आने वाले थे और माँ ने बड़े प्यार से मिठाइयाँ बनाकर डिब्बे में रख दी और सख्त हिदायत दी कोई मिठाई नहीं खाएगा। लेकिन भाई मिठाई की खुशबू से सब्र कहाँ होता, तो मैं और मेरा भाई हम चुपके से उठे, हमने रसोई में पहुँचे और मिठाई खा ली और फिर लगा कि डर गए कि कम दिखेगी तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, डिब्बे में रूई भर दी और ऊपर से मिठाइयाँ सजा दी। जब मेहमानों के सामने डब्बा खुला तो मेहमानों मिठाइयों के नीचे रूई देखा, सब हैरान रह गए। माँ ने हमें देखा और हमारी झुकी हुई नजरों ने सारी कहानी बता दी। पहले तो माँ नाराज हुई, फिर हमारी मासूम हरकत पर खुद ही हंस पड़ी। भाई वाह। और एक और मेरे पास संदेश आ गया है, आप हैं गुड़गांव से जितेंद्र। वो कह रहे हैं कि पापा की बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमना किसी रोमांच से कम नहीं होता था। दो कदम चलते थे, फिर तीन बार फिसलते थे, खुद को बहुत बड़ा समझते थे। घर वाले हमें देखकर हंसते थे, हम पूरे रौब से कहते देखो मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। कहते हैं ना कि अगर पिता की चप्पल पुत्र के पैर में आने लगे तो वो बड़ा हो जाता। तो ऐसा ही कुछ जितेंद्र जी कहना चाह रहे हैं ना।
0: बिल्कुल सही बात है, और इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि वे कहते हैं कि इंसान की पहचान सिर्फ उसके शब्दों से नहीं बल्कि उन्हें कहने के तरीके से भी होती है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने से बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है।
1: जैसे हम सब जब परिवार की बात करते हैं तो भाई प्यार और सम्मान ही तो रिश्तों की नींव होती है। भाई एक पल का गुस्सा और कठोर बातें वर्षों का अपनापन भी आहत कर देती हैं। बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों का आत्मविश्वास खत्म हो सकता है, इसलिए अपनी बात को ना कल्पना हमेशा शांति से समझाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और कई बार हम जैसे अस्पताल में जाते हैं तो हमने कई बार देखा है कि लोग डॉक्टर्स पर भी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनसे बस ये कहना है कि भाई उससे कुछ बदलता नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे होते हैं, बल्कि आप उन पर गुस्से में चिल्लाकर अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं। अस्पताल में भी धैर्य और संवेदनशीलता की बेहद ज़रूरत होती है, तो वही बनाए रखें।
1: और सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, यदि आप कभी इस प्रकार का मौका पड़ जाए कि पुलिस से कभी बात करनी पड़े, सामना हो जाए, भी ट्रैफिक में आप कभी हो सकता है रेड लाइट क्रॉस कर जाए, तो पुलिस के सामने भी शांत रहकर अपनी बात रखें, वो ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है क्योंकि वो भी हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। कुछ लोगों को ना कल्पना सड़क पर बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और फिर कई बार बहुत अनचाही घटनाओं की वजह भी वो सब बन सकता है, तो इसमें क्या होता है, नुकसान अपना ही होता है ना।
0: बिल्कुल सही है, इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो अपनी आवाज नहीं अपने धैर्य को ऊंचा रखिए, क्योंकि संयम से लिया गया एक सही निर्णय कई परेशानियों को आने से पहले ही रोक देता है।
1: तो याद रखिए, ऊंची आवाज नहीं बल्कि ऊंचे विचार और व्यवहार आपको बेहतर पहचान दिलाते हैं, है ना।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं गोरा और काला फिल्म से लता और मुकेश की आवाज़ में। और देखिए, हमारे एक श्रोता ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि नमस्कार जी, एफएम गोल्ड पर घर आंगन जैसा बेहतरीन कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए गोल्ड के अधिकारियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं एफएम गोल्ड के समस्त पुराने श्रोता सत्य प्रकाश गोयल, भगवती सोलंकी, अनीता वर्मा, स्वामी अनिल त्यागी, प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, किशन वंजानी, दिल्ली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल एफएम गोल्ड के साथ। और चलिए अब आगे बात करते हैं। एक बहुत अच्छी और रोचक जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ कि भाई जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा स्कूल जहाँ ना कोई फीस हो, ना कोई बड़ी इमारत, ना ब्लैक बोर्ड, ना बेंच, ना डेस्क, और सबसे दिलचस्प बात, जहाँ कक्षा नदी के बीच लगती हो। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना
1: जी। मुझे लग रहा है कि बरसात की बात हो रही है तो तुम कुछ ऐसी जगह ले जा रहे हो जहाँ पे भाई नदी, यानी बरसातों में तो नदियों में पानी बढ़ जाता है ना, तो तुम किसी कौशल की बात करने जा रही हो नदी में। मतलब मैं नहीं बोलूंगी, तुम ही बोलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जिक्र तो कर रही थी, आपको याद है तो आप बताओ ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको।
1: भाई ये कहानी नहीं है बल्कि हमारे देश की एक प्रेरणादायक पहल है ना। तो जो केरल के अलपुझा जिले में एक अनोखा स्विमिंग स्कूल चलाया जा रहा है, यहाँ बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को निःशुल्क तैराकी सिखाई जाती है। इस स्कूल की कक्षा किसी कमरे में नहीं बल्कि नदी के पानी में लगती है।
0: वाह वाह वाह। और इस पहल की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि केरल में मॉनसून के दौरान बाढ़ और जलभराव की स्थिति अक्सर बन जाती है, ये तो कहीं पे भी बन जाती है स्थिति। ऐसे समय में तैरना केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन बचाने वाला कौशल बन जाता है। तो स्थानीय स्वयं सेवकों ने मिलकर लोगों को तैराकी और जल सुरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया ताकि कोई भी व्यक्ति पानी से जुड़ी दुर्घटनाओं का शिकार न बने।
1: और इस अनोखी पहल की सराहना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में की थी। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए हमेशा बड़ी इमारतों की नहीं बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि ये पहल हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि जीवन में कुछ ऐसे हुनर भी होते हैं जो सही समय पर किसी का जीवन भी बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए हम भी अपने बच्चों को तैराकी जैसे जीवन रक्षक कौशल सीखने के लिए प्रेरित करें और समाज में ऐसे सकारात्मक पहलों का समर्थन करें।
1: हाँ, और बरसात में अगर नदी के किनारे जाएं तो थोड़ा सावधान होके जाए, है ना।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों मुझे जीनो द फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो से की कल्पना
1: और रश्मि कुकृति को दीजिए विदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: 당근.
1: 아빠의 아스티트와 아빠의 व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त

0: नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the third India-Australia annual summit. The two leaders hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security and technological innovation. Prime Minister Modi declared

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम एक ऐसे अभिनेता और फिल्मकार को याद करने वाले हैं जिनकी फिल्में ही नहीं बल्कि मन भी प्रेम से लबालब था। एक ऐसे फिल्मकार जिन्हें सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सम्मान मिला और उन्हें भारत का ऑर्सन वेल्स कहा जाता था।

एक अलग ही एरा में आज आप जाने वाले हैं, गुरुदत्त के ज़माने में आप जाएंगे आज, जहां दिल से फिल्में बनाई जाती थीं, बहुत ही मन लगाकर एक एक सीन को सोचा जाता था। गुरुदत्त के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ आप जानते होंगे। आज मैं भी कोशिश करूंगी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँ जो शायद आप जानते हों, शायद आप ना भी जानते हों। दोस्तों, आज़ादी के बाद देश में जो फिल्में आ रही थी वो विदेशी सिनेमा की तुलना में टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन गुरुदत्त और उनके जैसे कुछ चुनिंदा फिल्मकारों ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसी कई टेक्निक रही जो गुरुदत्त लेकर आए। प्रोड्यूसर, एक्टर और फिल्म मेकर के अलावा गुरुदत्त एक अच्छे कोरियोग्राफर और राइटर भी रहे। गुरुदत्त को बचपन में वसंत कुमार और गुरुदत्ता पाडुकोण के नाम से जाना जाता था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदला और फिर उन्हें गुरुदत्त के नाम से पहचान मिली।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में CID फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना। इस फिल्म के डायरेक्टर थे गुरुदत्त। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम गुरुदत्त को याद कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शबनम। दोस्तों, गुरुदत्त का जन्म मैसूर कर्नाटका में हुआ था 9 जुलाई 1925 को। उनके पिता शिव शंकर राव पांडुकोन हेडमास्टर थे, फिर बैंकर रहे। माँ वसंती एक टीचर और राइटर थी। अक्सर गुरुदत्त को बंगाली मूल से माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो बंगाल से थे, लेकिन असल में उनका बचपन वहाँ बीता था और वो बेहतरीन बंगाली बोला करते थे। पश्चिम बंगाल में परवरिश और वहाँ से लगाव का असर उनकी फिल्मों में भी देखा जाता है। तो एक और बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा, वो मैं सुनाने वाली हूँ। बहुत बेसब्री से इंतज़ार मुझे भी है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना चौधवी का चांद फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, और ये एक बहुत ही चर्चित फिल्म रही है गुरुदत्त की। दोस्तों, कहते हैं कि गुरुदत्त का जो बचपन है वो पैसे की कमी और पारिवारिक उथल पुथल से भरा रहा। उनका परिवार रोजगार की तलाश में कर्नाटका छोड़कर बंगाल बस गया था। बचपन के संघर्ष पूरी जिंदगी गुरुदत्त पर हावी रहे। वो गहरी सोच में डूबे रहा करते थे, उनका स्वभाव ही बन गया ये। आपने किसी फिल्म में वो सीन ज़रूर देखा होगा कि एक्टर सोचते सोचते अपने अतीत में चला जाता है या भविष्य की तस्वीर बनाने लगता है। इसे आत्मविश्लेषण शैली कहा जाता है। इसमें आपको फिल्म के अंदर फिल्म दिखाई देती है। इस टेक्निक का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले गुरुदत्त ने ही किया था अपनी फिल्मों में।

नौकरी भी किया करते थे, उन दिनों देश की आज़ादी के लिए हर तरफ आंदोलन हो रहे थे। इसी उथल पुथल भरे माहौल में उन्होंने एक कहानी भी लिखी जिसमें कि एक कलाकार की निराशा और सामाजिक मोहभंग के बारे में लिखा गया था। इस कहानी का नाम कश्मकश था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस कहानी को यूटिलाइज किया, इस कहानी का इस्तेमाल किया और इसी कहानी के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी कई फिल्में बनाई। जी हाँ, उनकी जो पर्सनल जो स्टोरी है, उनके जीवन की जो कहानी है, उसको उन्होंने कई बार कई फिल्मों में इस्तेमाल किया।

0: गीता दत्त की आवाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत गाना सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप जल्दी से लौट कर आइए।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं गुरुदत्त की।

गीता दत्त की आवाज में प्यासा फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी आकाशवाणी फिल्म गोल्ड पर। आज हम याद कर रहे हैं गुरुदत्त को। दोस्तों, प्यासा एक ऐसे कलाकार के संघर्ष की कहानी है जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाली इस दुनिया को पसंद नहीं करता। प्यासा गुरुदत्त का ड्रीम प्रोजेक्ट थी और वो इससे बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे। गुरुदत्त अपने फिल्म्स के सीन्स को कई बार शूट करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यासा के क्लाइमेक्स को उन्होंने 104 बार शूट किया था। आप समझ सकते हैं कि वो इस फिल्म को लेकर किस हद तक सीरियस थे। अपनी नींदें, अपने सपने, अपनी यादें, प्यास के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और आखिरकार जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जैसे गुरुदत्त का ख्वाब पूरा हो गया। ये फिल्म थिएटर पर तो कामयाब ही रही, साथ ही साथ इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा भी मिला। प्यासा 20वीं शताब्दी के 100 महान फिल्मों में अपनी जगह बनाने वाली इकलौती हिंदी फिल्म थी। कहा तो ये भी जाता है कि ये गुरुदत्त की अपनी खुद की कहानी थी। वैसे गुरुदत्त की हर फिल्म से ही उनके इमोशंस बहुत ही गहराई के साथ जुड़े हुए थे।

कागज़ के फूल फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज़ में आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों, बतौर निर्देशक गुरुदत्त की जो पहली फिल्म थी वो बाजी थी, जो कि उन्हें उनके दोस्त देवानंद ने ऑफर की थी। ये 1951 में रिलीज हुई थी और काफ़ी चर्चा में रही। बाजी को हिंदी सिनेमा की पहली क्राइम नॉयर माना जाता है। फिल्म डायरेक्शन में गुरुदत्त ने ऐसी कई चीज़ों की शुरुआत की जो पहले किसी ने नहीं की। उनकी एक नहीं बल्कि करीब करीब सभी फिल्में ऐसी रहीं जिन्हें माइलस्टोन माना जाता है, क्लासिक माना जाता है। एक और ऐसी ही फिल्म रही साहिब बीबी और गुलाम, जिसके लिए गुरुदत्त को मतलब उन ज़्यादातर फिल्में गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट की थी, लेकिन कुछ सालों तक उन्होंने दूसरे डायरेक्टर को डायरेक्शन देते रहे वो, और अपना नाम उन्होंने उन फिल्मों में नहीं दिया, क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। और साहिब बीबी और गुलाम भी ऐसी फिल्म थी। तो इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड दोनों मिले थे। ये फिल्म विदेशों में भी चर्चित रही। इसे भारत की तरफ से एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी भेजा गया था।

दोस्तों, गीता दत्त की आवाज़ में आपने ये गाना सुना साहिब बीबी और ग़ुलाम फिल्म से। दोस्तों, 1945 में आई फिल्म नखरानी से लेकर अपनी आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी तक गुरुदत्त ने पर्दे पर जो कमाल दिखाया वो बेमिसाल रहा। आज 9 जुलाई उनका जन्मदिन है, इसलिए हमने उन्हें याद किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड। अभी वक्त हो चला है उर्दू में खबरों का।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी अल्बानीज़ के साथ सालाना सरबराह मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में वसअत पैदा हो रही है जो मजबूत बाहमी एतमाद पर मबनी है। कौमी राजधानी खित्ते में तेज बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल के लिए कौमी मिशन का आगाज किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत मुकर्रर करदा बालिगों की खानदगी हासिल करने के मामले में उत्तराखंड ने मुकम्मल खानदगी हासिल कर ली है और वियतनाम में होने वाले पिकबॉल आलमी कप 2026 के लिए भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी अल्बानीज़ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना सरबराह मुलाकात में शिरकत की, जिसके तहत वफ्द की सतह की बातचीत की गई। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने समिट के इख्तिताम पर विक्टोरिया में गवर्नमेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस बयान जारी किए। दोनों लीडरों ने दो तरफा ताल्लुकात में यकसर तब्दीली को एक अहम कदम करार देते हुए इसकी सताइश की। भारत बहर-उल-काहिल में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी इश्तराक के सिलसिले में एक मुश्तरका ऐलामिये पर दस्तखत किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया को दरख्शां जमहूरियतें और अहम समंदरी कुवतें करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत बहर-उल-काहिल सिर्फ दो समंदरों का संगम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक ज़हीन जमहूरियतों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में मजीद वसअत पैदा हो रही है जो गहरे बाहमी एतमाद पर मबनी है। इस समिट की एक अहम खसूसियत इक्तिसादी और तिजारती इश्तराक को रफ्तार देना है।
1: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में एक अहम इकदाम के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत के माहौल के लिए साजगार मकासिद को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अहम टेक्नोलॉजियों और सप्लाई चेन से मुतालिक ऑस्ट्रेलिया भारत शराकत दारी और अहम मादनियात से मुतालिक एक मखसूस कॉरिडोर के आगाज के साथ ही अहम टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ्फुज़ को भी नई बुलंदी हासिल हुई है।
1: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की खबरें आईं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा समेत कौमी राजधानी में अवसर से शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड, अवामी कामकाज के महकमे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पानी जमा होने की सूरत हाल से निमटने के लिए सरगर्म है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज भुवनेश्वर में उड़ीसा की जरई और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारत के गहरे समुद्र में माहीगीरी के वसाइल के पायदार इस्तेमाल की खातिर एक तारीखी कौमी पहल का आगाज किया। बहरी मईशत को कौमी खुशहाली के मामले में एक यकसर तब्दीली वाला इंजन करार देते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि विकसित भारत के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी माहीगीरी और बहरी पेशावराना खिदमात को इख्तियार करें। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हुकूमत ने आज गहरे

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
0: इससे पहले

0: प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIRF और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक

समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत

0: है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के

0: सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति

0: अनवे, जब हम आपसे मिलने के लिए आते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं और ये भी प्रश्न होता है कि आज हम अपने श्रोताओं के समक्ष क्या लेकर जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बताते हैं विषय भी और जो विशेषज्ञ आते हैं उनके बारे में भी आपसे हम रूबरू करवाएंगे उन्हें। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं हूं आपके साथ कमलेश मुद्गल और मेरे साथी हैं
1: अमित तेवतिया,
0: और स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। और जब हम बात करते हैं अपने शरीर की और शरीर के साथ साथ स्वास्थ्य की, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई जो अपने घर में जो भी हमें हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ें बताई हैं वो हमें खाने में उपयोग करनी चाहिए। और जब बात आती है तिल की, कहते भाई तिल का तेल तो लगाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल कमलेश, आपने सही कहा, क्योंकि आपका इशारा हो गया है, क्योंकि आज हम मित्रों बात करने वाले हैं तिल की खेती के विषय में। और भाई सीधी बात है कि अब जब जहां जलवायु परिवर्तन की ओर पूरा का पूरा विश्व बढ़ रहा है, हमारे देश के वैज्ञानिक बेटे बेटियां लगे हुए हैं अनुसंधान करने में, हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बात हमारे किसान भाई बहनों तक जाए, ऐसी फसल हमारे किसान भाई उगाएं कि जहां पानी भी कम लगे, जो सूखा से भी लड़ सके, जिसमें पोषक तत्व भी हों, उत्पादन की दृष्टि से अच्छे हो, लागत कम से कम हो। तो ऐसे में जब तिलहन की बात आती है तो हम बात करते हैं तिल की, तो ये विशेष हो जाता है, क्योंकि जैसा कमलेश ने इशारा कर ही दिया है कि हम बात करेंगे उत्तर भारत में तिल की खेती, पोषण लाभ।

0: तिल जो हमारा जितने भी खाद्य तेल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान तिल का है, तो तिल को अगर आप सबको पता हो तो उसको क्वीन ऑफ ऑयल कहते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तिल को रानी, तेलों की रानी कहा जाता है। तो इसका मतलब ही उससे समझ में आता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए? क्योंकि तिल जो है उसका जो तेल है उसमें अमीनो एसिड्स जो हैं बहुत होते हैं, मिनरल्स हैं, उसमें प्रोटीन हाई होता है, ऑयल कंटेंट उसमें हाई है, तो अमीनो एसिड्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं। न्यूट्रिशियस ऑयल जब हम बात करते हैं तो तिल की बात करते हैं
2: जी।
0: और हमारे भारत में तो इसको तिल को देसी घी के बराबर की मान्यता दी गई है, तो इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको, इसकी खेती अगर हम करते हैं और इसका उत्पादन बढ़ाते हैं तो ये हमें अच्छे भाव में हमारे सभी लोगों को ये प्राप्त होगा
2: जी, यानी उससे हमें अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा।
1: बिल्कुल, ये बात रही कि तिल में कितना महत्व है, उसको उपभोक्ता की दृष्टि से देखा जाए, उसके पोषक तत्वों को देखा जाए, हमारे शरीर को पोषण करने के लिए। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे देश की नन्नी मुन्नी फुलवारी घर आंगन में खेल रही है वो ऐसे ही मजबूत हो, जैसे आपने कहा कि उसको देसी घी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि स्वस्थ भारत का निर्माण जब ही होगा जब हमारी थाली स्वस्थ होगी, हमारी रसोई स्वस्थ होगी। लेकिन बात आती है जब हम किसानों की दृष्टि से बात, जैसे आपने कहा कि अच्छे भाव में उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन किसानों की दृष्टि से वो किस प्रकार से लाभकारी है कि वो खेती जब करते हैं तो कहां देखा जाता है अधिक पानी की आवश्यकता किसी फसल को है। लेकिन अगर तिल के विषय में बात करें तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: तो किसानों के लिए की तरफ से अगर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहीं भी उग सकती है
1: जी, जी।
0: पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो पूरे सभी तरह के जलवायु में उगती है, लेके जम्मू कश्मीर से लेके पूरा नीचे हमारा कन्याकुमारी तक इसकी खेती की जा सकती है
1: जी।
0: हर तरह की जलवायु में, और सबसे अच्छा है कि जहाँ हमारे जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उसमें भी कर सकती है, और हाई टेम्परेचर और में भी अच्छे से उगा सकते हैं इसको
2: जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम रुक जाते कि हमारा टेम्परेचर तो ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खेत की तैयारी करेंगे मिट्टी की तरफ देखेंगे तो मिट्टी के भी पोषक तत्व क्या है, या मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो पैदावार है वो अच्छी आए।
0: तिल की खेती होती तो सारी जगह है, पूरा पूरे भारत में हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी खेती के लिए हम मिट्टी का जो चुनाव करें, अपने खेत का जो चुनाव करें वो इस तरह करें कि वहाँ जल भराव ना हो
2: जी,
0: और थोड़ी भुरभुरी हो। तो जल भराव होने से क्या होता है, उसमें जो जो गलन की समस्या, जड़ों में गलन की समस्या आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए सेंसिटिव है। तो हमारा खेत अच्छी ड्रेन, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जल नहीं भरना चाहिए, और मिट्टी थोड़ी दोमट से लेके बलुई मिट्टी तक सब में हो जाती है
1: जी। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो सभी किसान भाई बहन जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो तिल की पैदावार ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तिलहन के उत्पादन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात हो गई, तिल के महत्व की बात हुई, इसके लिए उचित समय है लगाने के लिए?
0: ये उचित समय तो अभी शुरू हो चुका है। तिल की खेती की अगर बुवाई हम करते हैं 15 जून से लेके 15 जुलाई तक, तो ये बहुत ही अच्छा समय है उसके अधिक उत्पादन के लिए। 15 जुलाई के बाद अगर करते हैं तो हमारा थोड़ा सा उसमें उत्पादन कम होता है, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई का जो विंडो है वो बहुत ही अच्छा विंडो है
2: जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बीच अमित, हमारे जो श्रोता हैं हमें लगातार जो है कॉल कर रहे हैं, सुनते हैं, उनके क्या प्रश्न है
1: जी। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात।
3: हेलो
1: जी, हाँ स्वागत है आपका कार्यक्रम उन्नत किसान में।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन साथी बोल रहे हैं और अपना प्रश्न पूछिए।
3: रामफल बोल रहा हूँ, खेगड़ा जिला बागपत।
1: जी रामफल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
3: मेरा सवाल ये है साहब, ये एक बीघे में कितना बीज पड़ेगा तिल का?
0: तिल का जो बीज रेट है उसका होता है कि 2.5 से 3 किलो पर हेक्टेयर का इसका होता है। तो एक एकड़ में अगर आप लगाते हैं तो 1 किलो के करीब इसका तिल का बीज जो है सफिशियंट है
1: जी।
3: और साहब ये जो तेल के जो डाल देते हैं ये शुद्ध मानी जाती है या अशुद्ध मानी जाती है?
0: घी के बराबर उसको मान्यता दे रहे हैं तो वो शुद्ध तेल ही है जी।
1: बिल्कुल, देखिए ये प्रश्न जब श्रोताओं के आते हैं तो कार्यक्रम कहीं ना कहीं और हम कोशिश करते हैं कि श्रोताओं तक बात पहुंचे, उनके प्रश्नों के उत्तर मिले, और डॉक्टर रश्मि यादव यहाँ उपस्थित हैं प्रश्नों का जवाब देने के लिए। बात चल रही थी कि किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव हो, और आपने बताया कि उचित समय चल रहा है, तो फिर अब हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे किसान भाई बहन यदि लगाना चाहते हैं, जो पहले से खेती करते आ रहे हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन जो पहली बार लगाने का विचार कर रहे हैं वो एक अनुभव लेना चाहते हैं, डॉक्टर रश्मि यादव यहाँ हैं, उस अनुभव की आपके साथ साझा करने

0: के लिए। तो बात रही लगाएं कैसे।
1: जी, तो इसमें सबसे पहले तो जगह जो शुरुआत में लगा रहे हैं उनको थोड़ा डर रहता है कि पता नहीं इससे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारी सॉइल में वो होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले उसे मेड़ों पे लगा के शुरुआत कर लें, कि अगर बाजरा की खेती कर रहे हैं, सौरगम की खेती कर रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, तो उसके जो मेड़ है उसमें लगा लें, या फिर तीन तीन रो मक्का की लगाएं, एक रो तिल की लगा लें, इस तरह से भी वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से वो अपने खेतों में इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद अगर पूरा मोनोक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
2: जी, यानी घबराए नहीं जी, लेकिन वही है कि जब पहला कदम आप उठाएंगे तो वो कदम तो कहीं ना कहीं जाएगा, और अच्छी शुरुआत करें तो अच्छा ही आपको उसका परिणाम मिलेगा।
1: जी
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात रही कि आपने सही कहा कि जब शुरुआत करते हैं, कमलेश ने भी, कि भाई कम से शुरुआत करें।

0: होगा, और कहा जाए जैसे हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो किस्मों को यदि देखा जाए तो किसान भाई कौन सी किस्मों को चुने, क्योंकि उन्हें अच्छा उत्पादन भी चाहिए, और कहाँ से बीज लें?
1: तो इसका बीज तो सभी जगह मिलता ही है, और इसमें जो वैरायटी है उतना किस्में जो हैं इसमें हैं, निर्मला है, शेखर है, ये हमारी उन्नत किस्में हैं। अगर TKG 24 है, RT 346 है जो राजस्थान की वैरायटी है, तो ये सूखे क्षेत्रों के लिए अच्छी वैरायटीज़ हैं। तो इनसे हमें अच्छा लगभग 500 से 800 किलो तक का उत्पादन हम पा सकते हैं एक हेक्टेयर में।
2: जी, तो डॉक्टर साहब कई बार ये भी होता है कि जो बहन भाई पहले से ही तिल की खेती कर रहे हैं और वही अगर तिल को बचा के रखते हैं कि भाई हमें बीज में यही तिल लेना है, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं या हर बार उनको बीज जो है वो नया ही लेना पड़ेगा?
1: नहीं, वो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि जो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे कौन से पौधे हमारे हेल्दी हैं। अच्छा हेल्दी पौधा है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी है, उसका जो तिल का जो कैप्सूल होता है वो अच्छा मोटा है, और जो उसमें बीज

0: सेलेक्ट करने पड़ेंगे कौन से पौधे हमारे हेल्दी हैं, अच्छा हेल्दी पौधा है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी है, उसका जो तिल का जो कैप्सूल होता है वो अच्छा मोटा है, और जो उसमें बीज है उसके भी छटनी करके उसमें जो मोटा मोटा बीज है वो हम छांट के रख लें, कोई बीमारी ना हो, उस बीज को हम यूज कर सकते हैं।
1: तो उसका भी फिर बीज उपचार तो हमें करना ही होगा।
0: हाँ जी, तो बीज उपचार उसमें करना होगा, क्योंकि इसमें तिल में जो एक रूट रॉट आता है, ड्राई रूट रॉट आता है, वो बीज से ही होता है तो, और सॉइल से होता है, सॉइल बॉर्न और बीज की बीमारियों के लिए हमें सीड थायराम से या कार्बेंडाजिम से हम उसका बीज उपचार कर सकते हैं।
1: जी जी। और इस बीच में एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है। अमित
2: जी बिल्कुल, हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम उन्नत किसान में।
3: नमस्कार साहब
2: जी। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
3: मेरा नाम हरिदत्त त्यागी है।
2: जी त्यागी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
3: गाजियाबाद मोतीगंज से बोल रहा हूँ।
2: अरे जी जी, पूछिए।
3: मैं ये पूछना चाह रहा सर
2: जी,
3: एक तिल दो तरह के होते हैं, काला और सफेद।
2: जी
0: जी जी,
3: इनमें कौन सी क्वालिटी सही है?
0: दोनों क्वालिटी अच्छी हैं। तिल का जो तेल है वो वाइट वाला जो होता है, सफ़ेद रंग का तेल होता है, उसमें तेल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, काले वाले में कम होता है। लेकिन जो हमारी कॉन्फेक्शनरी है, जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं, तो दोनों तरह का करते हैं। और तिल का जो काला वाला है वो हमारा वैसे भी पूजा में भी यूज़ होता है, लेकिन जो सफ़ेद तिल है उसमें तिल का परसेंटेज ज़्यादा होता है।
1: जी, तो इनके प्रश्न का उत्तर इनको तुरंत ही मिल गया जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा।
2: कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि भाई तिलहन की फसल है, तेल का उत्पादन अधिक हो, तो जैसे भी बताया डॉक्टर रेशम यादव ने कि भाई जो सफ़ेद तिल है उसमें तेल की मात्रा कहीं ना कहीं अधिक होती है। तो किस्में का चुनाव करने के बाद में जब हमारे किसान भाई बहन तैयारी करते हैं, तो आपने बताया इसको लगाया जा सकता है कि हम किस प्रकार लगा सकते हैं, आरम्भ कैसे करें, लेकिन जैसे मौसम चल रहा है, जब बारिश कहीं ना कहीं एक बार हम कह सकते हैं कि जल जीवनदायिनी है, लेकिन वहीं कृषि में जहाँ जीवनदायिनी है वहीं खरपतवार भी लेकर के आती है, तो ऐसे में हम खरपतवार नियंत्रण के लिए अपनी फसल में क्या कर सकते हैं?
0: तिल की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण जो है, 40 दिन तक अगर हमने अपने खेत को बचा लिया, अपने उस फसल को बचा लिया खरपतवार से, तो हमारे तिल की खेती में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि फिर वो बड़ा हो जाता है, वो मिट्टी को ढक लेता है और सारे खरपतवार मर जाते हैं। तो इसके लिए है कि हम प्री इमरजेंस जो भी खरपतवार नियंत्रक है उसको डालें, जैसे एलाक्लोर हो गया या पेंडामिथेलिन हो गया, उसका उपयोग करें प्री इमरजेंस बुवाई के एक दिन बाद हम उसका छिड़काव कर दें, और एक हम मैनुअल बीडिंग करते हैं हाथ से निराई गुड़ाई कर दें 20 दिन के भीतर।
1: जी
0: ठीक है, तो 30 से 40 दिन के बीच में अगर हमने इसका नियंत्रण कर लिया, तो उसके बाद हमें खरपतवार नियंत्रण की जरूरत नहीं है, क्रॉप अपने आप डेवलप हो जाती है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए। और डॉक्टर साहब, हमने खरपतवार को तो निकाल दिया, लेकिन कहते हैं कि भाई हमें और अच्छी पैदावार चाहिए, अच्छा मुनाफा चाहिए, तो उसमें खाद या उर्वरक भी हम डालेंगे जिससे कि उसको जो पोषण तत्व हैं वो सब मिल जाए, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: तो तिल की खेती के लिए जो हमारा जो रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से है, और उसमें फास्फोरस लगभग 30 किलो पर हेक्टेयर और पोटास भी 30 किलो पर हेक्टेयर, जिसमें जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, हम दो बार में दे सकते हैं, एक तो हम बेसल दे दें जब जुताई कर रहे हैं तब लगा दें पोटास और उसके साथ सल्फर के साथ, और उसके बाद एक जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो हम जब फूल निकलता है उस समय जरूरी है, तो एक बेसल डोज और एक फ्लावरिंग के टाइम पे दो बार हम अगर यूरिया की करते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आजकल हम ये भी सुन रहे हैं कि जो जैविक खादें होती हैं उनका उपयोग अधिक से अधिक करो, जो गोबर है उसका उपयोग अधिक से अधिक करो, तो क्या इसमें भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ, तो जब हम बेसल डोज दे रहे हैं ना एनपीके की, उसी के साथ में हम लगभग 10 टन के करीब एफवाईएम हम अपने खेत में मिला दें, और उसके बाद एजोटोबैक्टर और कुछ भी बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हम यूज़ करें, तो हमारे को नाइट्रोजन की प्राप्ति भी हमारे पौधे को होती रहेगी, और हमारा ऑर्गेनिक ही करना है तो हम बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करें।
1: जी, यानी हम किसानों के पास जो है दोनों प्रकार के ऑप्शन मौजूद हैं और हम दोनों का ही उपयोग कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,

0: फाइलोडी जो मेन उसमें डिजीज है, तो सबसे पहले तो जहां भी आपको गुच्छा बनता हुआ दिखाई दे पत्तियों का, ग्रोथ आगे रुक गई है, तो उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर दें, तो ये इसका प्रमुख उपयोग है। और दूसरा उसमें है जो हम एमिडा क्लोरोफॉस जो है उसको, उसका उपयोग करें, जो 0.3 ml पर लीटर के पानी में घोल के उसको उसमें स्प्रे करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस विषय पर लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथी हैं, जुड़ना चाहते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ पूछना चाहते हैं
2: और क्या प्रश्न है उनके मन में।
1: हेलो
3: जी,
1: स्वागत है आपका उन्नत किसान में, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
3: मेरा नाम राजीव है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सफेद वाले तिल की खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये पूछना है मुझे।
1: एक बार पुनः प्रश्न दोहराएंगे।
2: कह रहे कि हमारे यहाँ तिल की,
3: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे साइड में सफेद वाली तिल की खेती हो सकती है या नहीं हो सकती।
0: हाँ जी, हाँ जी, हो सकती है, बस उधर ध्यान रखें कि वो खेत में पानी का भराव ना हो, जो आपके धान धान वाले खेत हैं उसमें ना हो, थोड़ा ऊपर ऊंचाई वाले जो खेत हैं उसमें आप उसकी खेती कर सकते हैं।
2: देखा, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया और हमने श्रोताओं को बताना शुरू किया कि आज किस विषय पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और दोबारा एक बार मैं उनको याद दिला देती हूँ, हमारा आज का विषय है उत्तर भारत में तिल की खेती, पोषण, लाभ और अवसर। और हमारे विशेषज्ञ जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और जो श्रोता उनसे प्रश्न कर रहे हैं उनके भी उनको तुरंत उत्तर मिल रहे हैं, वो है डॉक्टर रश्मि यादव, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान NBPGR नई दिल्ली से।
1: बिल्कुल, और बात चल रही थी रोग और कीट के ऊपर। जैसे अभी बताया आपने कि भाई जो पुष्प हैं वो खराब हो जाते हैं, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है, इसमें और इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि और कौन कौन से रोग या कीट आते हैं
0: उसमें? दो कीट महत्वपूर्ण हैं, एक तो लीफ रोलर है, तो अगर खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि उसकी पत्तियां जो रोल हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें लीफ रोलर का प्रकोप हो चुका है। और दूसरा उसमें ग्रास हॉपर आते हैं, और एक उसमें आता है कैप्सूल बोरर आता है। तो लीफ रोलर और कैप्सूल बोरर ये महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कीट हैं जो उस खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जहां भी लीफ रोलर ये पत्तियां का मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई दें, गोल गोल हो रखी हैं, वो सबको तोड़ के हमें मिट्टी में दबा के उसको नष्ट करना है, पहली चीज। दूसरा चीज, उसमें स्प्रे कर सकते हैं क्लोरोपाइरिफॉस का 2.5 ml 1 liter पानी में घोल के उसको फिर उसका छिड़काव करें, उससे इसका कंट्रोल हो सकता है
2: जी। और इसी बीच एक श्रोता हमारे और जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या प्रश्न है।
1: जी स्वागत है आपका उन्नत किसान में, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
4: जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम शशि भूषण है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी भूषण जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
4: कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि तिल का इस्तेमाल लोग सर्दियों में ज्यादा करते हैं पोषण के लिए, कैसे गर्मी में भी खा सकते हैं, उतना ही पौष्टिकता देगी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तिल की, तो हम घी को हम पूरा सीजन खाते हैं, तो इसको भी हम खा सकते हैं।
2: क्योंकि डॉक्टर साहब दिमाग में यही रहता है कि हम सबसे ज्यादा तिल से बनी हुई जो चीजें होती हैं वो सर्दियों में ही प्रयोग करते हैं, और गर्मियों में जो है वो कम से कम उपयोग करते हैं, तो सभी के मन में ये रहता है कि इसकी जो तासीर है वो कैसी होती है, गर्म है तो इसलिए इसको हमें गर्मी में खाना चाहिए।
0: हम गर्मी जाड़ों में इसलिए करते हैं क्योंकि जाड़ों में क्या होता है, हमारा शरीर थोड़ा सा गर्मी चाहता है, तो इसका मतलब हमें प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है। तो तिल का जो बीज है उसमें तेल तो होता ही है, 50% तेल है, और उसमें 27% तक उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन रिच है, तो हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए जाड़ों में। हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा रिकवरी फास्ट होगी, इसलिए जाड़ों में उसको ज़्यादा खाते हैं।
2: तो हमें भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और जो हमारे श्रोता है उनको भी इसका उत्तर मिल गया। डॉक्टर साहब जब अभी आप कह रहे थे कि 40 दिन तक अगर हमारी फसल ठीक रहती है तो बिल्कुल ठीक है, तो जब कीट आते हैं वो कितने दिनों में उस फसल पर आ सकते हैं?
0: कीट जनरली फूल जब खिलना शुरू होता है उसी समय, क्योंकि अट्रैक्ट करता है फूल कीड़ों को, लीफ हॉफ को अट्रैक्ट करता है, उस समय पे आते हैं, तो उसी समय हम जब खेतों में राउंड लेते रहे, जहां भी हमें लीफ रोलर दिखे, पत्तियां मुड़ी हुई दिखे, सिकड़ी हुई दिखे, या जो हमारा जो रोग आता है फाइलोडी, वो भी कीटों की वजह से ही आता है, जो एसिड्स हैं जेसिड्स हैं उसकी वजह से, तो उसके कंट्रोल के लिए एक तो हमने स्प्रे किया, दूसरा हम अपने खेत में कीट वो ट्रैप लगा सकते हैं, येलो ट्रैप लगा दें, जिससे कि जो ये छोटे छोटे कीड़े हैं वो ट्रैप में फंस जाएंगे और हमारी ये बीमारियों को नहीं फैलाएंगे और हमारे नियंत्रण होगा।
2: और डॉक्टर साहब ये तो कि अगर हमने खाली तिल की खेती की है, आपने भी बीच में बताया कि जो पहली बार कर रहे हैं तो उसके पर मेट के ऊपर कर लें भाई, उसके दो लाइनें उसकी और एक लाइन तिल की कर लें, तो उसमें भी सेम ही रहेगा या उसका कुछ अलग प्रोसीजर रहेगा?
0: सेम सेम
1: बिल्कुल। बारिश को देखते हुए बार बार प्रश्न भी का जवाब भी गया, किसान भाइयों ने पूछा और आपने भी कहा कि भाई हमें खेत का चुनाव ऐसे करना है, फिर भी विशेषतः हमें सिंचाई प्रबंधन पर क्या ध्यान देना चाहिए?
0: तिल की खेती तो सूखे के लिए ही है, उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए,

0: बस फूल जब आता है उस समय पर हम एक सिंचाई कर दें, क्योंकि फूल आने समय फ्लावर ड्रॉप ना हो, ज़्यादा भी पानी दे देंगे तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, तो कम पानी देके उसकी वो करें, एक फूल के समय दे दें। और अगर ज़्यादा लगता है कि आपका खेत ज़्यादा सूखा हो रहा है, तो जब हमारा जो कैप्सूल बन रहे हैं उस समय पर एक सिंचाई दे सकते हैं। तो ये तो ड्राउट मैं अच्छे से उगती है, सूखे क्षेत्रों में भी अच्छे से होती है, तो इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है
1: जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात, और हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि इसमें जो है पानी कम से कम लगता है, और जहाँ पर पानी कम रहता है तो वहाँ पर भी तिल की खेती होती है। और डॉक्टर साहब, जब हम बार बार तिल की खेती की बात करते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं कि इसके फ्लावर्स ऐसे हों, उसके बाद हमें ऐसे करना चाहिए, तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे मन में भी आते हैं कि हमने कीट प्रबंधक भी उसका कर दिया है, तो कितने समय में हमारी जो फसल है वो

0: पककर तैयार हो जाएगी?
1: ये लगभग 90 से 120 दिन की फसल है, वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है, तो 90 से 120 दिन में ये पक जाती है। पकने की पहचान क्या है, जैसे नीचे के पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाएं और वो गिरने शुरू हो जाएं और जो हमारे कैप्सूल बने हैं वो हल्के पीले रंग के हो जाएं, तो उसी समय उसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि इसमें जो कैप्सूल हैं वो फट जाते हैं और जो बीज है वो खेत में ही झड़ जाता है, तो ये समस्या उसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो हम पूरा पकने का, काला होने का उसका इंतज़ार ना करें, जैसे ही पीले हमारे कैप्सूल नीचे के शुरू हों उसी समय हम उसको हार्वेस्ट करके 2-3 दिन के लिए हम क्या करें, उसको खेत में ही डाल दें सूखने के लिए। उसके बाद

0: हम जैसे तिल की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केट क्या हो, किस प्रकार से जाए, क्या कुछ करना चाहिए?
1: हाँ, तो जो हम जब भी चुनाव करते हैं, हम कौन सी फसल अपने खेत में लगाएंगे, तो उससे सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कहाँ है, आसपास क्या मार्केट है। अगर वहाँ पे कोई कन्फेक्शनरी है, ऑयल का प्लांट है, इसका ऑयल तो कोल्ड प्रेस ऑयल भी इसका हम अपना भी लगा सकते हैं यूनिट इसकी, और जहाँ पे जो ब्रेड बिस्किट्स कुकीज़ बन रही हैं वो फैक्ट्रीज अगर हैं तो वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जिस एरिया में ये सब ज़्यादा है वहाँ पे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अदरवाइज तो सभी लोग खाते हैं, और कोल्ड प्रेस छोटी छोटी यूनिट्स तो हर किसान अपने उसमें लगा के खुद भी उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है और अधिक कॉस्टली उसमें बेच सकता है तेल को।
2: जी, तो और जब हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि इसकी जब हम कटाई करें तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो कटाई के बाद जो है इसको खेती में ही रहना है या कितने दिन के बाद जो है अपने घर पर लेकर जाना है, ये भी एक प्रश्न आता है। और जहाँ पर हम इसको स्टोर करें तो उस जगह का जब हम चुनाव करें तो किन किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें?
1: हाँ, तो उसमें वही है, जैसे हमने सबसे पहले जब काटा तो हल्के पीले कैप्सूल में तो काट लिया, तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो वो मॉइस्चर उड़ाने हमें 3 दिन खेत में रखना है। उसके बाद झड़ाई करके 3-4% सनड्राई परसेंट का मॉइस्चर होना चाहिए और उसको हम उसमें स्टोर कर सकते हैं।
2: जी, और जो स्टोर की जगह हो वो कैसी होनी चाहिए?
1: वो तो
2: नमी ना हो
1: 5% का उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो सीड में, तो वो हम साल भर उसको रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि दलहन में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पोषण में आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रोटीन में आगे बढ़ रहे हैं, पोषण मिशन चलाया हुआ है, दालों की ओर पूरी तरह सरकार ध्यान दे रही है, तो क्या हम तिलहन की ओर जब देखते हैं तो इसमें क्या कुछ हम सोचें कि हमारे प्रोफेसर्स हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारे जितने भी आपके पूसा संस्थान हैं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, क्या तिल की खेती के विषय में हमारे किसान भाई बहनों के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था हो कि जो जाने की कैसे हो, या कोई नई बात बताई जाए कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं?
1: इसके लिए सभी केवी के इसमें जाके उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे करना है, कैसे उसका हार्वेस्टिंग है, महत्वपूर्ण है कि हार्वेस्टिंग उसकी कैसी है और उसकी खेती कैसे करें, तो समय समय पर हमारे केवी के जो हैं वो उसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं अलग अलग फसलों के बारे में, तो वहां जाकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, अब जब बात आती है कि आपने कहा कि ये समय उन्नत है उसको लगाने के लिए,
1: जी
0: हम वहीं से कि जब हमारे साथी लगाना चाह रहे हैं ये उन्नत समय है उसको लगाने के लिए, तो इसमें किस प्रकार से ऐसे विशेष ध्यान दें, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है और हमें जाना है अंत तक कि अच्छा उत्पादन लें। हम बात करते हैं अच्छे उत्पादन की, तो अच्छा उत्पादन शुरू तो बिजाई से ही होता है, तो क्या कुछ किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बिजाई इस प्रकार से हो कि हम उत्पादन तक अच्छा उत्पादन तक पहुँच जाएं?
1: इसमें हम ब्रॉडकास्टिंग के बजाय हम

0: तो ज़्यादा मॉइस्चर होने से पौधे गिर जाते हैं। तो हम अगर लाइन में बोएं और उसमें 20 दिन 25 दिन के बाद उसमें मिट्टी चढ़ा दें तो हमारे बहुत अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा उससे।
1: जी, और जब डॉक्टर साहब हम किस्मों की जब हम बात कर रहे थे, तो जब किस्मों का चुनाव करें तो क्या कुछ ऐसी किस्में हैं कि मौसम के हिसाब से, कि मान लीजिए कि उसमें पानी ज़्यादा गया या कि वहाँ का पानी निकल नहीं पाया, और वो तिल की जो किस्म है वो ऐसी है कि वो अपने आप को उस जगह पर स्थिर रख पाएगी और हमें अच्छा मुनाफा दे पाएगी, या ऐसी उन्नत किस्में भी हैं?
0: जी जी, जो RT46 मैंने बताया वो सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए अच्छी किस्म है। RTKG 306 है, PKD है, ये जो भी है, और TMV 7 है, और हमारी जो पंजाब से एक वैरायटी है PB Til 2, ये जो है ये बहुत अच्छी हमारी उन्नत किस्में हैं जो इस सारी प्रॉब्लम से हमें बचाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो पंजाब की वैरायटी है वो पंजाब में ही लगेगी, या हो सकता है कि हरियाणा वाला कहे कि अगर इससे मुझे अच्छा मुनाफा मिलता है तो
0: लगा सकते हैं यहाँ पर लगा? हम यहाँ दिल्ली में भी लगा सकते हैं उसको, हम UP में भी लगा सकते हैं
1: जी,
0: वो है सभी जगह के लिए।
2: बिल्कुल, तो उत्तर भारत में तिल की खेती पोषण और लाभ, पोषण पे बात हुई, लाभ पे बात हुई, लेकिन अब जो हमारे किसान भाई बहन मानो शुरू से खेती करते आ रहे हैं कि भाई हम धान की खेती कर रहे हैं और इस बार उनका मन है कि हम धान ना लगा करके
1: तिल लगाएं,
2: तो ऐसे में उनके लिए जो अवसर ये मिल रहा है तो वो क्या कुछ उन्हें लाभ मिलेगा तिल की खेती से? और यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसे एक तो जैसे पानी की बात रहती है, तो अगर इसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या कुछ हम किसान भाइयों को एक ऐसी सलाह दे सकते हैं कि हाँ आओ तिल लगाते हैं?
0: तिल को लो इनपुट क्रॉप कहा गया है, तो उसमें ना पानी ज्यादा चाहिए, दो पानी चाहिए, उसमें फर्टिलाइजर भी ज्यादा नहीं चाहिए, जब लगभग जितना धान में लगाते हैं उसका आधा चाहिए, उसमें बीमारियां भी कम आती हैं, तो धान में और लेबर कॉस्ट ज्यादा है, इसमें एक बार लगा दिया आपने उसके बाद हार्वेस्टिंग कर दिए, तो लेबर कॉस्ट इसमें कम है, इनपुट्स कम है, फर्टिलाइजर की जरूरत कम है, पानी कम लगता है और निराई गुड़ाई भी कम है, तो फिर ये हमारा फसल उत्पादन के लिए धान से
2: अच्छा
0: कम लागत में ज्यादा हमें पैदावार मिलती है
1: जी, यानी कम समय में हमें इससे अधिक मुनाफा मिलेगा, और हर किसान भाई यही चाहेगा कि हमें जो है कम लागत इसमें आती है, कम इसमें समय लगेगा, कम इसमें सिंचाई है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि संक्षिप्त में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो भी किसान इस फसल को लगाए तो किन किन बातों का ध्यान रखे संक्षेप में?
0: संक्षेप में हमारा एक तो हमारा खेत का चुनाव सही हो, उसमें भराव ना हो पानी का, उसमें बीज हम जो हैं उन्नत किस्म के लगाएं, और उसमें हमारा जो समय समय पर हम उसके कीट नियंत्रण का ध्यान
1: रखिए, जो किस्में हैं उनका अच्छा चुनाव करेंगे तो अच्छा ही लगेगा।
2: बिल्कुल, निश्चित रूप से डॉक्टर रश्मि यादव, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि उत्तर भारत में तिल की खेती पोषण लाभ और अवसर, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: और कमलेश, हमारे कार्यक्रम उन्नत किसान को सुनने वाले सभी किसान भाइयों से भी अनुमति लेने का समय हो चुका है, क्योंकि भाई हमारा जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं किसानों को प्रभावित करता है, फोन करते हैं और कोशिश रहती है कि हमारी मुलाकात उनसे जल्दी जल्दी होती रहे, और कोशिश रहेगी जो समसामयिक विषय है उन पर हम उनसे बात करते रहें ताकि वो अच्छा उत्पादन लेते रहें, और जो कहते हैं ना कि कृषि देश की रीढ़ है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की, तो इसको मजबूत रखना है और विश्व की अग्रणी पंक्ति में कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन में भारत शामिल होगा, यही उन्नत किसान कार्यक्रम की ओर से उन्नत सभी किसान भाई बहनों को एक आज का संदेश है। अब अनुमति दीजिएगा, कार्यक्रम उन्नत किसान सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों

0: प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया तथा महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णता साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne today, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both Prime Ministers delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the summit. They hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security, and technological innovation. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalised an annual defence ministers' dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. Describing India and Australia as vibrant democracies and important ocean powers, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
6: Vice President C.P.

नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू हो चुका है आपके आपके आपके वर्मांशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। हाँ जी, क्या हाल है आपके? आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक। और जब गर्मी बहुत होती है तो हम कैसे कहते हैं ना, मानसून कमसून कमसून। और जब मानसून आ जाता है, जैसे कि आज आया है, तो मेरा तो दिल गाजन गाजन हर रहा है। लेकिन मानसून के आने से ना पता लग जाता है कि मानसून आ गया। पूछो कैसे, इस स्टूडियो का एसी बंद है यार, क्या करें, एसी की तेजी। काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दें कि मानसून में कुछ लोगों को सूना सूना भी लगता है। हाँ जी, विरह रस। कालिदास ने जितने भी काव्य लिखे उसमें उसने बहुत ज़्यादा ये लिखा कि जो हीरोइन, जो नायिका

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मन भावन और अटेंडेंस लगाने का टाइम आ गया। ओहो, अटेंडेंस से पहले मुझे कहा गया है कि खत एक पैगाम मैं पढ़ दूं। धर्मेंद्र जी लिखते हैं। कौन धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा, इन सब ने हमें लिखा है भोपालगढ़ राजस्थान से। ये लिखते हैं, आदरणीय मैडम रूमी मल्लिका जी नमस्कार। मल्लिका आलिया हूँ मैं क्या? आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाया। मेरा नाम रूमी मलिक है, आप आ गए, हमें बहुत आनंद आया। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप पेश करते हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवाते हैं। हम भी आपको मिस कर रहे हैं। मैसेज मेहरबानी करके पूरा पढ़िएगा धर्मेंद्र जी, देख लो मैंने पूरा संदेश आपका पढ़ डाला है ना। और जो अच्छे गानों की बात कर रहे हो तो आपकी और आपके श्रोताओं की बदौलत है ना। श्रोता हमारे आपके दोस्त। आओ जी अटेंडेंस लगाते हैं। तुलसी मस्किन जी ने कंप्लेंट करी, हमारी शिकायत है, हमारी पिछली बार अटेंडेंस नहीं लगी थी, सॉरी छूट गया होगा। अहमद फूल वाले दिग्दर्शन कौर, मोहम्मद कंवर, सीताराम कागरा, आफ्ताब अंसारी, गुरमीत सिंह, जाकिर लुबना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम, लुबना अंसारी, सीताराम कागरा जी, मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, अल्तमाश खत्री आ गए, अल्तमाश खत्री आज, संजय ढिंगिया, पुंजा जी नवकर, अजित भावसार जी, हाँ, ताज मोहम्मद, उषा चंदन, असलम मंसूरी, दिग्दर्शन कौर जी कविता जी के साथ में है, भाई मूसा शेख, ठीक है, गिरीश बाम, मसरूर हसन, रुको, बोधराज खोरवाल जी, भाई मूसा शेख, मुकेश बाटा, अगले पिच पे चलो, ओके, मेरे ख्याल से सारे नाम हो गए ना, क्योंकि रिपीट है मेरे ख्याल से ये सारे के। संजय डिंगिया जी, संजय जी आपका नाम लिया था, नहीं लिया ना शायद, राजकुमार रूडी जी, अजीत कुमार नभांकर, मोहम्मद यूनुस खत्री, हरजिंदर सिंह भाटिया जी, ठीक है, अस्मा खातून, सतीश अनेजा दी जी, अस्मा क्या लिख रही हैं, सलाम जी। दिल साफ रखना अच्छा है, बस हर किसी के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, दिल के एक कोने में कबाड़ रखेंगे क्या? अरे नहीं, दिल साफ रखो ठीक है, और क्या, आएगा तो वेलकम, जाएगा तो भीड़ कम, अपने को मतलब नहीं, खुश रहने का। फैज़ अहमद खत्री, याकूब कुरैशी, हो गए सारे नाम, गव्या मल्होत्रा, देखो मैंने कितने सारे नाम ले लिए हैं। अब अजीत भावसा जी कह रहे हैं कि सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत सुनेंगे, कौन सा सुनेंगे, मौसम मस्ताना रस्ता अनजाना, इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ बजेगा बारिश का गाना, डोंट वरी आपके जितने भी गाने हैं सब बजेंगे, ठीक है, अभी सुनते हैं। अजीत जी खुश हो।

FM Gold. मेरा तो फेवरेट गीत जिंगल स्निपेट जो भी कहो यही FM Gold. ओके अगर हाँ भाई जॉन डिकास्ट्रो साहब, जॉन डिकास्ट्रो जनकपुरी, सहारनपुर में भी एक जनकपुरी है, वहाँ से मुझे एक मैसेज भेजा, मेल भेजा, आपका भी अटेंडेंस लग चुका है और ये रोहित बेलदार अब हमारे साथ में है. रोहित जी आप कहाँ से लिख रहे हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से. फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, असमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार और ये लिख रहे हैं नमस्कार, ब्रैक में लिख रहे हैं मन भावन. मैं अपने नाम को समझ लूं मन भावन.

श्री कसम और उसके बाद खाना नहीं लिखा है। ओके कोई बात नहीं, हम बजा देंगे। आपको पता है हम बात करते हैं हमेशा ऋतुचर्या की आयुर्वेद में कि क्या क्या खाना है बारिश में, लेकिन पान खाना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है खाने के बाद। और पान में जितनी भी चीज़ें डलती हैं आयुर्वेद कहता है जिसमें चूना है, कत्था है, ये सारी के सारी चीज़ें श्वास रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए। किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो ये पूरा कपूर श्वास की नली आपकी जो है साफ़ करती है। और वो पत्ता भी अपने आप में जो है बहुत पौष्टिक होता है। ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि तीसरी कसम का ये गीत है जिसमें ये कह रही हैं पान खाने को।

गाना सुने लिसनर हमारो भारत भूषण जी लिख रहे हैं, रूबी मलिक जी गुड आफ्टरनून, आई एम लिसनिंग टू यू सो प्लीज मार्क मी प्रेजेंट आई हैव। और इन्होंने मुझे ये वाइट फील बेंगलोर से, बेंगलुरु से हमको लिख रहे हैं। भारत भूषण जी के साथ अंजू, दिव्येंदु, संस्कृति और पौरुष भी हैं। देखो जी, पिछली बार बड़े नाराज हो गए थे, अरे गलती से छूट जाता है, मेरी मजाल है आपके मैसेजेस, आपके पैगाम मिस करूं, बताओ। आज तो मैं आपके लिए गीत भी बजा रही हूँ, क्या याद रखोगे? रखना ना याद, लेकिन प्लीज, है ना, 100 साल पहले, ये बड़ा अच्छा गीत है ना, आइए सुनते हैं। 100 साल बाद तक भी गीत, क्या गीत बनाया है, देखो कमाल की बात है ना, है ना। तो देखने के लिए कौन आ रहा है अगले 100 साल तक, लेकिन देखो गीत कमाल का है।

एफएम गोल्ड पर जो साथी अभी भी जुड़े हैं, बता दें कि मन भावन कार्यक्रम चल रहा है, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है ये। और स्वरूप आनंद सरजल, इन्होंने लिखा है, मेरा नाम स्वरूप आनंद सरजाल है, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, और मेरे फैमिलीज के लोग सभी और मेरे दोस्त लोग सभी हैं। तो स्वरूप आनंद सरजल जी के फैमिलीज के लोग सभी और दोस्त लोग सभी को भी रूमी मलिक का प्यार भरा हेलो सलाम नमस्कार। धरती कहे पुकार के फिल्म का गीत है। हाँ जी, कौन सा भरा जी? हम तुम चोरी से, हाँ हाँ है मेरे पास, सुना दूँ? ये लो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के

0: जाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, बात हो रही है मन भावन में आपके मैसेजेस की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग बड़े जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, है ना, मुझे सब याद रहता है बहुत ज़्यादा, मेल नहीं पड़ी, ये नहीं हो रही, है ना। जब आपके संदेश आते हैं, मैं कितनी बार आप, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कह चुकी हूँ कि जब आपका मैं मेल खोलती हूँ तो उसमें कम से कम 15 बार आपका ईमेल आईडी लिखा होता है, उसके बाद मेल के नीचे लिखते हैं। फिर जब आपको लगता है कि आपका एक गीत जो है बज चुका है, किसी और लिस्टर ने, श्रोता ने वो उसकी फरमाइश कर दी है, फिर एक दूसरा मेल, मैं ईमानदारी से वो दूसरा मेल भी खोलती हूँ, है ना। उसमें फिर से आप क्या डिलीट नहीं कर सकते वो जो आपके सिर्फ ईमेल आईडीज लिखे हुए हैं? क्या मेरे पास एज एन आरजे इतना टाइम रहेगा कि मैं पहले वो नीचे पूरा स्क्रोल करूं, फिर देखूं आपकी क्या फरमाइश है? दोस्तों, ऐसा है, जब हम अपने कर्मों के तो वकील बन जाते हैं, है ना, आर्ग्यू करते हो ना, जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, जब हम अपने कर्मों के वकील बन जाते हैं और दूसरों के कर्मों के जज बन जाते हैं तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं मन भावन, आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन, चैतन्य, रचिता और आशीष कह रहे हैं कि लोफर फिल्म का गीत सुनना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बस मौसम को बेईमान रहने दीजिए, है ना, हम लोग ईमानदारी बरते रिश्तों में तो बहुत बेहतर है।

आकाशवाणी FM गोल्ड सुन रहे हैं आप प्यारी प्यारी बुआ जी को हम बच्चों का आदाब नमस्कार अल्तमाश खत्री लिख रहे हैं हमारे को अल्तमाश समीना मुदस्सिर फिरदोश जुम्मा नगर खंडवा से बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुआ जी भी आपको सलाम वापस भेजती हैं और आप ना थोड़े से और गाने भेजा करो है ना कई बार ऐसा होता है आप एक गीत बोलते हो मुझे बहुत मैं शर्मसार होती हूँ जब मुझे वो गीत नहीं मिलता ओहो चॉइस दिया करो। रिजवान रेहान हमारे साथ में है कहाँ से लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से जिला है अंबागढ़ चौकी। रिजवान के साथ आयशा सबीहा अनस और रेहान भी है। बोलिए रिजवान क्या खातिर की जाए ये सुनना चाहते हैं तेरी कसम फिल का गीत बहुत अच्छा गीत है। हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी फिर क्या था प्रीत ने हमको क्या था लगवा दी अरमानों की हथकड़ी। आओ ना गाना सुनते हैं।

आकाश रानी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मन भावन, और जैसे मेरी आवाज़ के साथ टिक टिक भी आपको सुनाई देती होगी, देखो लगातार ये हाथ जो हैं चलते हैं कि आपके पसंद का गाना हमको मिल जाए, और नहीं तो क्या। और आप में से कुछ लोग तो मुझे शोध का कार्यक्रम देते हो भाई, बिल्कुल शोध समझते हो, रिसर्च हैं, कौन सी फिल्म कौन सा गाना, इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है मैं आपको बता ही नहीं सकती ढूंढने के लिए। तो थोड़ा सा आप भी रिसर्च करके दिया करो ना, सारे शिकवे गिले हाय हाय बोल मेरी ढफली बोल बोल, आज़ाद देश के गुलाम, मैंने तो इस गीत में तो कभी इस फिल्म का नाम ही नहीं सुना। चलो आप कहते हो तो ठीक है सुन लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी फरमाइश की है और हम सुनते। असलम मंसूरी जी आप क्या कह रहे हैं, देख लें आपका भी संदेश। हाँ ये कह रहे हैं कि मैं भी सुन रहा हूँ कार्यक्रम फरुखाबाद से, और मेरे साथ वही मंसूरी भी हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अब रहना यहीं पर 6 बजे तक, ठीक है ना, गाते गुनगुनाते भी सुन के जाना, 5-10 पे आता है। मुकेश भट्टा जी बड़ी लेट आए हो आप, हैं नीलम और निहारिका भी साथ में हैं, देखो सारी अटेंडेंस आपकी आज पूरी हो रही है। आफ्ताब अंसारी हो गए जी, और आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा ना आप ऐसे मेल्स ना भेजें जिनमें बहुत फोटोग्राफ्स वगैरह हो, तो कई बार ना मेल खुलता नहीं है, है ना। और एक मेल तो बिल्कुल आईडी ही नहीं लिखा हुआ, वो जी मेल लिखा हुआ है सिर्फ, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं कह रही थी कि सीताराम कागरा जी आपका गीत, आपकी पसंद का गीत ढूंढूं मैं, एक सेकेंड देते हो मेरे को, आप हैं कहाँ पे था, हाँ एक मिनट रुको। देख लो आपके साथ डम डम टिका टिका मौसम भीगा भीगा अभी तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सतीश अनेजा जी सुन रहे हो ना आप, एंड तक सुना करो मेरे को। देखो रिमझिम गिरे सावन आपने फरमाइश की थी, बहुत लोगों ने की थी, पिछली बार भी मैं थक गई हूँ गीत बजा बजा के, सावन तो गिर ही रहा है। तो आओ सीताराम कागरा जी आपके साथ कौन कौन है, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, ठीक है जी। शुक्रिया जी इन्होंने पहले कह दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा गीत हमको दे दिया। आओ जी, सो दिस इज ये इस कार्यक्रम का मन भावन का आखिरी गीत रहेगा, मन भावन संपन्न होगा और फिर चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz, 5-10 पे गाते गुनगुनाते भी आता है, जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश की आकांक्षाओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और अधिक उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस समय एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी करते हैं वो हम दोनों देशों के लिए भी शुभ होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने वो शेर सुना होगा, आपको तो याद भी होगा

0: मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए और व्यापक युग में प्रवेश कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the 21st century India is working towards the goal of becoming a developed nation. Addressing a community event in Melbourne today, Mr. Modi said, "Today's India believes in aspiring higher and achieving more." Describing his current visit to Australia as a hat-trick in 12 years, he said it reflects the growing strength of India-Australia ties.
0: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: nsu.ac.in. The ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi, has invited eligible candidates to attend a walk-in interview for one project assistant under a Department of Biotechnology DBT-funded project on wheat titled Germplasm Characterization and Trait Discovery in Wheat Using Genomics Approaches and Its Integration for Improving Climate Resilience, Productivity and Nutritional Quality. The project is valid up to 28th February 2027. The selected candidates will receive 20,000 rupees plus 27% of HRA with experience-based increments as per project norms. The walk-in interview will be held on 20th July 2026 at Division of Genomics Resources, Room G206, ICAR-NBPGR Pusa Campus, New Delhi. The upper age limit is 50 years, with relaxations for reserved categories as per government rules. Rail coach factory Kapurthala has invited applications from eligible Indian citizens for recruitment against the sports quota for the year 2026-27. The recruitment includes one post in level 4-5 and 7 posts in level 2. The last date for submission of applications is 14th July 2026. Detailed eligibility criteria, sports disciplines and application procedure is available on the RCF website. For details, do look up www.rcf.indianrailways.gov.in under the Staff Corner Recruitment section. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आमंत्रित कर रहा है सांस्कृतिक प्रतिभा क्षेत्र से दो पदों को भरने के लिए आवेदन। एक पद सैक्सोफोन वादक का है और एक अन्य पद पश्चिमी शास्त्रीय पियानो वादक का है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के लिए सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के होने चाहिए। वेतनमान, योग्यता तथा अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in। अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक सी, कनिष्ठ अभियंता सी और पुस्तकालय सहायक सी। पदों के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, कनिष्ठ अभियंता के लिए 2 तथा पुस्तकालय सहायक के लिए 1। इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं इस वेबसाइट पर www.iuac.res.in/vacancies। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 2 रिक्तियां, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर 1 रिक्ति, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 3 रिक्तियां, जूनियर लैब असिस्टेंट 1 रिक्ति तथा इलेक्ट्रीशियन 1 रिक्ति। केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अतिरिक्त रजिस्ट्रार कुल पद 2, संयुक्त रजिस्ट्रार पद 5, उप रजिस्ट्रार 2 पद, सहायक रजिस्ट्रार 1 पद तथा वरिष्ठ सहकारी अधिकारी 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.cooperation.gov.in। भारतीय थल सेना आमंत्रित कर रही है अपने इन कोर्सों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। 68

0: अल्पसेवा कमीशन तकनीकी कोर्स महिला, 68वां अल्पसेवा कमीशन तकनीकी कोर्स पुरुष, अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्स महिला के लिए 8 जुलाई से 6 अगस्त के बीच और अल्पकालिक सेवा कमीशन तकनीकी कोर्स पुरुष के लिए 9 जुलाई से 7 अगस्त 2026 के बीच आवेदन किया जा सकता है। विस्तृत नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए देखिए भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in। प्रवर्तन निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रवर्तन अधिकारी, सहायक उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्टाफ कार चालक ग्रेड 2। पात्रता संबंधी शर्तों, योग्यता आदि के ब्यौरे के लिए देखिए प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट www.enforcementdirectorate.gov.in। इस वेबसाइट से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं अथवा देखिए 4 से 10 जुलाई 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी गोल्ड पर एक सुहानी शाम में स्वागत कर रहे हैं आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरें और वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
4: हेलो सर फिरोजी, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Sir Firozi. Well, listeners, the 2026 FIFA World Cup is currently in the quarter-final stage, where top 8 teams are fighting to reach the semi-finals. The tournament is entering its final stretch with the grand finale scheduled for July 19th. Now let's talk about 3 reasons why you should keep watching this World Cup. Firstly, you get to watch the absolute best players in the world battle it out. Legends like Lionel Messi and Kylian Mbappe are scoring amazing goals and racing for the top scorer award. Secondly, this year has been full of shocks. Heavyweight teams have been knocked out by the underdogs, making every match unpredictable and exciting to follow. And lastly, as the games get closer to the final trophy, the pressure builds. This means you will see intense matches, dramatic comebacks, and nail-biting penalty shootouts. So keep watching and enjoying the FIFA World Cup 2026. And we begin our program with the news headlines at this hour.
3: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई।
4: Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust.
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया।
4: Monsoon covers entire country, incessant rain affects normal life in the national capital region.
3: उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना।
4: एंड इंडियन कंटिंजेंट अनाउंस फॉर द पिकल वर्ल्ड कप 2026 टू बी हेल्ड इन वियतनाम। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India-Australia cultural relationship. Well, Sarfarozi, today we are traveling 14,000 kilometers across the Indian Ocean
3: जी.
4: to a friendship that's rewriting the map of

0: global partnerships. Well, I'm talking about Australia and India. And for decades, this relationship was summed up in three words: cricket, curry, and Commonwealth. Catchy, yes. But today, that old formula barely scratches the surface. So sit back and let's unpack a bond that's become one of the most dynamic cultural stories of our time. Prime Minister Modi and his counterpart Albanese addressed the high-profile India-Australia CEO Forum and Economic Roadmap Business Reception in Melbourne today. And addressing the business reception, Prime Minister Modi said, "The India-Australia partnership has entered a transformative high-tech era." He outlined a visionary roadmap to accelerate bilateral trade towards its monumental $100 billion target by 2030, emphasizing a structural transition to high-value, future-ready commerce.
1: और अभिषेक, साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और भरोसेमंद आधार के तौर पर एक साथ जुड़े हैं। श्री मोदी ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार के सहयोग से 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करने के लक्ष्य वाले भारत के नए ओपन प्राइवेट न्यूक्लियर सेक्टर का भी उल्लेख किया।
0: एंड सरफरोजी, असाइड ऑफ दिस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट कल्चर. Let us talk about the diaspora that changed a nation. Let's start with the people, because at the heart of the story is a migration wave like no other. The Indian-born community is now Australia's largest overseas-born population, having overtaken even the traditional British migrant community. Think about that for a moment. In a country famously built on Anglo-Celtic roots, it is now Indian voices, Indian festivals and Indian flavors reshaping the everyday rhythm of Australian life.
1: बिल्कुल अभिषेक, और ये बात सिडनी के हैरिस पार्क में बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देती है. एक ऐसा इलाका जहां भारतीय रेस्टोरेंट, दुकानें और स्ट्रीट फूड की खुशबू इतनी बसी हुई है कि स्थानीय काउंसिल ने इसे आधिकारिक तौर पर लिटिल इंडिया इलाका माना है. सोचिए, आप सिडनी की किसी सड़क पर चल रहे हैं और आपको पाई बेचने वाली बेकरी के बराबर में बने कैफे से भारतीय संगीत सुनाई देता है, और यही है आधुनिक ऑस्ट्रेलिया. और इस तरह का गहरा जुड़ाव अभिषेक अचानक नहीं बनता, बल्कि इसे धीरे धीरे बनाया और आगे बढ़ाया जाता है.
0: एब्सोल्युटली सर फिरोज, एंड दैट्स वेयर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस स्टेप इन. द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस प्लेज अ क्वाइट बट पावरफुल रोल, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिल्डर फॉर बिजनेस, एजुकेशन एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द टू नेशंस. एंड बैकिंग it up financially is the Maitri Grants program, Maitri fittingly meaning friendship in Sanskrit.
1: और इस पहल में आर्ट एग्जीबिशन और रिसर्च में सहयोग से लेकर कम्युनिटी फेस्टिवल तक बहुत कुछ शामिल है. ऐसी पहलों पर सिर्फ बोर्ड रूम में साइन नहीं किए जाते, बल्कि ये पहलें स्टेज पर परफॉर्म की जाती हैं, कैनवस पर पेंट की जाती हैं.
0: And speaking of stages, this is where the story gets truly beautiful. Picture this: a deep resonant hum of the Australian Aboriginal didgeridoo, an instrument that is echoed across the continent for tens of thousands of years, blending in real time with the intricate rhythmic heartbeat of the Indian tabla. And these aren't just performances, they're artistic conversations between two of the world's oldest living cultures.
1: इसके साथ ही राजनयिक यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मंचों पर होने वाले कथक नृत्य की प्रस्तुतियां भी सुंदर और भावुक करने वाली होती हैं. वहीं फर्स्ट नेशंस की पवित्र वस्तुएं और भारत की ऐतिहासिक धरोहरें भी, जो कभी अपनी जगह से दूर हो गई थी, अब वापस अपने घर लौट रही हैं. और ये इस बात का संकेत है कि दो देश जिन्हें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व है, वो इतिहास की अपनी ही चीजों को वापस पाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं.
0: Cricket, the timeless binding agent, still capable of stopping both nations in their tracks for a test match. But today there's an equally powerful connector, education. Indian students now make up roughly 17% of Australia's entire international student population, and that's not a statistic, that's tens of thousands of young minds filling lecture halls in Melbourne, Sydney and Adelaide, building friendships and futures that will shape the next 50 years of this relationship.
1: बिल्कुल अभिषेक, और इसलिए अपने श्रोताओं को बता दें कि अगली बार जब उन्हें उनसे कोई कहे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत क्रिकेट करी और सिर्फ कॉमनवेल्थ से जुड़े हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का रिश्ता अब थ्री सीज यानी क्रिकेट करी और कॉमनवेल्थ के पुराने दायरे को पार कर चुका है। आज दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदार बन चुके हैं। उन्हें हैरिस पार्क की चहल पहल वाली सड़कों के बारे में पता होना चाहिए, दोस्ती के हजारों छोटे छोटे कामों को फंड देने वाली मैत्री ग्रांट्स के बारे में पता होना चाहिए, एक ही मंच पर तालमेल बिठाते तबला वादकों और डीजे रुडू मास्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में भी जो एक ही क्लासरूम के जरिए आपसी जुड़ाव को बढ़ा रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सरफरोजी, एंड दिस इजंट जस्ट डिप्लोमेसी, इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग कल्चरल पार्टनरशिप एंड इट्स ओनली गेटिंग स्टार्टेड। फॉर मोर ऑन द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ड्राइविंग दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, डू चेक आउट द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन इंडियाज ऑफिशियल चैनल्स।
1: श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
0: द सरिंडा, एन इंडिस्पेंसेबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन त्रिपुरा'स ट्राइबल म्यूजिक ट्रेडिशन, हैज लॉन्ग बीन चेरिश्ड फॉर इट्स यूनिक साउंड एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सिमिलर इन अपीयरेंस एंड प्लेइंग स्टाइल टू द वायलिन, द इंस्ट्रूमेंट हैज रिसेंटली अट्रैक्टेड वाइडस्प्रेड अटेंशन अक्रॉस द स्टेट एंड द कंट्री फॉलोइंग इट्स रिकग्निशन विद अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑन अ GI टैग। And the achievement has sparked excitement among musicians, cultural enthusiasts, and tribal communities alike. Here is a report.

0: आज शेरी भोपाली की पुण्यतिथि है। भोपाल के सुप्रसिद्ध शायर ये रहे हैं। इनका नाम, असली नाम मोहम्मद असगर खान था। इनका जन्म हुआ 1914 में आगरा में, पर ये असल में भोपाल से ताल्लुक़ रखते थे। शेरी भोपाली ने शायरी में शेरी तखल्लुस उपयोग करना शुरू किया। ये मेल संदेलवी के शिष्य रहे और साथ ही ज़की वारसी का भी इन्होंने अपनी शायरी में अनुसरण किया। इन्होंने शायरी के हुनर को दिल्ली की आबोहवा की देन बताया था।
1: Yes, and Tom Hanks celebrates his birthday today. He's one of the most successful and beloved American actors and filmmakers in Hollywood history, widely celebrated for his everyman persona. He's one of only two actors to win the Academy Award for Best Actor in consecutive years, winning for Philadelphia 1993 and Forrest Gump 1994. And over his four-decade career, his movies have grossed billions worldwide. He has received prestigious honors, including the Presidential Medal of Freedom and the AFI Life Achievement Award.
0: आज ही पुण्यतिथि है सरदार अंजुम की। ये भारत के प्रख्यात शायर और लेखक थे। इन्हें भारत सरकार ने 2005 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इससे पहले 1991 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें भारत और विदेश दोनों में कई साहित्यिक समाजों, सांस्कृतिक मंचों और रचनात्मक नींव द्वारा सम्मानित किया गया है। साल 2000 में पूर्व प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय शांति फाउंडेशन की ओर से सरदार अंजुम को द मिलेनियम पीस अवार्ड प्रदान किया था। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने 23 सितंबर 2001 को सरदार अंजुम को साहित्य में उनके योगदान के लिए पंजाब रत्न पुरस्कार प्रदान किया था। सरदार अंजुम को उनके साहित्यिक कार्यों और गतिविधियों के लिए कुल मिलाकर 19 राज्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
1: Yes, and Jack White, born John Anthony Gillis, was born on this day in 1975, and he's an American musician, singer, songwriter, and producer. He's best known as a guitarist and frontman for the garage rock duo, the White Stripes. A prominent figure in modern rock, he has also formed the bands The Reconnoiter and The Dead Weather. His defining globally recognized signature song is Seven Nation Army, famed for his unmistakable bass line. Let's listen into it.

0: And we are also remembering Guru Dutt, who was born on this day in 1925. He was a visionary Indian filmmaker, actor, and producer. Hailed as a master auteur of Bollywood's golden age, he's celebrated for pioneering poetic, socially conscious cinema. His masterpieces, such as Pyaasa in 1957 and Kagaz Ke Phool in 1959, remain globally renowned for the visual artistry and haunting exploration of artistic suffering in a commercialized world. Let's listen into a dialogue from one of his hit movies.
1: मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी।
2: गुरुदत्त का वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। इन्होंने अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखी। ये विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे और साथ ही इनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक भी हमें इनकी सभी फिल्मों में दिखती है। इसके अलावा गुरुदत्त एक अच्छे नर्तक भी थे। उन्होंने अपने फिल्मी जीवन का आगाज किया था प्रभात फिल्म से एक कोरियोग्राफर के तौर पर। अभिनय कभी इनकी पहली पसंद नहीं रहा, मगर के सरल, संवेदनशील और नैसर्गिक अभिनय का लोहा सभी मानते थे। गुरुदत्त रचनात्मक लेखक भी थे और उन्होंने शुरुआत में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियां भी लिखी थीं।

0: तो नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह।
1: क्यों, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब?
0: अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए?
2: हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं।
0: कितने चाहिए?
3: संजीव ने IPTA और इंडियन नेशनल थिएटर के साथ मंच पर अपने करियर की शुरुआत की। 22 साल की उम्र में भी इन्होंने AK हंगल द्वारा निर्देशित ऑल माय सन्स एंड डमरू जैसे बुजुर्ग पात्रों को चित्रित करके दर्शकों को प्रभावित किया। इन्हें पहचान मिली फिल्म खिलौना से, तो आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का एक गीत। आज ही जयंती है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र की। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2010 के लिए इन्हें प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में श्री मोदी ने सिडनी में प्रवासी भारतीयों से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि वे मेलबर्न के लोगों से भी बातचीत करने के लिए उत्सुक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
5: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई PM यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
5: PM सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
4: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 GW क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

0: नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुएब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4था T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that 21st century India is working towards the goal of becoming a developed nation. Addressing a community event in Melbourne today, Mr. Modi said, "Today's India believes in aspiring higher and achieving more." Describing his current visit to Australia as a hat trick in 12 years, he said, "It reflects the growing strength of India-Australia ties."
2: पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। और जानते हैं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है, इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है।
1: Highlighting the close relationship between the two countries, Mr. Modi said, "Ahmedabad and Melbourne, home to two of the world's most iconic cricket venues, symbolize their strong sporting and cultural connection." Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said, "The enthusiasm at the event reflected the strength of Australia-India partnership and the growing warmth in the bilateral relations." Earlier in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalised an annual Defence Ministers' Dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "India and Australia have taken a major step forward in the field of nuclear energy by signing a significant agreement that will enable the supply of uranium from Australia to India." He said strategic technology and resource security also reached new heights with the operationalization of the Australia-India partnership on cyber, critical technologies and supply chains, and a dedicated critical minerals corridor. Foreign Secretary Vikram Misri today said the relationship between India and Australia is a dynamic and fast-growing one. Briefing media in Melbourne this afternoon, Mr. Misri said the bilateral partnership has consistently deepened across multiple sectors, including trade, defence and energy. He said strategic conversions have accelerated in many areas and economic cooperation has deepened. The government has waived basic customs duty on goods used in manufacturing of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The exemption is in line with the

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप, और मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी मोहब्बत है इस ट्यून से, गाते गुनगुनाते सभी सभी जिंगल्स ट्यून से आकाशवाणी की बहुत मोहब्बत है। गाते गुनगुनाते ये ज़िंदगी गुजरती रहे कितना अच्छा हो, काम होता रहे, आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। मगर धीरे धीरे कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही थी, कंसिस्टेंसी जीवन में, निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी बहुत जल्दी हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें विकास की तरफ नहीं विनाश की ओर ले जाते हैं। तो सहज हो जिंदगी, बहती सी हो, धीरे धीरे चले, सहज चले, बहती धारा सी चले तो अच्छा है ना। गाते गुनगुनाते में आज आपके साथ

गाते गुनगुनाते में जो दोस्त अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं आज मोहब्बत स्पेशल। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। मोहब्बत तो हमेशा ही स्पेशल होती है, क्या आज क्या कल है नहीं और नहीं तो क्या। बहुत ज़्यादा दिल करता है कि दिल की बात करें, पर हम सोचते हैं कि क्या कहें आपको। दिमाग कहता है सोच ले मारा जाएगा, दिल कहता है देखा जाएगा है ना। आंख देखती है पर धड़कता है दिल, और गाते हैं होठ। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत तराना।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, गाते गुनगुनाते का सफर यहीं तक। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक आवाज भर देंगे, हम हाजिर हो जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रूपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया।

0: सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से दो दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India driven by the mantra, Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
1: While crediting the Indian community for strengthening bilateral partnership, Mr. Modi asserted that ties between India and Australia have reached great heights. Mr. Modi highlighted the cultural roots, mini India hubs and emotional bonds across borders. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said the enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations. Later, briefing media in Melbourne, Foreign Secretary Vikram Misri said the relationship between India and Australia is a dynamic and fast-growing one. Earlier in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalised an annual defence ministers' dialogue, and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries have signed a significant agreement in the field of nuclear energy that will enable the supply of uranium from Australia to India. He also announced the operationalization of the Australia-India partnership on cyber, critical technologies and supply chains and a dedicated critical minerals corridor. Union Home Minister Amit Shah is chairing a conference of superintendents of police, SPs, from border states and union territories in New Delhi. SPs from Jammu and Kashmir, Punjab, Uttarakhand, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and the northeastern state are participating in the conference. The meeting assumes significance amid the center's intensified campaign against illegal immigration, which has been an organized attempt to alter the demographic composition of districts located along the international border in the eastern part of the country.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हुए हालिया हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने भी इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 5 जुलाई से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे इन देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ क्षेत्र के मौजूदा हालात पर भी चर्चा करेंगे। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है और भारत अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को किस तरह मजबूत कर रहा है। श्रोताओं, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़ते तनाव का असर अब समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने चेतावनी दी है कि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, इससे क्षेत्रीय शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और भारत के लिए यह स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कई व्यापारिक जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं के बाद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा तनाव कम करने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार इस मार्ग से सामान्य समय में लगभग 130 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, लेकिन हाल के तनाव के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है और करीब 6000 नाविक सैकड़ों जहाजों पर फंसे हुए हैं। दरअसल हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 1/4 और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी के कई देशों जैसे कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के लिए यही मुख्य समुद्री मार्ग है। ऐसे में यदि इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग ने भी

0: उन्हें भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त करता है। कच्चे तेल और एलएनजी की आपूर्ति का एक बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर भारत पहुंचता है। ऐसे में इस क्षेत्र में अस्थिरता का असर ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन लागत और देश के आर्थिक हितों पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए केवल ऊर्जा सुरक्षा का ही नहीं बल्कि अपने नागरिकों और व्यापक आर्थिक हितों की सुरक्षा का भी विषय है।
1: ऐसे समय में जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, भारत केवल हालात पर नजर नहीं रख रहा बल्कि अपने रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सक्रिय कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा है। इसी दिशा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। आखिर इस यात्रा का महत्व क्या है और इससे भारत के हितों को किस तरह मजबूती मिलेगी, जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: खाड़ी क्षेत्र भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी GCC के देशों के बीच व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। इसके साथ ही क्षेत्र के मौजूदा हालात और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा केवल कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय हितों से भी जुड़ी है। कतर भारत का प्रमुख LNG साझेदार है, इसलिए वहाँ ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्र के हालात पर विशेष चर्चा हुई। बहरीन में बातचीत का केंद्र समुद्री सुरक्षा, खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग रहा। विदेश मंत्री ने वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन की भूमिका की सराहना की। कुवैत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सभा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा तनाव और उसके क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की। कुवैत में भारतीय समुदाय के हितों और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ रक्षा सहयोग भी चर्चा का प्रमुख विषय रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के रक्षा मंत्री के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर खाड़ी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA को प्रभावी ढंग से लागू करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले वर्ष ओमान यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आज केवल ऊर्जा आयात तक सीमित सोच नहीं रखता, वो खाड़ी देशों के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और नई तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहा है। यही व्यापक साझेदारी भारत को बदलते वैश्विक हालात में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की बेहतर सुरक्षा करने में मदद करती है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, बदलते क्षेत्रीय हालात के बीच भारत की सक्रिय कूटनीति और खाड़ी देशों के संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को किस तरह नई मजबूती देती है, इन्हीं पहलुओं पर आकाशवाणी ने पूर्व राजदूत अनिल वाधवा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास की महत्वाकांक्षाएं किफायती और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी हुई हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति एक तात्कालिक चुनौती होने के साथ साथ एक दीर्घकालिक रणनीति परीक्षा भी है। दुनिया के कच्चे तेल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग में किसी भी तरह का व्यवधान, चाहे वह कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, कुछ ही घंटों में वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए घटनाक्रम विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता

0: और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% आयात करता है और प्राकृतिक गैस की जरूरत का आधे से अधिक हिस्सा भी आयात के माध्यम से पूरा करता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर भारत के सबसे विश्वसनीय ऊर्जा साझेदारों में शामिल है।
1: श्रोताओं, बदलते वैश्विक हालात में भारत की प्राथमिकता शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री हितों और आर्थिक साझेदारियों को मजबूत बनाए रखना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यह यात्रा इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो भारत की सक्रिय कूटनीति और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्घोषः एकविंशतिशताब्द्याः नूतनभारतं विकसितराष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न नगरे भारतीयसमुदायस्य भव्यं सम्मेलनञ्चासौ सम्बोधयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा सहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्त घोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रियशिक्षानीतेः अन्तर्गतं वयस्कसाक्षरतामानदण्डानवाप्य उत्तराखण्डराज्यं देशस्य पूर्णसाक्षरराज्यानां गौरवपूर्णसूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत् कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रान्तवृष्ट्या सामान्यजनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये पञ्चक्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रियप्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् दशवादने क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसितभारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
0: विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बन्धानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी।

0: हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे कश्चन ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। अनेन आस्ट्रेलिया देशात् भारताय यूरेनियम् इत्यस्य आपूर्तिः सुलभा भविष्यति। अयं संयोगः भारतस्य स्वच्छोर्जा लक्ष्याय नवीनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव सह साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन प्रणाल्याः संचालनेन सहैव एकात्म महत्वपूर्ण खनिज वीथि निर्माणेन सामरिक औद्योगिकी सुरक्षा क्षेत्रम् अनवरतम् समेधते।
0: आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अद्य प्रातः तावत् उभौ प्रधानमन्त्रिणौ भारत आस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् भागं गृहीतवन्तौ। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन इत्यनेन अद्य भुवनेश्वरे ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य प्रांगणे भारतस्य उच्च समुद्र मत्स्यपालन सम्पदः शाश्वत उपयोगाय एकस्य ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानस्य विधिवत शुभारम्भः अकारि। अत्रावसरे ब्लू इकोनॉमी इति समुद्राधारितार्थव्यवस्था इत्येतत् राष्ट्रीय समृद्धेः एकं दूरगामी परिवर्तनकारी इंजन इति वर्णयन् उपराष्ट्रपतिः देशस्य यूनां प्रति आह्वानं कृतवान्। तैः विकसित भारतस्य आधारशिलात्वेन आधुनिकाः प्रौद्योगिकी संचालिताः मत्स्यपालन सामुद्रिक वृत्तयः पूर्णोत्साहेन अंगीकरणीयाः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्डराज्यं राष्ट्रिय शिक्षा नीति विंशतेः उल्लास इति नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्धारितान् वयस्क साक्षरता मानदण्डान् सम्प्राप्य देशस्य षष्ठं पूर्ण साक्षर राज्यं भवितुं गौरवास्पदं स्थानम् अवाप्तवान्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयस्य विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारितानां मानदण्डानां पूर्त्यनन्तरं ह्यः राज्यपालेन अस्याः ऐतिहासिक घोषणायाः अनुमोदनं कृतम्। अन्यासाम् उपलब्धीनां श्रृङ्खलायाम् अनेन कीर्तिमानेन सह उत्तराखण्डः अधुना मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, सिक्किम इत्यादीनां पूर्णसाक्षरराज्यानां सूच्यां सम्मिलितो जातः। यः राज्यस्य शैक्षणिक विकासस्य यात्रायामेकः महत्वपूर्णः अवसरो वर्तते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमाम उपलब्धिम ऐतिहासिकी इति वर्णयन् सहर्षं प्रावोचत् यत् सफलतेयं सर्वकारस्य निरंतर प्रयासानां सममेव राज्यस्य नागरिकाणां सक्रिय सहभागितायाः एव सुखदः परिणामो वर्तते। अद्य प्रावृष संपूर्णे देशे पूर्णतया व्याप्ता अस्ति। प्रावृष राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रांतं समेत्य उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु सर्वेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धिता। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह विशेष वार्तालापं कुर्वन् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठ वैज्ञानिकः डॉक्टर नरेश कुमारः ब्रूते यत् विगतेषु कतिपयेषु दिनेषु दिल्ली एनसीआर, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड प्रान्तेषु मध्यमतः तीव्रा वृष्टिः अश्रान्तं प्रचलति। दिल्ल्यां तस्य समीपस्थेषु च क्षेत्रेषु गतरात्रिकाला जायमानया अविरतवृष्ट्या सामान्य जनजीवनं पूर्णतः प्रभावितं सञ्जातम्। अद्य प्रातः दिल्लीवासिनः तीव्र मेघगर्जन विद्युत्पाताभ्यां सह जातायाः अत्यधिकवृष्ट्या प्रभाविताः। अनया विविध स्थानेषु जलावरोध स्थितिः संजाता, यया यातायात व्यवस्था अत्यन्तं बाधिता अभवत्। दिल्ली सर्वकारेण ज्ञापितं यत् जलौघं अपाकर्तुं दिल्ली जल बोर्ड लोकनिर्माण विभागं समेत्य नगर निगमस्य दलानि कार्यं कुर्वन्ति इति। भारतीय पिकलबॉल संघेन आगामिनी पिकलबॉल विश्व चषके 26th-2000 वर्षे प्रतियोगितायाः प्रोषेण्यां भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधातुं पुरुष महिला वर्गयोः भारतीय दलस्य घोषणा कृता। एयं विश्वस्तरीया क्रीडा प्रतियोगिता अस्मिन्नेव वर्षे 30th-अगस्त मासस्य सितंबर मासस्य 6th दिनांकं यावत् वियतनाम देशस्य दानांग नगरे आयोजयिष्यते। अन्ताराष्ट्रिय पिकलबॉल क्षेत्रे विख्यातः हर्ष मेहता अस्मिन् प्रतिनिधित्वं विधास्यति। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंडयोः मध्ये प्रचलन्त्याः पञ्च क्रीडात्मिकायाः 20-प्रति-20 श्रृंखलायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ 10 वादने ब्रिस्टल नगरस्य काउंटी ग्राउंड क्रीडांगणे क्रीडिष्यते इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी थैंक यू मनोज जी.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
0: थैंक यू मनोज. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,963. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Also operationalized partnership in cyber critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 200 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,963 दर्ज हुआ. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन के क्षेत्र में साझेदारी पर भी हुआ समझौता. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: And before we begin the program, an important disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab khabron ka silsila shuru karte hain. Pehle gharelu share bazaar. Gharelu share bazaar mein aaj khareedari tez rahi aur pramukh soochkank 0.3% se adhik labh ke sath band hue. Bombay Stock Exchange ka Sensex karobar ke ant mein 238 ank badhkar 76742 par band hua. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 81 अंक बढ़त के साथ 23,963 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 1.4% लाभ में रहा, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.8% की वृद्धि हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडेस्ट गेन्स ऑफ ओवर 0.3% टुडे। द सेंसेक्स रोज 238 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,742। द निफ्टी एडेड 81 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,963। इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द मिड कैप 100 इंडेक्स क्लाइम्ड 1.4% व्हाइल द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स सर्ज्ड 1.8%। Earlier markets opened on a positive note and traded higher despite lingering geopolitical uncertainties. However, both indices spared their early gains in the final half hour of trade amid profit booking.
1: Nazar dalein Sensex ki 30 companiyon par to 30 mein se 17 companiyon ke shareon mein aaj tezi dekhne ko mili. Behtar pradarshan karne wali companiyon ke shareon mein sabse upar rahi dawa company Sun Pharma जिसके शेयर 2.7% लाभ के साथ बंद हुए। भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर दोनों को 2.1% से अधिक का मुनाफा हुआ। इंडिगो के भाव 2% से अधिक उछल गए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रहे इन्फोसिस जिसके शेयर 1.8% नीचे आकर बंद हुए। मारुति और एनटीपीसी के शेयरों में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक को 1% का घाटा हुआ।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसीज ऑन द बीएसई 22 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन अमंग द टॉप गेनर्स। रियलिटी जंप्ड 3.7%, पीएसयू बैंक्स रोज ओवर 1.7% एंड टेलीकम्युनिकेशन एडेड नियरली 1.7%। In contrast, utilities dropped 0.3%, IT fell 0.25%, and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ, 95.38 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101 पर चल रहा था। यहाँ पर समझना चाहेंगे सबसे पहले हम ये कि कल बाजार में दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार के आसार दिख रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा चले, आज हमारे बाजार ने मजबूती दिखाई, क्या मुख्य कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, आपने जैसे बताया कि बहुत ही ऐसे हाहाकार जैसे हालात बने हुए थे, तो एकदम से मार्केट्स ने रिबाउंड किया और जैसे हमें लग रहा था कि शायद मार्केट आज के दिन भी गिरेंगी, कल का हालात तो ये बता रहे थे, लेकिन उसमें पहले तो ट्रंप साहब ने जैसे बोला कि भाई अभी जी, कोई समझौता हो ही नहीं सकता,
0: जी
2: आई विल नॉट लिसन ईरान, अभी मैं बात ही नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक देर रात एक स्टेटमेंट दिया कि उनको कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि समझौते की बात वो करना चाहते हैं, तो जिससे कि मार्केट्स ने रुख अपना बदला कि शायद अभी भी स्कोप है, समझौता हो सकता है और किसी शांति प्रस्ताव की आगे संभावना हो सकती है, तो मार्केट्स ने अपना रुख लिया। ये टोटली वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में तो जो भी कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड जो जो हम बातचीत के जरिए से जो एक वॉलेटाइल होती है मार्केट्स, उसमें जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट ही इसमें मेन ड्राइवर बनते हैं सभी इन उथल पुथल में, तो जहां तक मैं समझता हूं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अभी जारी रहेगी, मार्केट्स में मार्केट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई आज मार्केट ऊपर गया और कल फिर जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट और आ सकता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं कि फूक फूक के कदम रखने वाली बात होती है, उस हिसाब से चलना होगा.
0: Dr. Sharma, I want to ask you one thing. Like we saw, of course, as we are discussing that despite the plunge that we saw yesterday, the markets recovered and very smartly today.
2: Yes.
0: Do you think, and one of the driving factors in the markets every day that we see is the, are the prices, international crude oil prices.
2: Right.
0: Now, we have seen since yesterday the statement when it came, when you told, like you said, the US president made certain statements regarding the ceasefire with Iran and which saw the oil prices going up. But still, at the same time, the oil prices are still within that 80 to 85 or, you know, 79 to 85 dollars per barrel range. So do you think that is also because it's still at a comfortable, I would say, range,
2: right,
0: which is what is, you know, also like giving some scope or some kind of a comfort to the markets

0: right.
1: that the oil prices are still, you know, in a manageable range.
0: Yes, exactly. Because earlier prices were more than 100 per barrel, and many of the times more than 95. Now the prices are at 80 to 80. So these are significantly low as compared with the peak of the prices due to the this tussle. So that's why markets are not taking the prices in a negative sense. The markets are still very, very positive that if Trump processes peace, then there is a great scope to move forward and to rebound significantly to the next level.
1: Right.
0: So that is the market breadth that markets are only waiting the good words from the mouth of Mr. Trump.
1: Another factor, which I don't know, you'll have to tell us whether that has also worked in favor of the markets, you know, ending in green today. Yesterday, the IMF report came out, International Monetary Fund report, World Economic Outlook update came out, mm-hmm. according to which India's growth for this present calendar year has been projected at 7%. If you look at the overall picture, you know, the world, global, the growth of figures for the world has come to 3%. Whereas for India, it is saying for this particular calendar year, that is 26, it has been projected at 7%. Do you think that's also a very big confidence booster?
0: Yes, that is a very big confidence booster, because we are the fastest growing economy in the world economic system, and we are significantly higher than the world average of 3%, and much, much higher than the advanced economies, even faster than China.
1: Yes.
0: China is at around somewhere between 4 to 4.5%.
1: Yes.
0: But India's growth, if you go by the numbers from 21, 22 to 25, 26, we are more than 7% on an average. And last year, in the last fiscal, in 25, 26, we grew at 7.7%.
1: Yes.
0: And for the current year, there are projections that India will grow at 6.6, or some projections are at around 7% also. And if the peace process deepens, if the peace is there, then India has every potential to grow at around 7% for the current year also. But India is always above the IMF projections.
1: Right.
0: I observed this since last many years, that India is above every projection of IMF so far during the last 6-7 years. In the calendar year and in the financial year.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आप ही के आंकड़ों को समझना चाहेंगे. मैक्रो के जो हमारे फिगर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं कि आईएमएफ की जो जो अनुमान होता है उसके भी ऊपर हमारा आखिरकार विकास बीते वर्षों में भी हमने दर्ज किया, और इस वर्ष भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बेहतर कर पाएंगे. क्या हमारे वो कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं?
0: देखिए, हमारे जो कारक हैं वो मेजरली हमें जो सपोर्ट आती है, तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट, वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट आती है. जो हमारी इकोनॉमी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आईआईपी नंबर्स है, आईआईपी नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर 10% से ज़्यादा ग्रो किया, और जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत अच्छे से बूस्ट कर रही है. तो जो आईएमएफ के पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें इस समय पे वो सभी संभावनाओं को देखते हुए कि शायद ये जो क्वैगमायर है मिडल ईस्ट का, ये इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सारे फैक्टर्स को लेके अनुमान लगाते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस लेवल पर रहेगा. बट इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, दैट इज सपोर्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, लाइक द इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. उसका जो ग्रोथ है उसको उसको अनुमान करना कि वो कहाँ पे जाके आगे कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस जंक्चर पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है. व्हेन यू सी द नंबर्स, तभी वो जाके पता चलता है कि हमारा तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो सर्विसेज सेक्टर है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है. तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द आईएमएफ नंबर्स. हमेशा मैं ये देखता हूँ.
1: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026. द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू बाय 2.2% टू 72,275 करोड़ रुपीज ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस. ऑन एन एनुअल बेसिस द रेवेन्यू इंक्रीज्ड नियरली 14%. हाउएवर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्रॉप्ड नियरली 2.7% टू 13,349 crore rupees quarter on quarter basis. The information technology major has declared an interim dividend of 12 rupees per share.
2: यहाँ पर हम समझना चाहेंगे पूरे IT सेक्टर की स्थिति को, और जो AI का एक कहने

0: नया नई हवा चली है, उससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो रहे हैं और खासतौर से पूरा सेक्टर आईटी सेक्टर का। तो हमारे यहाँ सर्विसेज के जरिए हमने कह लें कि अच्छी फसल काटी। आने वाले दिनों में एआई हमारे आईटी सेक्टर को किस रूप में प्रभावित करने जा रहा है?
1: देखिए, मैं मनोज जी नहीं समझता कि जो एआई है उसका कोई ख़राब असर आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एआई के आने से आईटी सेक्टर और भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अभी जो आईटी कंपनीज के ऊपर दबाव आता है, आप देखेंगे कि वो एआई का नहीं है ज़्यादातर। वो ये जो क्राइसिस है मिडल ईस्ट,
0: जी
1: इसकी
0: जी जी
1: वजह से प्रभावित होता है। इसकी वजह आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी पीस प्रोसेस आती है तो ये शेयर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ऊपर भागते हैं। तो एआई का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा कोई भी आईटी के ऊपर, ये मेरा मानना है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली द आईटी सेक्टर।
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज खरीदारी तेज रही है, हालांकि कुछ स्थानों पर बिकवाली भी देखने को मिली। निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया के कोसी में 0.6% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। उधर चलन के विपरीत ताइवान का ताइएक्स 0.8% लुढ़क गया। हांगकांग के हिंगसेंग में भी 0.7% की गिरावट हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में उपभोक्ता मूल्य में इस वर्ष जून महीने में वार्षिक आधार पर 1% की वृद्धि हुई है, हालांकि विगत मई में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, यानी थोड़ा सा कम रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीन के आंकड़े हैं, तो वहीं की ये आंकड़े हैं की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.1% दर्ज हुआ, जबकि विगत मई में यह वृद्धि 3.9% रही थी। उधर यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख था। अंतरदिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.3% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.1% की वृद्धि थी, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.6% नीचे कारोबार कर रहा था।
2: Let's have a look at the US markets. Yesterday, the most US equities closed lower on Wednesday as renewed hostilities in West Asia pushed oil prices higher. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average slipped 1.1% and the S&P 500 declined 0.3%. Meanwhile, the Nasdaq Composite added 0.2%.
0: यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताज़ा जो लहर उठी है एक नए दौर की, उसका क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको?
1: देखिए मनोज जी, जो एशिया रीजन है इसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो मेजरली एक वर्ल्ड के जो ग्रोथ ड्राइवर भी हैं, जिसमें आपके इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सभी कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी होती है हलचल, जो जैसे अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड डिमांड तो स्लो होती है बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स, तो उनके जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आता है, तो ग्रोथ प्रभावित तो होती है, बट वो इतना भी प्रभावित नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा या नेगेटिव में चले जाएगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। 1-2% का फर्क आता है, जैसे हमने लेमन क्राइसिस में देखा, जो 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो चाइना का ग्रोथ था वो लगभग कोई 10.25% से 3% फिसल के साथ पे आया था। इंडिया का 2-9% के आसपास से फिसल के कोई लगभग कोई 6.75% पे आया था, 6.5 और 7 के बीच में। तो इतना प्रभाव आता है जब भी कोई ऐसी
0: बड़ी क्राइसिस
1: आती है, ऐसे कोरोना के टाइम पे देखा गया
0: जी, जी, जी।
1: तो अभी भी वैसा ही प्रभाव है। तो मार्केट्स जब कोई ऐसी, जैसे कल की घटना थी, ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस किया कि अब कुछ नहीं हो सकता
2: जी।
1: तो मार्केट से एक समय धराशायी हुई जो जिस

0: जिसको हमने हाहाकार बोला के भी ऐसे
1: जी जी।
0: लेकिन जैसे ही वो कोई उनके इंटरनल वीकनेसेस नहीं है इन कंट्रीज के, इनके मार्केट्स के, वो प्रभावित हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उनसे। तो जैसे ही उन्होंने रुख अपना बदला कि मेरे को फोन कॉल आए हैं, तो वैसे ही मार्केट्स ने अपना भी रवैया चेंज कर दिया, क्योंकि उनका इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, दे आर ओनली वॉचिंग द इंटरनेशनल डेवलपमेंट,
2: बेसिकली रिएक्टिंग टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट्स ऑल अ परसेप्शन दैट द मार्केट्स आर रिएक्टिंग।
0: अब आप देखिए कि कल जो जिस तरीके से मार्केट्स गिरी थी 500-600 पॉइंट्स निफ्टी फिसला, और आज उतना, तो ऐसा इंटरनली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई कल कोई बहुत बड़ा वीकनेस आया इकोनॉमी में और एकदम से आज रिबाउंड कर गया। ये तो मेजरली जो ग्लोबल इम्पैक्ट,
1: यानी लहर भूचाल की जी, जो जी, बाजार में बयानों से पैदा होती है उसी के शिकार हुए बाजार। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रतिनिधियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मजबूती मिलेगी।
3: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्स की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे।
2: डॉक्टर शर्मा, हियर आई वांट टू यू नो आस्क यू क्वेश्चन अबाउट इंडियन ऑस्ट्रेलिया हैव टुडे अग्रीड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉर इंडियाज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। How do you see this development, especially, you know, when at the, if you look at the political, the geopolitical situation right now, there's an energy crisis. From India's energy security point of view, this kind of an agreement, how important is it?
0: Yes, Anubhaji, this is a great development, because recently we were very, very progressive with Japan also, and now with Australia, because we have to secure our critical minerals trajectory. Because these are the growth drivers of the Indian economy in the in future, and to achieve our target of various things like the export target or the target of our GDP.
2: Yes.
0: Because when you produce, you need the inputs, and critical minerals one of the most important inputs for the technological developments. So I think we have already a great free trade agreement with Australia, and trade is increasing significantly, almost doubled during the last 5-6 years. So going forward, I believe that this relations, bilateral relations, will further deepen, and our trajectory of give and take will become more and more robust, and trade will flourish in the coming times.
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा की दिशा में, जिस पर भी महत्वपूर्ण पहल हुई है। दुनिया भर में जो साइबर हमले हो रहे हैं, उसमें आपसी समझौते और एक दूसरे को उचित समय पर हर तरह की सूचना देना, साथ ही तकनीक हस्तांतरित करना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा समझौता होने जा रहा है, वह हमारी साइबर सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?
0: देखिए मनोज जी, जो साइबर सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट इन आइसोलेशन। हम अगर कहें कि हम अपना साइबर सिक्योरिटी खुद कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: वी हैव टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनली। तो हर एक कंट्री के साथ, जहां भी हमें कुछ आसार बहुत अच्छे नजर आते हैं, हमारा जो एक बिहेवियर है बायलेटरल रिलेशन, तो हमें उनके साथ साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करने में फायदा है, सो दैट हम आपस में अपना जो तालमेल करके जो भी हमले, जैसे आपने बताया, उनको ज्यादातर रुका जा सके।
2: Let's move on to the next story. The government has waived basic customs duty on goods used in the manufacture of

0: display assemblies, lithium-ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued three separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in the manufacture of the three key components used in electronic devices. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. The duty waiver will reduce import dependence and strengthen the electronics ecosystem with local production. A comment on this: how important is this decision to waive, and how will it strengthen and stimulate the domestic electronics manufacturing ecosystem?
1: Yes, Anubhaji, because we are significantly progressing in the domestic electronics ecosystem, and as you must have observed that our electronics, our mobile phones are now gaining great pace in the global marketplace, and these are increasing significantly. Now we are the great exporter to many countries, to Africa and Europe and America. So going forward, government policies, particularly the ease of doing business and the PLI scheme, yes, for the such promising areas are very, very useful and beneficial for the producers and for the export markets. So going forward, I believe our electronic sector will become more robust, and this will support our overall trajectory of exports. Like, we have target of 1 trillion for the current financial year, and by 2030 we have 2 trillion target, 1 trillion from merchandise and 1 trillion from services. So such kind of promising sectors are required to move forward and to become very, very supportive for our overall exports.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आम श्रोताओं के नज़रिए से समझना चाहेंगे कि ये सिर्फ राजस्व कमाने का जरिया बनेगा या हमारे गजट भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे कस्टम शुल्क घटने से?
1: देखिए, इसमें जो देखो एवरी स्टेप इज फॉर द वेलफेयर क्रिएशन.
2: जी जी,
1: सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि वो खाली अपना राजस्व को इंक्रीज करने के लिए होगा. सब जो कंज्यूमर, जो पीपल वेलफेयर है, दैट इज एट ऑलवेज एट द फ्रंट एंड द कोर ऑफ द एजेंडा. जैसे अभी सरकार ने, आपने देखा होगा, जीएसटी में कितने रिलीफ दिए पीछे, जो कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो कितना उससे हमारी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी कितनी मजबूत हुई.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, हमारी जो ग्रोथ है वो कितना इंटैक्ट रही. 7.7% इज नॉट अ इजी टास्क इन सच अ क्वैगमायर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारा खिताब जो है मौजूद है.
2: यानी प्रधानमंत्री जो कहते रहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढने की कला हम भारतीयों ने सीखी, तो वो हम निकाल लेते हैं.
1: वो हमने प्रूव की है, वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया.
0: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $78.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $74.05 per barrel when reports last came in. And also, let's have a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24 carat gold was trading 0.7% up at 1,45,140 rupees per 10 grams, while silver was trading trading 1.4% up at 2,26,540 rupees per kilogram a short while ago.
2: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां अगस्त अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% महंगा होकर 1,44,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% की बढ़त के साथ 2,26,500 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में बुलिश रहे हैं और आपके अनुमान समय की कसौटी पर हर बार खरे साबित हुए हैं. यानी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं के लिए आप खरे विशेषज्ञ के रूप में सोने के मूल्य को लेकर दिखे हैं. तो अब यहां से सोना किस दिशा में जा रहा, अब के स्तर पर निवेश करना कितना उचित होगा और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए यदि कोई खरीदना अभी भी चाहे तो?
1: देखिए, दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में है, गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 5-6 महीने से जो रेंज है, खास करके फरवरी के बाद, वो गोल्ड में 2.30 और 2.60 के बीच में है और सिल्वर में 2.25 से 2.5 के बीच का रेंज बना हुआ है. तो ये रेंज थोड़ी देर और बरकरार रह सकती है, कंसोलिडेशन का मोड है. लेकिन इन द लॉन्ग रन, अगर हम आज से 3 साल या 5 साल का होराइजन लेके चले, तो प्राइसेस आपको इससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम.

0: आने वाले दिन में चमक तेज ही होगी सोने के, ऐसे आसार है। यहाँ बहुत संक्षेप में, निवेश करना हो सोने में तो कैसे करें?
1: देखिए, निवेश के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ETF है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF में करें, जिससे कि देश को भी फायदा और कंज्यूमर को भी, जिससे जो मनी भी है वो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और
0: जी, जी, जी.
1: उनको भी फायदा तो सब जने।
0: यानी भौतिक सोना की जगह निवेश की दृष्टि से ETF सही सौदा। यही पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 200 points, Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor also operationalize. Partnership in cyber, critical technologies and supply chains, and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रूपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today outlined a powerful roadmap for a future-ready and developed India, driven by the mantra Grow More, Achieve More. Addressing the Indian diaspora in Melbourne, Mr. Modi highlighted India's economic and technological progress.
1: 21st सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है हम अधीर है बेसब्र है हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है
2: While crediting the Indian community for strengthening bilateral partnership, Mr. Modi asserted that ties between India and Australia have reached great heights. Mr. Modi highlighted the cultural roots, mini India hubs, and emotional bonds across borders. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese said, "The enthusiasm at the event reflected the strength of the Australia-India partnership and the growing warmth in bilateral relations." Later, briefing media in Melbourne, Foreign Secretary Vikram Misri said, the relationship between India and Australia is a dynamic and a fast-growing one. Early in the day, Prime Minister Modi and his Australian counterpart participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the two leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalized an annual Defence Ministers' Dialogue and launched a unified maritime security collaboration roadmap. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries have signed a significant agreement in the field of nuclear energy that will enable the supply of uranium from Australia to India. He also announced the operationalization of the Australia-India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains and a dedicated critical minerals corridor. Prime Minister Modi arrived in Melbourne last evening after concluding his visit to Indonesia. In a profound testament to the civilizational resonance anchoring modern diplomacy, Australia is set to repatriate three culturally significant ancient antiquities to India. Culture Ministry said these artifacts include a ceremonial bronze trident of goddess Bhadrakali, a majestic granite idol of Nandi, and a basalt sculpture depicting the six-headed Kartikeya. All these items date back to the 11th and 12th centuries and were originally sourced from historic temples in Tamil Nadu. The Central Bureau of Investigation, CBI, and DRI, Mumbai, in a joint operation, have busted wildlife trafficking racket. During the operation, they have recovered and rescued 53 protected animals and birds, including star tortoises, Egyptian vultures, and shikra birds. The CBI has registered two separate cases in this regard, and three accused persons have been arrested from Mumbai and three from Kolkata. The government has waived the basic customs duty on goods used in manufacturing of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The exemption is in line with the government's efforts

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है?
2: जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है, अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है, तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो, LPG, LNG या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं सल्फर की जरूरत होती है, हीलियम की जरूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव पदार्थ हैं जो कि जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए, और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक, जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए, ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश हैं जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों, भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने, इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो चाहे LPG हो, काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है, और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइन होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा

0: आगे बढ़ने से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
1: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि हमने अभी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
2: मेरे विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल्स से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को उसको एक्सप्लॉयट करे, बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात इसमें ये देखें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हम सिविलियन यूजेस के लिए ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज हैं उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा, तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
0: अम्बेसडर सज्जनार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
2: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसी टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और LPG वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले, दो

0: 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटरिम जिसे मैं कहूंगा, ट्रेड अग्रीमेंट की थी। फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले 4 साल में, अगर मैं कहूं जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है। और वो इसी की बनिस्बत जो एक्टा से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब 1 जनवरी 2026 से 100% जो भारत की पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है, और इसमें हम देख रहे हैं अब हमने एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी सीईओ फोरम में अनाउंस किया, दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर, मतलब करीब 350 मिलियन यूएस डॉलर, वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
1: आगे
0: दीक्षा,
1: बढ़ने से पहले अम्बेसडर सज्जनार, आइए सुनते हैं कि आज साइन किए गए एमओयू के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने जॉइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
2: With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region.
1: चलते चलते एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते एक कॉमन विजन फॉर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पे जोर दिया। तो जितने भी एमओयू, जितने भी आज समझौते हुए हैं, उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप यानी कि एमएससीआर को भी देखा गया है। तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
0: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें, जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है। इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज हैं, जो ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहाँ पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है, जो आपने कहा, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए,
1: जी एम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पे चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: सुर्खियों में

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 137 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वाहनों को भी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किया। दिल्ली सरकार ने विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए और दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने क्षेत्र में वर्षों से संचालित खुली बिजली की तारों को सुरक्षित इंसुलेटेड केबल और भूमिगत विद्युत लाइनों में परिवर्तित करने की परियोजना का शुभारंभ किया।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट की ओवरहेड बिजली लाइनों का चरणबद्ध तरीके से भूमिगतकरण और इंसुलेटेड केबलों में परिवर्तन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग में नगर निगम के 137 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्राथमिक कचरा संग्रहण वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इन वाहनों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिसमें केशवपुरम जोन में 37, रोहिणी जोन में 46, नरेला जोन में 24 और सिविल लाइन्स जोन में 30 वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के संचालन से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और नागरिकों को स्वच्छता सेवाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेगी। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। इसके अंतर्गत पॉक्सो जागरूकता, साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और नियमित निरीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि राजधानी के सभी विद्यालयों में गुड टच और बैड टच को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।
3: दिल्ली के सभी स्कूल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूलों में लड़का हो या लड़की सिखाया जाएगा क्या होता है बैड टच और गुड टच एनिमेटेड फिल्म्स के माध्यम से। सरकार द्वारा जारी की गई है चेकलिस्ट, जिसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हर स्कूल को 15 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी कि क्या उनके सभी CCTV कैमरास काम कर रहे हैं, क्या उनका पब्लिक इंफ्रा रिस्क पे तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सेफ है कि नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टाफ का और बच्चे का प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि दुर्घटना घट जाती है और बाद में तकलीफ रह जाती है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सक्षम योजना के अंतर्गत शालीमार गांव स्थित राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय में कई आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट स्कूल, टॉयलेट, स्टेम इनोवेशन लैब, आधुनिक कंप्यूटर लैब, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इस अवसर पर स्टेम इनोवेशन लैब्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 विद्यार्थियों को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एंड रॉकेट सेंटर के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अमेरिका यात्रा के लिए दिल्ली सरकार की ओर से पूर्णता प्रायोजित हवाई टिकट भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की मजबूत नींव आधुनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी आधारित शिक्षा से ही तैयार होगी।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं तो हर व्यक्ति से, हर संस्था से यही कहती हूँ कि कोई भी राज्य तब तरक्की कर सकता है जब सरकार और समाज मिल करके काम करे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी राज्य आगे बढ़ेगा।
1: दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया है। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को उसके मूल गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और गंभीर पहल प्रारंभ हो चुकी है। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। श्रीमती गुप्ता ने ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका एक प्रमुख प्रवेश और निकास चांदनी चौक की ओर से भी विकसित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार में एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया, जिससे पर्यटकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत केवल सांस्कृतिक पहचान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर भी है। उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं का विकास साथ साथ होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों सभी को बेहतर सुविधाएं मिले और पुरानी दिल्ली एक विश्व स्तरीय विरासत क्षेत्र के रूप में अपनी नई पहचान बना सके। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आज एक विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने विशेष अभियान के अंतर्गत पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, जहां तापमान संवेदनशील ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन निर्धारित 2-8 डिग्री सेल्सियस की जगह सामान्य कमरे के तापमान पर रखे हुए पाए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे भंडार को जब्त कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और भंडारण से जुड़े मानकों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ड्रग्स कंट्रोल विभाग को राजधानी में औचक निरीक्षण और विशेष अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर डायफ्राम वॉल निर्माण कार्य से की गई। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि विकसित दिल्ली की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि राजधानी में मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार नागरिकों को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। एक रिपोर्ट।
6: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में मेजेंटा लाइन पर 10 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की 7 प्रमुख लाइनों से जुड़कर राजधानी की कनेक्टिविटी का विस्तार करेगा। कॉरिडोर का कार्य पूरा होने पर ये सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली सचिवालय, अरुण जेटली स्टेडियम, झंडेवालान मंदिर, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और सेंट्रल

0: विस्टा एरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस विस्तार के पूरा होने के बाद मेजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी। ये कॉरिडोर बोटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक लगभग 89 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह चालक रहित मेट्रो सेवा के रूप में संचालित किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में कल शाम एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। श्री गुप्ता ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से क्रेडिट कार्ड संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर 1,00,000 रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी अवैध कॉल सेंटर का संचालन भी कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास से 5 मोबाइल फोन और एक पावर बैंक जब्त किया गया है। आगे की जांच जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी जोन में बरसाती नालों का डिसिल्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। DDA ने बताया कि पिछले वर्ष मॉनसून पूर्व अभियान के दौरान बरसाती नालों से लगभग 33,380 मीट्रिक टन गाद हटाई गई थी। इस वर्ष अब तक 57,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70% से अधिक की वृद्धि है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और भारी वर्षा के दौरान जल भराव की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों को बेहतर बनाना है। दिल्ली वासियों की सुबह आज भारी बारिश और आंधी के साथ हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कल हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज शहर में भारी बारिश के मद्देनजर 2400 घंटे लोक निर्माण विभाग मॉनसून कंट्रोल रूम पहुंचकर शहर भर में जल भराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न स्थानों की निगरानी कर फील्ड टीमों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया तथा अधिकारियों को पूरे मॉनसून सत्र के दौरान अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जल भराव की दृष्टि से 45 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और सभी स्थानों पर केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े 189 CCTV कैमरों के माध्यम से 2400 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मैदानी स्तर पर तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए विभाग ने शहर भर में 167 स्थानों पर 754 स्थायी पंप तथा 273 स्थानों पर 305 अस्थायी पंप तैनात किए हैं। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रवाद, अनुशासन और सेवा की भावना जागृत करने में ABVP की भूमिका सराहनीय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक

0: आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजधानी के सभी 5633 विद्यालयों में जुलाई के अंत तक बाल संरक्षण समितियों का गठन करेगी। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम किया। दिल्ली सरकार ने विशेष अभियान के अंतर्गत अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के जरूरी मानकों का उल्लंघन करने पर 31,700 से अधिक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऐतिहासिक मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिप से लेकर जहाजों तक फैले विनिर्माण भारत में एक नया विनिर्माण तंत्र विकसित हो रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी और 2036 ओलंपिक के लिए दावेदारी का उल्लेख करते हुए खेल जगत में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। श्री अल्बनीज ने प्रवासी भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि को गति देने वाली एक बहुसांस्कृतिक शक्ति बताया और अटूट साझेदारी को आधार देने वाला जीवंत सेतु बताया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोग प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए का निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना भी है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए मूलभूत विज्ञानों का मजबूत आधार अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता ही देश के भविष्य में विकास और वैश्विक नेतृत्व की प्रेरक शक्ति होगी। तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद सुखेंदु राय शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तीनों सांसद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। राज्य में पार्टी की हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ईरान ने अमेरिका पर आज

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मधुरिमा में आज आपके साथ है विभा। नमस्कार। बरसात का मौसम अपने साथ केवल बादल और फुहारे ही नहीं लाता, बल्कि यादों, भावनाओं और संगीत का एक अनोखा संसार भी लेकर आता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी वर्षा ऋतु का विशेष महत्व रहा है। मेघ मल्हार, गौड़ मल्हार जैसे अनेक राग सदियों से वर्षा के सौंदर्य और उसके भावों को सुरों में व्यक्त करते आए हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम सुनेंगे कुछ ऐसे फिल्मी गीत जिनमें कहीं मल्हार की गूंज है, कहीं मेघ की शीतलता और कहीं बरसाती फुहारों के बीच जन्म लेती प्रेम की मधुर अनुभूतियां। शुरुआत करते हैं साल 1972 की सुपरहिट फिल्म पाकिजा के एक बेहद लोकप्रिय गीत से।

बरसात की शाम हो और प्रेम की कोई मधुर याद साथ चल रही हो तो संगीत का रंग और भी गहरा हो जाता है। अब सुनते हैं साल 1960 की यादगार फिल्म बरसात की रात का एक सदाबहार गीत। रोशन के संगीत से सजी ये फिल्म अपनी कव्वालियों के लिए जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही अपने मधुर गीतों के लिए भी। संगीत के जानकार इस धुन में राग यमन कल्याण की सुंदर छाया महसूस करते हैं। साहिर लुधियानवी के भावपूर्ण शब्द और मोहम्मद रफी की सधी हुई भावपूर्ण आवाज इस गीत को एक अलग ही गरिमा प्रदान करती है। और साथ में है लता दी, आइए सुनते हैं।

जब भारतीय शास्त्रीय संगीत में बारिश का उल्लेख होता है तो मल्हार परिवार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे फिल्म संगीत में राग मियां की मल्हार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण माना जाता है। साल 1971 की फिल्म गुड्डी के इस गीत ने वाणी जयराम को पूरे देश में पहचान दिलाई। संगीतकार वसंत देसाई ने इस धुन को पारंपरिक बंदिश की शैली में रचा, जिसे संगीत प्रेमियों के बीच आज भी मियां की मल्हार का प्रतिनिधि फिल्मी गीत माना जाता है। लीजिए सुनिए।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभा के साथ। बरसात केवल बादलों और फुहारों का नाम नहीं बल्कि प्रेम और स्मृतियों का मौसम भी है। और अब सुनते हैं साल 1956 की फिल्म चोरी चोरी का एक बहुत ही खूबसूरत युगल गीत। संगीतकार शंकर जयकिशन की इस धुन में कई संगीतविद राग किरवाणी की झलक महसूस करते हैं। बरसाती रात, भीगी सड़कें और राज कपूर और नरगिस की यादगार जोड़ी ने इस गीत को सदाबहार बना दिया।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यक्रम को आज की हेडलाइंस के साथ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हुआ। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला।

0: मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू होगा और 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो चुका है और अब से एक से दो दिनों में फाइनल की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन खिलाड़ी खिताबी मुकाबले के लिए दांवपेच लगाते नजर आएंगे। आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जहाँ कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अब से कुछ देर में मार्ता कोस्यूब और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी।
1: पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने इस विंबलडन में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के उप विजेता फ्लेवियो कोबोली को 6-4, 7-6, 6-0 से हराकर पुरुषों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल हुए क्वार्टर फाइनल में फेरी ने कोबोली को 2 घंटे और 14 मिनट तक चले मुकाबले में मात दी। इसी के साथ आर्थर क्रोएशियाई दिग्गज गोरान इवानिसेविच की बराबरी करते हुए विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। एक तरफ फेरी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है तो दूसरी ओर ज्वेरेव ने भी अपने शानदार सीजन को जारी रखते हुए कुछ अहम उपलब्धियां हासिल की। 1.5 महीने पहले रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद ये जर्मन खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचा है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेलर फ्रिट्स को 6-4, 6-4 और 6-2 से हराकर अपना सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। अब उनका मुकाबला आर्थर फेरी से कल होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में यानिक सिनर का मुकाबला अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए खेल रहे नोवाक जोकोविच से होगा। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को खेला जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे प्राचीन ये खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम माना जाता है वर्ष का। सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष सेमीफाइनल के जो आज के मुकाबले खेले जा रहे हैं दोनों मैच को लेके, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास?
2: शक्ति, अभी कैरोलिना मुचोवा और कोको गॉफ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि बहुत ही एक कांटे की टक्कर पे चल रहा है, क्योंकि पहला सेट कैरोलिना ने 6-2 से जीता, उसके बाद कोको गॉफ ने अगला सेट 6-1 से जीता। अभी मुकाबला तीसरे सेट में 6-6 की बराबरी से चल रहा है और मैच पॉइंट पे गेम चल रहा है। इसके कुछ ही देर बाद मार्ता कोत्स्युक और लिंडा नोस्कोवा जो है वो आमने सामने नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में इस बार बहुत सारे उलटफेर होते नजर आए हैं। एलिना रायबकीना, अरेना सबालेंका और सेरेना विलियम्स, जिन्होंने इस साल वापसी करी विंबलडन में, वो भी बाहर हो गई हैं। तो इस बार हमको एक नया चेहरा विजेता के रूप में दिखाई देगा।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक नया चैंपियन मिलेगा। और जिस तरह आपने अभी मुकाबले के बारे में बताया, तीसरा सेट चल रहा है और एक बेहद कड़ा और करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बार हमने विंबलडन में ऐसे मुकाबले देखे भी कि जो लोग सोचते थे कि ये 1 से 1.5 घंटे का खेल है, वो 5-5 घंटे तक के मुकाबले चले, तो ये आज का हाल है। और कल कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं विशेष मेंस सिंगल्स में?
2: मेंस सिंगल्स में जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो आर्थर फेरी और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव हाल ही में अभी फ्रेंच ओपन के विजेता हैं और आर्थर फेरी ने वाइल्ड कार्ड से एंट्री ली थी इस टूर्नामेंट में और बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक डी जोकोविच के बीच खेला जाएगा। जोकोविच 7 टाइटल पहले ही जीत चुके हैं, वो अपने 8वें टाइटल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रोजर फेडरर, जो महान दिग्गज खिलाड़ी, वो 8 टाइटल जीत चुके हैं। तो अगर जोकोविच ये टाइटल जीत जाते हैं विंबलडन का, तो वो रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
0: जी बिल्कुल, सर्बिया के इस खिलाड़ी की नज़र जो है अपने आइडियल रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड पर भी होगी कि उसकी बराबरी की जाए। लेकिन अभी कह सकते हैं कि एक बेहद कड़ा सेमीफाइनल मुकाबला उनको खेलना है सिनर के साथ। और अब इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप की, जहां पर आज से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू होंगे। आज देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। तो आइए जानते हैं किन किन टीमों ने इस दौर में जगह बनाई।
3: फीफा विश्व कप 2000

0: 26 का रोमांच धीरे धीरे अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ रहा है। 48 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में अब सिर्फ 8 टीमें बची हैं। फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। कुल 8 टीमों में से 6 टीमें यूरोप की हैं। इन 4 मैचों की विजेता टीम सेमीफाइनल खेलेगी और फिर फाइनल के बाद विश्व फुटबॉल को नया विजेता मिलेगा। इस वर्ष कई उलटफेर भी देखने को मिले, जब नॉर्वे ने ब्राजील जैसी चैंपियन टीम को राउंड ऑफ 16 में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि पराग्वे ने 4 बार की विजेता जर्मनी को राउंड ऑफ 32 के मैच में पेनल्टीज द्वारा हराकर उनका सफर समाप्त किया। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहले भी फीफा विश्व कप जीत चुकी हैं, जबकि मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम को अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। इनमें से कोई भी टीम अभी तक फाइनल में नहीं पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर उन टीमों का बढ़ता है जो पूर्व चैंपियन रही या फिर अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही टीमें कोई करिश्मा करती हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो यूरोप का दबदबा एकदम एक तरफा देखने को मिलता है। 8 में से 6 टीमें हैं। विशेष हमारे साथ हैं। विशेष, आज का जो मुकाबला होना है मोरक्को और फ्रांस के बीच में, किसका पलड़ा कितना भारी है?
2: देखिए शक्ति, मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांस जो है वो 2 बार की विश्व विजेता रह चुकी है। फीफा विश्व कप उन्होंने 2 बार जीता है। और वहीं मोरक्को की अगर बात करें तो उन्होंने इससे पहले सिर्फ 1 सेमीफाइनल मुकाबला ही खेला है, तो ये उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। अगर इस विश्व कप की बात करें तो फ्रांस ने अपने पहले मुकाबले में सेनेगल को 3-1 से, दूसरे में इराक को 3-0 से, फिर नॉर्वे को 4-1 से और स्वीडन को 3-0 से और पैराग्वे को 1-0 से हराया था। तो फ्रांस जो है वो डोमिनेट करते हुए खेल रही है इस बार। वहीं अगर मोरक्को की बात करें तो उन्होंने प्रभावित किया है अपने खेल से, जब उन्होंने ब्राजील के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला, स्कॉटलैंड को हराया, हेती को हराया और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड्स को पेनल्टी में 3-2 से शिकस्त दी और कनाडा को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 3-0 से हराया। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन इसको जीतेगा। हालांकि फ्रांस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और जो उनके मिडफील्डर हैं डियाज, उन्होंने अटैकिंग की जिम्मेदारी ली है इस बार और कहा है कि हम लोग किलियन एम्बापे को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और कप्तान अशरफ हकीमी जो हैं मोरक्को के, उन्होंने भी इस चीज़ पर दिखाया है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है कि टीम जो है तैयार है एक बड़े मुकाबले के लिए और ऐसा ही एक बड़ा मुकाबला इंतजार कर रहा है ब्रिस्टल में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ अपना 4th T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को अगर ये सीरीज ड्रॉ करानी है तो हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा।
3: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इस दौरे की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल श्रृंखला में 2-0 से आगे है, जबकि श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। तीसरे T20 में इंग्लैंड से मिली 125 रनों की करारी हार के बाद टीम बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव कर सकती है। टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में अच्छी लय में दिखे हैं, हालांकि युवा वैभव सूर्यवंशी 2 मुकाबलों में अब तक अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे हैं। ऐसा ही हाल कप्तान श्रेयस अय्यर का भी रहा है, जो अब तक सीरीज में अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं ईशान किशन, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। शिवम दुबे कुछ हद तक लय में जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। श्रृंखला में अब तक इंग्लिश गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते ही नजर आए हैं। वहीं अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो उसमें भी धार दिखाई नहीं दी है। बीच के ओवरों में कमजोर और महंगी गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को पिछले दोनों मुकाबलों में खामियाजा उठाना पड़ा है। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए घरेलू सरजमी पर इस सीरीज में अब तक सब कुछ सही घटता नजर आ रहा है। फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथिल, सैम करन और टॉम बेंटन भी लगातार बल्ले से रन बना रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के लिए सरदर्द साबित हुए हैं, जबकि जोश टंग, आदिल रशीद और विल ने भी इंग्लैंड के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में भारत एक नई ऊर्जा और रणनीति के साथ मैदान पर उतरकर अपना लक्ष्य सीरीज ड्रॉ कराने पर रखेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो श्रेयस अय्यर की मैन इन ब्लू चाहेगी कि आज इस मुकाबले को जीता जाए और जिस तरह की अब तक की सीरीज गई है कुछ अच्छी और मीठी यादें लेकर के इंग्लैंड से लौटा जाए। और ऐसी ही एक याद जुड़ने वाली है अक्षर पटेल के खाते में, यदि वो आज प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, उनको मौका मिलता है तो ये उनका 100वां अंतर्राष्ट्रीय

0: के T20 मैच होगा। इस मौके पर अक्षर पटेल ने खुद भी कहा कि वे इस उपलब्धि के लिए बेहद उत्साहित हैं।
1: मैं फर्स्ट टाइम T20 खेल रहा था, तब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यार मैं 100 मैच खेलूंगा। बहुत ही स्पेशल टूर रहेगा ये इंग्लैंड वाला मेरे लिए, क्योंकि जैसे सेकंड T20 में 100 विकेट हुए एंड फोर्थ T20 में 100 मैचेस हो रही है, सो यू नो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है एंड मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट को।
0: एक ऐसा ही स्पेशल डे कल भी इंतजार कर रहा है, जहां महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टीमें एकमात्र टेस्ट मैच के लिए ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगी। 140 साल पहले इस मैदान ने पहले पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच की मेज़बानी की थी और अब ये मैदान 140 साल के बाद पहली बार महिला टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल के क्षेत्र में एक दूसरे के अहम सहयोगी हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेलों के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ है।
2: भारत के एथलीट, भारत की टीम बेटर से बेस्ट होती जा रही है, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है, भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने भारत में खेलों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
2: खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा, ये अभियान पूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, इनमें लाखों एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार।

0: फील्ड में दिख रहा।
1: तो खेल हर क्षेत्र में जोड़ने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ बैठक के बाद श्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की तुलना क्रिकेट के खेल से की और श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों की मेजबानी करेंगे।
0: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन टी ट्वेंटी जितने तेज है, पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
1: तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक शानदार पार्ट कहा जा सकता है इसको। और इसी कड़ी में भारत में भी एक शानदार पहल की गई है। अगले दशक में भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाने के मकसद से खेल मंत्रालय ने आज ओलंपिक खेलों से जुड़े सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी एनएसएफ को निर्देश दिया है कि जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल खेले जाने हैं उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के या फिर सिलेक्शन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स या फिर मापदंड हैं उनको समय रहते ही सार्वजनिक कर लिया जाए। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं अश्वथ एस की, जिन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर रॉबिन राउंड में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98

खेल मंत्रालय ने आज ओलंपिक खेलों से जुड़े सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी NSF को निर्देश दिया है कि जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल खेले जाने हैं उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के या फिर सिलेक्शन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स या फिर मापदंड हैं उनको समय रहते ही सार्वजनिक कर लिया जाए। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं अश्वथ एस की, जिन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर रॉबिन राउंड में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98

में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय

0: यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों

0: तक शामिल हैं साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR

0: ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्स की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे।
1: आज वी जस्ट हर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैव फाइनलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स नेसेसरी टू एनेबल द एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिवली पीसफुल पर्पजेस एंड अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स आज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2015। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस?
2: This is a very significant step in my view because as you have just now mentioned, this agreement was signed between the two countries in 2015. I remember that the agreement to give this, to share its uranium resources and reserves with India, this agreement was entered into between the two countries when Mr. Tony Abbott was the Prime Minister of Australia. But it is already, so many years have elapsed. About 12 years have elapsed and still no supply of uranium from Australia has taken place. So as I was talking about renewable energy, so uranium nuclear energy is also a renewable form of energy. So it will help India to generate energy in a renewable manner, which will be good for the climate change in that context also.

0: CII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
2: टुडे द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन जनरेटिंग नॉलेज, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। That's what the GCCs are. It's not as if it's a slightly upgraded version of your back room, back off or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
0: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
1: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है। एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के, पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे

0: भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है। भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है, जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए। और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

0: के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। द्विपक्षीय सहयोग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र के रूप में खेलों का जिक्र करते हुए दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयरन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं कल दूसरे मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को यह श्रृंखला ड्रॉ कराने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals. The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi today said India's aspiration to become one of the

0: ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है

0: जॉनसन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हैं। चीन के जिनजियांग शहर में आज एक जूता कारखाने में लगी भीषण आग में 28 लोगों की मौत हो गई। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत और बचाव कार्यों के लिए पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के क्वांझाओ स्थित जिनजियांग शहर में एक संयुक्त कार्यदल भेजा है। मंत्रालय ने बताया कि कारखाने में दोपहर करीब 12 बजे आग लगी। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्चि में संपन्न हुई। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई समान मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती है, जो सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक महिला मंत्रियों के इस मंच पर पहली बार संयुक्त बयान को अपनाए जाने के साथ संपन्न हुई। ये बैठक महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 6 जुलाई से शुरू हुए 4 दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक और ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक शामिल थी। बैठक में ब्रिक्स डिजिटल डेटाबेस और ब्रिक्स डिजिटल क्षमता निर्माण दिशा निर्देशों के लिए भारत के प्रस्तावों का स्वागत किया गया। बैठक में समावेशी और सतत विकास के मुख्य चालक के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया गया। स्मृति पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की करोलिना मोखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। करोलिना ने सेमीफाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्ता कोस्तियुक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से जारी है। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में 1 विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से और विंबलडन टेनिस में चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific, also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says, India aspires to be one of the world's top 3 economies driven by motto of Grow More, Achieve More. Addresses Indian diaspora in Melbourne. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. 28 people killed in a massive fire at a shoe factory in Xinjiang city of China. In FIFA World Cup, France to face Morocco in the

मणि के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, बारिश की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? शायद यही कि ये सिर्फ धरती को नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगा देती है, कभी किसी पुरानी याद की तरह तो कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह, तो कभी उस मुस्कान की तरह जिसे देख कर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कभी आपने गौर किया है कि जिन लोगों से हमें सच्चा अपनापन होता है, सच्चा प्यार होता है, उनके साथ चुप्पी भी बोझ नहीं लगती, उनके साथ बैठकर खिड़की से बारिश देखना भी एक खूबसूरत बातचीत जैसा लगता है। वहां शब्दों की जरूरत कम और साथ होने का एहसास ज्यादा मायने रखता है। चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है धरती कहे पुकार के।

दोस्तों, बारिश के मौसम को अक्सर कहा जाता है कि प्रेम के इजहार का मौसम है, लेकिन हर प्रेम मैं तुमसे प्यार करता हूं कह देने भर से पूरा नहीं होता। कुछ प्रेम ऐसे भी होते हैं जो पूरी उम्र अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी परवाह में, अपने छोटे छोटे त्यागों में व्यक्त करते होते हैं। जैसे सुबह की पहली चाय पूछ लेना, देर होने पर एक छोटा सा संदेश दे देना, बिना कहे किसी की पसंद पूरी तरीके से याद रखना, या फिर बारिश में भीगते हुए ये कहना, जरा संभल कर। ये छोटी छोटी बातें ही तो रिश्तों की असली पूंजी होती हैं, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि बारिश का मौसम हमें धैर्य भी सिखाता है। बादल जब आते हैं तो तुरंत नहीं बरसते, कभी वे ठहरते हैं, कभी हवा का रुख देखते हैं, कभी आसमान में चुपचाप सफर करते हैं। शायद प्रेम भी ऐसा ही होता है, उसे भी समय चाहिए, विश्वास चाहिए और एक दूसरे को समझने की थोड़ी सी गुंजाइश चाहिए।

दोस्तों, प्रेम का अर्थ केवल एक व्यक्ति से जुड़ना नहीं होता है। प्रेम जीवन के प्रति भी हो सकता है, प्रेम अपने काम से भी हो सकता है, अपने परिवार से भी, अपने शहर से भी और अपनी मिट्टी से भी। और जब हमारा मन प्रेम से भरा हो तब हर मौसम हमें सुंदर लगने लगता है। और इन्हीं भावनाओं के साथ अब समय है कार्यक्रम के अगले सुंदर से गीत का।

दोस्तों, सच्चा प्रेम शायद वही है जिसमें अधिकार से पहले सम्मान हो और शिकायत से पहले समझ। ऐसे रिश्ते हर मौसम में मुस्कुराना जानते हैं। दोस्तों, अब समय है कार्यक्रम के अगले और आखिरी गीत का, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram

0: में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी थैंक यू मनोज जी।
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
2: थैंक यू मनोज। Benchmark domestic indices rise, Sensex adds over 200 points, Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor, also operationalize partnership in cyber critical technologies and supply chains, and global crude oil prices rise.
0: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 200 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 24,963 दर्ज हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और डेडिकेटेड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन के क्षेत्र में साझेदारी पर भी हुआ समझौता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we begin the program, an important disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur ab खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 238 अंक बढ़कर 76,742 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 81 अंक बढ़त के साथ 23,963 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 1.4% लाभ में रहा, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 1.8% की वृद्धि हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड विद मॉडेस्ट गेन्स ऑफ ओवर 0.3% टुडे। द सेंसेक्स रोज 238 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,742। द निफ्टी एडेड 81 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,963। In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 1.4%, while the Small-Cap 100 Index surged 1.8%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher, despite lingering geopolitical uncertainties. However, both indices spared their early gains in the final half hour of trade amid profit booking.
1: नजर डालें Sensex की 30 कंपनियों पर, तो 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे ऊपर रही दवा कंपनी सन फार्मा, जिसके शेयर 2.7% लाभ के साथ बंद हुए। भारती एयरटेल और बजाज फिनसर्व दोनों को 2.1% से अधिक का मुनाफा हुआ। इंडिगो के भाव 2% से अधिक उछल गए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रहे इन्फोसिस, जिसके शेयर 1.8% नीचे आकर बंद हुए। मारुति और एनटीपीसी के शेयरों में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक को 1% का घाटा हुआ।
0: इन द सेक्टरल इंडिसीज ऑन द बीएसई 22 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स रियलिटी जंप्ड 3.7%, पीएसयू बैंक्स रोज ओवर 1.7% एंड टेलीकम्युनिकेशन एडेड नियरली 1.7%। In contrast, utilities dropped 0.3%, IT fell a quarter of a percent, and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ, 95.38 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101 पर चल रहा था। यहां पर समझना चाहेंगे सबसे पहले हम ये कि कल बाजार में दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार के आसार दिख रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा चले, आज हमारे बाजार ने मजबूती दिखाई।

0: जो सपोर्ट आती है तो जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट, वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट आती है। जो हमारी इकोनॉमिक, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आईआईपी नंबर्स है, आईआईपी नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर 10% से ज़्यादा ग्रो किया, और जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत अच्छे से बूस्ट कर रही है। तो जो आईएमएफ के एक पैरामीटर्स होते हैं जिनमें इस समय पे वो सभी संभावनाओं को देखते हुए कि शायद ये जो क्वैगमायर है मिडल ईस्ट का, ये इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सारे फैक्टर्स को लेके अनुमान लगाते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस लेवल पर रहेगा। बट इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है दैट इज सपोर्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक द इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। उसका जो ग्रोथ है उसको उसको अनुमान करना कि वो कहाँ पे जाके आगे कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस जंक्चर पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। व्हेन यू सी द नंबर्स तभी वो जाके पता चलता है कि हमारा तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो सर्विसेज सेक्टर है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दी आईएमएफ नंबर्स, हमेशा मैं ये देखता हूँ।
1: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026। द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू बाय 2.2% टू 72,275 करोड़ रुपीज ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ऑन एन एनुअल बेसिस द रेवेन्यू इंक्रीज्ड नियरली 14%। हाउएवर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्रॉप्ड नियरली 2.7% टू 13,349 करोड़ रुपीज quarter on quarter basis. The information technology major has declared an interim dividend of 12 rupees per share.
2: यहाँ पर हम समझना चाहेंगे पूरे आईटी सेक्टर की स्थिति को, और जो एआई का एक कह लें नया नई हवा चली है उससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो रहे हैं, और खासतौर से पूरा सेक्टर आईटी सेक्टर का। तो हमारे यहाँ सर्विसेज के जरिए हमने कह लें कि अच्छी फसल काटी, आने वाले दिनों में एआई हमारे आईटी सेक्टर को किस रूप में प्रभावित करने जा रहा है?
0: देखिए, मैं मनोज जी नहीं समझता कि जो एआई है उसका कोई खराब असर आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एआई के आने से आईटी सेक्टर और भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अभी जो आईटी कंपनीज के ऊपर दबाव आता है आप देखेंगे कि वो एआई का नहीं है ज्यादातर, वो ये जो क्राइसिस है मिडिल ईस्ट इसकी वजह से प्रभावित होता है। इसकी वजह आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी पीस प्रोसेस आती है तो ये शेयर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ऊपर भागते हैं। तो एआई का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा कोई भी आईटी के ऊपर, ये मेरा मानना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट नेगेटिवली द आईटी सेक्टर।
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं एशियाई शेयर बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज खरीदारी तेज रही है, हालांकि कुछ स्थानों पर बिकवाली भी देखने को मिली। निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निकेई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया के कोसी में 0.6% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। उधर चलन के विपरीत ताइवान का ताइएक्स 0.8% लुढ़क गया। हांगकांग के हिंगसेंग में भी 0.7% की गिरावट हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में उपभोक्ता मूल्य में इस वर्ष जून महीने में वार्षिक आधार पर 1% की वृद्धि हुई है, हालांकि विगत मई में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, यानी थोड़ा सा कम रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीन के आंकड़े हैं तो वहीं की ये आंकड़े हैं, की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.1% दर्ज हुआ, जबकि विगत मई में यह वृद्धि 3.9% रही थी। यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताज़ा जो लहर उठी है एक नए दौर की, उसका क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको?
0: देखिए मनोज जी, जो एशिया रीजन है इसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो मेजरली एक वर्ल्ड के जो ग्रोथ ड्राइवर भी हैं, जिसमें आपके

0: इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सभी कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी होती है हलचल, जो जैसे अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड डिमांड तो स्लो होती है बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स, तो उनके जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आता है, तो ग्रोथ प्रभावित तो होती है, बट वो इतना भी प्रभावित नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा या नेगेटिव में चले जाएगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। एक दो परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क आता है, जैसे हमने लेमन क्राइसिस में देखा जो 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो जो चाइना का ग्रोथ था वो लगभग कोई 10.25% से 3 percentage points फिसल के साथ पे आया था, इंडिया का 2.9% के आसपास से फिसल के कोई लगभग कोई 7.25% पे आया था, 6.5 और 7 के बीच में। तो इतना प्रभाव आता है जब भी कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस आती है, ऐसे कोरोना के टाइम पे देखा गया
1: जी, जी, जी।
0: तो अभी भी वैसा ही प्रभाव है। तो मार्केट्स जब कोई ऐसी, जैसे कल की घटना थी, ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस किया कि अब कुछ नहीं हो सकता
2: जी।
0: तो मार्केट से एक समय धराशायी हुई, जो जिसको हमने हाहाकार बोला कि भाई ऐसे
1: जी, जी।
0: लेकिन जैसे ही वो कोई उनके इंटरनल वीकनेसेस नहीं है इन कंट्रीज के, इनके मार्केट्स के, वो प्रभावित हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उनसे। तो जैसे ही उन्होंने रुख अपना बदला कि मेरे को फोन कॉल आए हैं, तो वैसे ही मार्केट्स ने अपना भी रवैया चेंज कर दिया, क्योंकि उनका इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, दे आर ओनली वॉचिंग द इंटरनेशनल डेवलपमेंट,
2: बेसिकली रिएक्टिंग टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड इट्स ऑल अ परसेप्शन दैट द मार्केट्स आर रिएक्टिंग।
0: अब आप देखिए कि कल जो जिस तरीके से मार्केट्स गिरी थी, 500-600 पॉइंट्स निफ्टी फिसला, और आज उतना, तो ऐसा इंटरनली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई कल कोई बहुत बड़ा वीकनेस आया इकोनॉमी में और एकदम से आज रिबाउंड कर गया। ये तो मेजरली जो ग्लोबल इम्पैक्ट,
3: यानी लहर भूचाल की जी, जो जी, बाजार में बयानों से पैदा होती है, उसी के शिकार हुए बाजार। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रतिनिधियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मजबूती मिलेगी।
4: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्स की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे।
2: डॉक्टर शर्मा, हियर आई वांट टू यू नो आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इंडियन ऑस्ट्रेलिया हैव टुडे अग्रीड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉर इंडियाज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। How do you see this development, especially, you know, when at the, if you look at the political, the geopolitical situation right now, there's an energy crisis. From India's energy security point of view, this kind of an agreement, how important is it?
0: Yes, Anubhaji, this is a great development because recently we were very, very progressive with Japan also, and now with Australia, because we have to secure our critical minerals trajectory. Because these are the growth drivers of the Indian economy in the in future, and to achieve our target of various things like the export target or the target of our GDP.
2: Yes.
0: Because when you produce, you need the inputs, and critical minerals one of the most important inputs for the technological developments. So I think we have already a great free trade agreement with Australia, and trade is increasing significantly, almost

0: doubled during the last 5-6 years. So going forward, I believe that these relations, bilateral relations, will further deepen, and our trajectory of give and take will become more and more robust, and trade will flourish in the coming times.
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा की दिशा में, जिस पर भी महत्वपूर्ण पहल हुई है. दुनिया भर में जो साइबर हमले हो रहे हैं, उसमें आपसी समझौते और एक दूसरे को उचित समय पर हर तरह की सूचना देना, साथ ही तकनीक हस्तांतरित करना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा समझौता होने जा रहा है, वह हमारी साइबर सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?
0: देखिए मनोज जी, जो साइबर सिक्योरिटी है, दैट इज नॉट इन आइसोलेशन. हम अगर कहें कि हम अपना साइबर सिक्योरिटी खुद कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है.
1: बिल्कुल,
0: वी हैव टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनली. तो हर एक कंट्री के साथ, जहां भी हमें कुछ आसार बहुत अच्छे नजर आते हैं, हमारा जो एक बिहेवियर है बायलेटरल रिलेशन, तो हमें उनके साथ साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करने में फायदा है. सो दैट हम आपस में अपना जो तालमेल करके जो भी हमले जैसे आपने बताया उनको ज्यादातर रुका जा सके.
2: Let's move on to the next story. The government has waived basic customs duty on goods used in the manufacture of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued 3 separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in the manufacture of the 3 key components used in electronic devices. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. The duty waiver will reduce import dependence and strengthen the electronics ecosystem with local production. A comment on this: how important is this decision to waive, and how will it strengthen and stimulate the domestic electronics manufacturing ecosystem?
0: Yes, Anubhaji, because we are significantly progressing in the domestic electronics ecosystem, and as you must have observed that our electronics, our mobile phones are now gaining great pace in the global marketplace, and these are increasing significantly. Now we are the great exporter to many countries, to Africa and Europe and America. So going forward, government policies, particularly the ease of doing business and the PLI scheme, yes, for the such promising areas are very, very useful and beneficial for the producers and for the export markets. So going forward, I believe our electronic sector will become more robust, and this will support our overall trajectory of, yes, exports. Like, we have target of 1 trillion for the current financial year, and by 2030 we have 2 trillion target, 1 trillion from merchandise and 1 trillion from, okay, services. So such kind of promising sectors are required to move forward and to become very, very supportive for our overall exports.
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि ये सिर्फ राजस्व कमाने का जरिया बनेगा या हमारे गजट भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे कस्टम शुल्क घटने से?
0: देखिए इसमें जो देखो एवरी स्टेप इज फॉर दी वेलफेयर क्रिएशन.
1: जी जी,
0: सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि वो खाली अपना राजस्व को इंक्रीज करने के लिए होगा. सब जो कंज्यूमर, जो पीपल वेलफेयर है, दैट इज एट ऑलवेज एट दी फ्रंट एंड दी कोर ऑफ दी एजेंडा. जैसे अभी सरकार ने, आपने देखा होगा, जीएसटी में कितने रिलीफ दिए पीछे, जो कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो कितना उससे हमारी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी कितनी मजबूत हुई.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स, हमारी जो ग्रोथ है वो कितना इंटैक्ट रही. 7.7% इज नॉट अ इजी टास्क इन सच अ क्वैगमायर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारा खिताब जो है मौजूद है.
1: यानी प्रधानमंत्री जो कहते रहते हैं, आपदा में अवसर ढूंढने की कला भारतीयों ने सीखी, तो वो हम निकाल लेते हैं.
0: हमने प्रूव किया है, वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया.
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $78.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $74.05 per barrel when reports last came in. And also let's have a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24 carat gold was trading 0.7% up at 1,45,140 rupees per 10 grams, while silver was trading was trading 1.4% up at 2,26,540 rupees per kilogram a short while ago.
1: श्रोताओं आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जहां अगस्त अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% महंगा होकर 1,44,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. उधर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% की बढ़त के साथ 2,26,500 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. यहाँ पर हम समझना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में बुलिश रहे हैं और आपके अनुमान समय की कसौटी पर हर बार खरे साबित हुए हैं, यानी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं के लिए आप खरे विशेषज्ञ के रूप में सोने के मूल्य को लेकर दिखे हैं. तो अब यहां से सोना किस दिशा में जा रहा, अब के स्तर पर निवेश करना कितना उचित होगा और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए यदि कोई खरीदना अभी भी चाहे तो?
0: ठीक है, दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में है गोल्ड एंड सिल्वर. आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 5-6 महीने से जो रेंज है, खास करके फरवरी के बाद, वो गोल्ड में 230 और 260 के बीच में है और सिल्वर में 225 के बीच का रेंज बना हुआ है. तो ये रेंज थोड़ी देर और बरकरार रह सकती है, कंसोलिडेशन का मोड है. लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम आज से 3 साल या 5 साल का होराइजन लेके चले तो प्राइसेस आपको इससे कहीं ज्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम,
1: यानी आने वाले दिन में चमक तेज ही होगी सोने के, ऐसे आसार है. यहाँ बहुत संक्षेप में, निवेश करना हो सोने में तो कैसे करें?
0: देखिये, निवेश के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ETF है. मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF में करें, जिससे कि देश को भी फायदा और कंज्यूमर को भी, जिससे जो मनी भी है वो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और उनको भी फायदा, तो सब जने.
1: यानी भौतिक सोना की जगह निवेश की दृष्टि से ETF सही सौदा. यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 200 points. Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor also operationalized. Partnership in cyber, critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी

0: के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi has said that India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More. Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne yesterday.
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है चोरी चोरी, आवाज है मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे, तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे, उस क्षण मुझे लगा था मानो ऋतुएं अपने बिखरे हुए रंग समेट कर एक ही पंखुरी में उतर आई हूं। उस क्षण मुझे लगा था कि मानो ऋतुएं अपने बिखरे हुए रंग समेट कर एक ही पंखुड़ी में उतर आई हूं। न जाने कितने बरसों की स्मृतियां उस छोटे फूल में

मैं तुम्हें देख रही थी, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे से अधिक तुम्हारी वापसी को देख रही थी, क्योंकि लौटना केवल कदमों का सफर नहीं होता, लौटना वो साहस है जो किसी हृदय को बरसों बाद भी अपना पता याद रहने देता है। हम दोनों के बीच उस दिन बहुत कम शब्द थे, किंतु मौन से कहीं अधिक मुखर थीं हमारी आंखें। उनमें एक साथ विरह की नमी भी थी और मिलन की चमक भी। ऐसा लग रहा था जैसे दो किनारे लंबे अंतराल के बाद एक ही नदी में अपना प्रतिबिंब देख रहे हों। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, यह भी कि तुम्हारे बाद बीते दिनों ने मुझे बदल तो दिया, पर तुम्हारे लिए रखी हुई जगह को कभी छोटा नहीं कर पाए। पर तुम्हारे लिए रखी हुई जगह को कभी छोटा नहीं कर पाए। तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे। और अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

बड़ी ही खूबसूरत शाम थी वो तेरे साथ की, बड़ी ही खूबसूरत शाम थी वो तेरे साथ की, अब तक खुशबू नहीं गई मेरी कलाई से तेरे हाथ की। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है कठपुतली और आवाज है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कितनी अजीब सी बात है ना कि कविताएं हम सभी पढ़ते हैं, लिखते भी हैं और सुनते भी हैं, पर जब हमसे पूछा जाता है कि कविता क्या है तो हम भारी भरकम शब्दों में कविता की व्याख्या करने लग जाते हैं। शायद हम अब तक नहीं जान पाए कि कविता क्या है। बड़ी सुंदर सी बात है कि मध्यम संगीत, धुंधली रोशनी, केतली से कपों में छनती चाय का जादू, हरे पत्तों की चरचर, मरमर में घुल घुल जाता वायलिन का स्वर, पीले नीले गुलाब की खुशबू और धरती की आगोश में समाते बादल, नीली रोशनी में दुबकता चांद, यही तो कविता है। इतनी सुंदर परिभाषा और इतने सरल शब्दों में अगर कविता है तो कविता को जीना और उसे महसूस करना कितना सुंदर हो सकता है। बातें और भी करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है राजपूत, आवाज है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिकंदा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनजाना, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। तुम्हारा नाम किसी पुकार की तरह नहीं आया, ना किसी दावे की तरह, बस जैसे सूखी धरती पर पहली हरियाली का संकेत उतरता है, वैसे ही मेरे भीतर एक नया अर्थ आकार लेने लगा। मैंने देखा गुलमोहर पहले भी खिलते थे, पगडंडियां पहले भी थीं, आकाश पर बादल भी पहले जैसे ही आते जाते थे, पर न जाने क्यों उन सब के चेहरे बदल गए। लगता था जैसे दुनिया ने कोई नया वस्त्र नहीं पहना, पर मेरी दृष्टि ने पुराने दृश्यों में नया संगीत खोज लिया हो। अब जब मैं किसी पुस्तक का पन्ना पलटती हूँ, अक्षरों के बीच एक महीन सी गर्माहट उतर आती है। जब किसी नदी का उल्लेख पढ़ती हूँ, तो उसके जल में तुम्हारी सहजता की झलक मिलती है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है, यदि स्मृतियां अपना हाथ न छोड़े। मैंने तुम्हें कभी अपने अधिकार में नहीं चाहा, न तुम्हारे लिए कोई शर्त लिखी, न कोई सीमा खींची। मुझे तो बस इतना मिला कि मेरे दिनों के फीके कैनवास पर कुछ दुर्लभ रंग उतर आए। अब मैं बरसात को केवल बरसात नहीं कहती, उसमें प्रतीक्षा का मधुर व्याकरण पढ़ती हूँ, संध्या को केवल संध्या नहीं समझती, उसमें लौटते परिंदों की कथा सुनती हूँ, और रात्रि वह भी अब अंधेरे का दूसरा नाम नहीं रही, वह तो तारों से लिखी एक लंबी चिट्ठी जैसी लगती है। और कभी कभी सोचती हूँ मनुष्य का मन भी कितना अद्भुत है, एक व्यक्ति का ख्याल उसमें इस तरह बस जाता है कि ऋतुएं अपना परिचय बदल देती हैं, फूलों की गंध, मिट्टी की सोंधी रेखाएं, आंगन में उतरती धूप, छत पर भटकती चांदनी, सब मानो एक ही कथा के अलग अलग अध्याय बन जाते हैं, सब मानो एक ही कथा के अलग अलग अध्याय बन जाते हैं। हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही, मैं वही नहीं रही। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है, आवाज है महेंद्र कपूर की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से

मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोत्स्यूक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैलोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज तेज वर्षा होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन कभी धरती का नागरिक नहीं रहा, उसने हमेशा आकाश की ओर ही देखा है। जब भी दिनचर्या ने उसके पैरों में अनगिनत गांठें बांधनी चाही, वह किसी अनजानी दिशा की ओर एक पंख बनकर निकल पड़ा। बादलों के बीच उड़ता वो पंछी किसी मंजिल का भूखा नहीं था, उसे केवल ये जानना था कि क्षितिज के उस पार भी क्या कोई ऐसी भूमि है जहां सपनों पर पहरा नहीं होता। वो उड़ता रहा, कभी धूप की महीन रेखाओं के सहारे, कभी वर्षा की बूंदों के बीच से रास्ता बनाता हुआ, कभी बिजली की चमक से चौंकता तो कभी गगन की विराटता में अपने ही अस्तित्व को पढ़ता हुआ। उसे मालूम था कि हर बादल जल से भरा नहीं होता, कुछ बादल स्मृतियों से बने होते हैं जो बरसते नहीं, केवल भीतर किसी भूले हुए मौसम की आहट जगाते हैं। ऐसे ही एक बादल के पास से गुजरते हुए उसने बचपन की वो दोपहर देखी जो अब वर्ष

वर्षों से कहीं दर्ज नहीं थी। वो कच्चे आंगन की मिट्टी, वो अनगढ़ हंसी, वो बिना कारण दौड़ पड़ना, मानो सब कुछ फिर से जीवित हो उठा। मन का पंछी मुस्कुराया। उसे लगा आकाश केवल ऊपर नहीं होता, कुछ आकाश भीतर भी बसे रहते हैं, जहां उम्र का कोई अधिकार नहीं चलता, जहां स्मृतियां अपनी सबसे निर्मल आकृति में निवास करती हैं, जहां स्मृतियां अपने सबसे निर्मल आकृति में निवास करती हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनपढ़, आवाज है लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है हरे कांच की चूड़ियां, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। दूर कहीं धूसर बादलों का एक समूह था, जिनके भीतर अनकहे दुखों की नमी थी। पंछी ने उनके बीच से उड़ते हुए जाना कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियां भी मनुष्य को रिक्त नहीं करती, वे उसे और गहरा बनाती हैं। जो पीड़ा से गुजरता है वो अक्सर दूसरों के लिए एक सुरक्षित किनारा बन जाता है। ये सीख लेकर वो फिर ऊंचाइयों की ओर निकल गया। अब उसके सामने संध्या की लालिमा फैली थी। आकाश किसी महान चित्रकार का कैनवस लग रहा था, जहां हर रंग अपनी कथा कह रहा था। पंछी ने उन रंगों में अपनी इच्छाओं के कई चेहरे देखे। कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, और कुछ ऐसे जिन्हें उसने कभी शब्द ही नहीं दिए। और तब उसे समझ आया कि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं केवल इसलिए जन्म लेती हैं कि मनुष्य यात्रा करना सीख सके। अगला गीत फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

जीवन की धूप में तपा हुआ, जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं लौटने को सोचता हूं तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं लौटने की सोचता हूं तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है

लौट पाना कहीं से भी। अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं, आवाज है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की।

दबे पांव आए दबे पांव गए, दबे पांव आए दबे पांव गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर तुम सभी निशान छोड़ गए। मेरी जिंदगी के फर्श पर तुम सभी निशान छोड़ गए, दबे पांव आए दबे पांव गए। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल देके देखो, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को

0: लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और छह सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबले में 0-0 की बराबरी है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the third annual India-Australia summit, both sides finalised the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals. The two leaders also reviewed progress and economic cooperation. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said India continues to emerge as a preferred destination for global capability centers, GCCs, because of its skilled workforce, strong institutions and innovation ecosystem. Addressing the CII National GCC Business Summit 2026 in New Delhi, Ms. Sitharaman said the country hosts more than 2,100 GCCs employing 23 lakh professionals directly and generating nearly $100 billion in annual revenue. She said GCCs represent transformation by bringing together engineering research, artificial intelligence, cybersecurity, finance, product design and data science to drive continuous innovation. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has announced that the government is planning to introduce E85 fuel at a price around 20 rupees per litre lower than E20 petrol, with a higher ethanol blend available only for purpose-built flex-fuel vehicles. In an interview with the private news channel, Mr. Puri said The proposed move aims to provide financial relief to consumers while advancing the government's

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

जो आंख भर के दिखाई दे, जो आंख भर के दिखाई दे उतना ही सच मत मान। हर एक मंजर के पीछे भी कई मंजर निकलते हैं, हर एक मंजर के पीछे भी कई मंजर निकलते हैं। जो आंख भर के दिखाई दे उतना ही सच मत मान। अगला गीत फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि यादें कभी जाती नहीं, वे बस स्वर बदल लेती हैं। कभी वे मुस्कान बनकर आती हैं, कभी हल्की चुभन बन जाती हैं। पर सच ये है कि वे हमारे ही भीतर हमें बचाए रखती हैं। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, वो भीतर कहीं ठहर गया, हमें थोड़ा और गहरा बना गया। इसलिए यादें हम में ही ठहर जाती हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आरती, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता, कुछ रिश्ते एहसासों से सांस लेते हैं। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां अपनापन अधिक होता है। रात हमें सिखाती है किसी को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वह दूरी में भी बना रहता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कितनी सुंदर बात है ना कि समय कभी रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता है। पर उसके भीतर हमारे कई रूप छिपे होते हैं, जो हम थे, जो हम हैं और जो हम बन सकते हैं। इन सब का संगम ही जीवन की असली पहचान है।

और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दोस्ताना, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आप सुनिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और छह सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय

101 यानी आकाशवाणी एफएम गोल्ड, 3:10 और 56 सेकंड हुए हैं। दोस्तों, ये समय होता है कार्यक्रम हमराही का, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंतज़ार प्यार की सबसे खूबसूरत और सबसे सच्ची परीक्षा मानी जाती है। जब कोई अपने दिल के बहुत करीब होता है और उसकी यादें हर पल साथ रहती हैं, हर आती जाती हवा, हर गुजरता लम्हा और हर अनजानी राह यही एहसास दिलाती है कि शायद कहीं कोई हमें भी उतनी ही शिद्दत से याद कर रहा होगा। अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो भी उसके बोल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि इस गीत में उम्मीद है, मासूम सी बेचैनी है और उस मुलाकात का ख्वाब है जिसका इंतज़ार हर प्रेम करने वाला कभी ना कभी करता है। तो आइए कुछ पल के लिए अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, पुरानी यादों की गलियों में चलते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ उस एहसास को महसूस करते हैं।

तो दोस्तों ये गीत था फिर कब मिलोगी फिल्म से, और आवाज़ें आप पहचान ही गए होंगे, लता मंगेशकर और मुकेश की। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल कुछ यूं हैं, बादल यूं गरजता है। फिल्म बेताब का ये खूबसूरत गीत सिर्फ बारिश की ही बात नहीं करता, बल्कि उन धड़कनों का एहसास भी कराता है और प्यार की पहली दस्तक पर तेज हो जाता है। बाहर गरजते बादल हों या फिर दिल के भीतर उठता तूफान, दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अक्सर हल्की सी घबराहट और ढेर सारी उम्मीदों के साथ आते हैं। तो आइए भीगते मौसम और धड़कते एहसासों के नाम सुनते ही लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ जहन में याद आ जाती है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, बारिश की फुहारें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, दिल का मिजाज भी बदल जाता है। सावन अपने साथ ढेर सारी यादें, अनगिनत एहसास और प्यार की मीठी खुशबू लेकर आता है। ऐसे ही भीगे भीगे लम्हों को सुरों में पिरोया है एक खूबसूरत से गीत ने, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत में बरसती बूंदों की ताजगी है और मन की कोमल भावनाएं हैं और प्रेम का वो सुकून है जो हर मौसम को खास बना देता है। तो यकीन दिलवाते हैं आपको इस गीत से कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से के जरिए ही जाने जाते हैं, और कुछ गीत उन्हीं एहसासों को आवाज़ देते हैं। ऐसा ही एक गीत है तू ही रे, ऐसा ही एक कालजयी नगमा जो प्रेम, विरह और उम्मीद तीनों को एक साथ समेटे हुए है। जब अपनों से दूरी बढ़ जाती है, तब हर धड़कन उसी एक शख्स का नाम पुकारती है जो दिल की दुनिया के सबसे खास हिस्सा बन चुका होता है। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे की कहानी भी है जो हर मुश्किल और हर फासले के बावजूद जिंदा रहता है। ए आर रहमान का जहाँ खूबसूरत संगीत है, वहीं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की मखमली आवाजें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे फिल्म के इस गीत की।

3:35 और 42 सेकंड हुए हैं। एफएम गोल्ड पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत असर शायद यही होता है कि इंसान अपनी सुध-बुध ही भूल जाता है। दिल किसी की मुस्कान, किसी की बातों और किसी की मौजूदगी में इस कदर खो जाता है कि दुनिया की हर चीज़ पीछे छूट जाती है। वैसे तो प्यार में हार जाना भी कभी कभी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब दिल किसी अपने को अपना मान ले तो फिर शिकायत नहीं रहती, सिर्फ उसी के नाम की धड़कने रह जाती हैं। ऐसा ही एक गीत है जो हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल, आवाज़ें आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की हैं।

सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की ढलती रोशनी तक अगर किसी का ख्याल हर पल साथ रहे तो समझ लीजिए दिल ने अपनी मंजिल चुन ली है। मोहरा फिल्म का ऐसा ही एक चुलबुला और रोमांटिक गीत है जिसमें प्यार की मासूमियत, अपनापन और साथ निभाने का खूबसूरत एहसास झलकता है। आइए आपको सुनाते हैं उसी फिल्म का एक गीत जिसे आवाज़ दी है उदित नारायण और साधना सरगम ने।

कुछ पल ऐसे होते हैं जब पूरी दुनिया की भीड़ में भी इंसान को सिर्फ एक ही जगह सुकून मिलता है और वो है अपने प्रिय की बाहों में। वंश फिल्म का ऐसा ही एक सदाबहार रोमांटिक गीत है जिसे हम आपको सुनवाएंगे। इस गीत में प्यार का अपनापन, रिश्तों की गर्माहट और साथ होने का अनमोल एहसास बेहद खूबसूरती से उभर कर सामने आया है और इस गीत को आवाज़ दी है SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, ज़िंदगी की राह में कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जिनके आने से हर दिन में नई रोशनी और हर पल में नया अर्थ जुड़ जाता है। उनकी मौजूदगी सिर्फ साथ नहीं देती बल्कि जीने का अंदाज भी बदल देती है। कुछ ऐसा ही है फिल्म दूरियां के इस गीत में। इसी खूबसूरत एहसास को इस गीत ने बड़ी सादगी से और गहराई से अपनी बात कही है। तो आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV Falcon में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स

100.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम गोल्ड, और समय हुआ है 4:11, समझ लिए ये होने को है। दोस्तों, इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, हर नई सुबह सिर्फ सूरज की किरणें ही नहीं लाती, बल्कि अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। बीती हुई रात चाहे कितनी भी लंबी रही हो, लेकिन उम्मीद की सुबह हमेशा उसका इंतज़ार करती है। ज़िंदगी में ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता, और प्रकृति हर मौसम के बाद फिर से खिल उठती है। वैसे ही इंसान भी अपने हौसलों से हर मुश्किल के बाद दोबारा मुस्कुरा सकता है। अगर आज रास्ते कठिन लग रहे हैं, तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर आता है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह आपका इंतज़ार करती है। बस ज़रूरत होती है जागने की, आगे बढ़ने की, और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखने की। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हीरो।

ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार खामोशी ही सबसे खूबसूरत बातचीत बन जाती है। एक नज़र, एक मुस्कान या बस किसी अपने का साथ, इतना ही काफ़ी होता है दिल की बात समझने के लिए। हर भावना को अल्फाज में बयां करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी ठहर जाना, हर पल को जी लेना और दिल की आवाज़ सुनना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। ज़िंदगी भी हमें यही सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर सफ़र में शोर ज़रूरी नहीं होता। कुछ पल खामोशी के भी होते हैं तो हमें सुकून दे जाते हैं, रिश्तों को गहराई देते हैं और अपने भीतर झांकने का अवसर भी देते हैं।

जिंदगी हमें हर दिन एक नई सीख देती है, कभी आगे बढ़ने की, कभी ठहर कर खुद को समझने की, और कभी ये एहसास दिलाने की कि सबसे बड़ी ताकत अकेले चलने में नहीं बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। जब सहयोग, विश्वास और सकारात्मक सोच साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी के साथ प्रेरणा और विश्वास ज़रूर होता है। याद रखिए दोस्तों, सफलता सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्ते में लोगों का हाथ थामते हुए आगे बढ़ने का भी नाम है।

दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल ज़रूर आते हैं जब उसे किसी अपने की और अपने के सहारे की तलाश होती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक हम खुद अपने सच्चे साथी नहीं बनते, तब तक कोई भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। अगर कभी लगे कि साथ देने वाला आपके साथ कोई नहीं है, तो अपने हौसले को अपना हम सफ़र बना लीजिए, क्योंकि वही आपको हर मुश्किल और हर मुंह से निकाल कर मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा।

रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक खेल की तरह है। इसमें हर दिन एक नई चाल चलनी पड़ती है। कभी जीत आपकी झोली में आती है तो कभी हार आपको कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ा देती है। लेकिन वो खिलाड़ी हर हार के बाद फिर से मैदान में उतरता है, वही आखिरकार जीत का असली हकदार बनता है। जीवन को बोझ बनाकर नहीं बल्कि पूरे उत्साह और हिम्मत के साथ जीना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मुस्कुराते हुए उनका सामना ही करना ही असली जीत है।

हर इंसान के मन में कभी ना कभी उड़ान भरने की चाह ज़रूर होती है। हम सब चाहते हैं कि डर, सीमाओं और मुश्किलों से ऊपर उठकर अपने सपनों के खुले आसमान तक पहुंच जाए, लेकिन असली पंख हमारे कंधों पर नहीं, हमारे हौसलों में होते हैं। सपनों को सच करने के लिए पंख नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प चाहिए। जो लोग अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं वो परिस्थितियों की बेड़ियों को भी हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से।

जिंदगी की एक खासियत ये है कि ये हर दिन एक नया इम्तिहान भी देती है और एक नई उम्मीद भी। ऐसे में अगर दिल बेकरार हो तो उसे मायूस करने के बजाय उम्मीद का एक गीत सुनना चाहिए, बेकरार दिल तू गाए जा। ये ऐसा ही एक सदाबहार नगमा है जो सिखाता है कि हालात जैसे भी हो, मुस्कुराना और आगे बढ़ते रहना ही

जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत कला है। इस गीत की धुन में आशा है, बोलों में हौसला है और आवाज़ में एक ऐसी मिठास है जो मन को सुकून देती है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों की रात भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, एक नई सुबह हमारा इंतज़ार ज़रूर करती है।

दोस्तों, कुदरत का हर पंछी हमें एक अनमोल सीख देता है। उड़ान भरने से पहले वो ये नहीं सोचता कि रास्ता कितना लंबा है, वो बस अपने पंखों पर भरोसा करता है। जिंदगी भी हमसे यही कहती है कि डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन की उड़ान को कोई कैद नहीं कर सकता। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो हर बंदरवाजे के आगे एक नई राह आपका इंतजार करती है। जीवन में कभी अपने सपनों को पिंजरे में कैद बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी सोच को खुला आसमान दीजिए, अपने प्रयासों को नई दिशा दीजिए और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए।

जिंदगी की भागदौड़ में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बेचैन रहता है तो वो रहता है हमारा मन। कभी बीते कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, और इन्हीं के बीच आज की खुशियां कहीं खो सी जाती हैं। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मन को धैर्य और विश्वास का सहारा देना।

दोस्तों चलते चलते बस यही कहेंगे कि सपने पूरे करने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं बल्कि बड़ी सोच का होना ज़रूरी है। दिल छोटा हो सकता है लेकिन अगर उसमें हौसले, उम्मीद और कुछ नया करने का जुनून हो तो वही दिल दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक और गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियां ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण

पश्चिम मानसून ने पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले चार दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 और 55 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से मैं अर्चना बिसारिया आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेरे सनम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम भोर सुहानी में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।